0: प्रतिनिधि मण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मू कश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभरात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं मेराज, और कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं आईपी सिंह और इरशाद अहमद नायको।
0: दोस्तों, वक्त आगे ही आगे बढ़ता रहता है, और ये मेराज इसलिए मैं बात कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कल ही की बात है कि मैंने संडे के रोज आपके साथ ड्यूटी की थी।
1: पता ही नहीं चलता,
0: और वक्त इस कदर तेजी से आगे बढ़ता है कि मानो जैसे कल ही की बात हो और इंसान को उस बात का एहसास ही नहीं होता है कि नई हफ्ता हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों में और महीने साल में तब्दील होते रहते हैं,
0: और ये तब्दीली इतने दबे पांव होती है कि लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता, और जब ख्याल आता है तो वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है।
1: सकीना जी, वक्त हर इंसान को मौके फराहम करता है,
0: बिल्कुल
1: ऐसे असबाब और वसाइल मुहैया करता है जिसका फायदा उठाकर इंसान तरक्की कर सकता है और अपनी जिंदगी संवार सकता है।
0: महाराज कहते हैं ना कि जो वक्त की अहमियत नहीं समझता वो दुनिया में कहीं का नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: जो वक्त की कदर करता है वही कामयाब होता है, और लोग भी फिर उसी की इज्जत करते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, चूंकि एक बार जो वक्त गुजर जाता है लौट के वापस कभी नहीं आता।
0: बिल्कुल सही। सो दोस्तों, वक्त की कदर करते हुए वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है, और ये भी है कि दूसरों में खैर, खुशियां, खलूस, अपनाइयत और मोहब्बत भरे जज्बे बांधकर आपको आगे बढ़ना है।
1: सही।

0: आकाशवाणी श्रीनगर से इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो पर हम सुबह जारी हैं और हम हैं आपके साथ, मैं हूं मेराजुद्दीन
1: जी। दोस्तों मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और संडे है मेराज और आज का थीम होता है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड।
0: बिल्कुल, दुनिया भर और जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मुसबत और अहम पेशरफ्तों की तफसीलात हम अपने सामीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। जी सकीना जी,
1: देखिए जब खुशी की खबरों की हम बात करते हैं, यूजुअली सुबह सुबह का जो टाइम होता है, हर एक की दुआ होती है कि खुशी की खबरें ही हम तक पहुंचे।
0: सही, सही,
1: हम भी दुआ करते हैं सभी दोस्तों के लिए कि उनको खुशी की ही खबरें मिले और सबसे बड़ी बात, खुशी बांटिए, खुलूस बांटिए, प्यार बांटिए। जिस चीज की हम शिकायत हर रोज करते हैं कि सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, देखिए जब आप किसी को खुशी देंगे, बाकी आप अल्लाह पे छोड़िए, आपको भी एक
0: वापस खुशी मिलेगी
1: और अलग तरह का इत्मीनान हासिल होता है,
0: सुकून मिलता है।
1: तो अब अपने कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो एक खुशी की जो बड़ी खबर है तालिब इल्मों के हवाले से, वो ये कि जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबे में एक शानदार कामयाबी सामने आई।
0: हाल ही में नीट के जो रिजल्ट सामने आए
1: तो तालिबा हादिया निसार ने नीट 2024 में कौमी इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल करके पूरी वादी का

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
4: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जिवा।
5: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
6: सब्र रोशिद सुलुम।
5: सुनते रहिए हमारी नशरियात
3: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
7: जी दोस्तों, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। लाइव शो पयाम सुबह में आज आपके साथ हैं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
8: मैं हूं महराज।
7: और बहुत बातें हो रही है कल से मौसम की या बारिश की। सभी चाहते हैं कि रहमत वाली बारिश हो जाए। और कल चूंकि हॉटेस्ट डे रहा, 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा, गर्म तरीन दिन था कल का, सीजन का हॉटेस्ट डे रहा। और ये भी बालतल जो यात्रा है वो रोक दी गई, सस्पेंड कर दी गई आज से, जब तक ना मौसम में सुधार आ जाए। और प्रेडिक्शन भी है कि बारिश एक दो दिन होगी, लेकिन कुछ लोगों में तश्वीश भी है। हम चाहते हैं कि रहमत वाली बारिश हो जाए, तो हमने मुनासिब समझा कि डॉक्टर मुख्तार साहब जो डायरेक्टर है मेट डिपार्टमेंट के, उनसे बात की जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
9: जी
7: बताइए मुख्तार साहब, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मौसम की, आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जब कहते हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और बारिशें बहुत तेज हो जाएंगे।
9: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मॉनसून जो है थोड़ा सा एक्टिव बना हुआ है पूरे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है।
7: जी,
9: और ये बारिशें बिलखसूस जम्मू रीजन के अंदर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली। यहाँ पे भी बारिशें होंगी, लेकिन उतना ज्यादा बारिशें या उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना जम्मू में होगा।
7: जी,
9: तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मौसम जो है टिल 23rd फोरनून तक खराब रहेगा।
7: जी,
9: और तेज बारिशें, डीप शावर या थोड़ी देर के लिए हैवी इंटेंस शावर के भी चांसेस हैं। और ये बारिशें खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग और दोपहर आफ्टरनून से लेके इवनिंग लेट इवनिंग तक के पीरियड में सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर ज्यादा इम्पेक्ट होगा, फॉलोड बाई नॉर्थ कश्मीर, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर के अंदर। तो जम्मू रीजन के अंदर काफी ज्यादा बारिशें हैं, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, कुछ जगहों पे मोर देन 200 mm की भी बारिशें हो सकती हैं इन 24 आवर्स। और कल रात को भी जो है, आज अर्ली मॉर्निंग और उसमें एक हैवी स्पेल हुआ है राजौरी एंड एडजॉइनिंग एरियाज, रियासी, इवन जम्मू उधमपुर के आसपास भी, तो काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं। तो कमिंग डेज में भी ये, क्योंकि ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि मौसम जो है खराब रहेगा, काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है, लैंडस्लाइड की भी पॉसिबिलिटी है, उसके बगैर वाटर लॉगिंग कंडीशन, फ्लडिंग भी हो सकता है, माइनर फ्लडिंग कुछ लो लाइंग एरिया से। तो काफी ज्यादा ऐसे इम्पैक्ट्स हैं, मल्टीपल इम्पैक्ट। ओवरऑल जो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है, जनरल पब्लिक को, चाहे टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, या उसके बगैर ट्रेकर्स हो, या लोग अलग अलग पिकनिक के लिए या बाकी चीजों के लिए पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं, तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3-4 डेज।
7: बिल्कुल, आज चूंकि संडे भी है, सभी का मूड बनता है कि छुट्टी है, छुट्टी के दिन पिकनिक स्पॉट्स की तरफ रुख करते ही करते हैं ना।
9: जी,
7: तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब हमारे साथ बात करने के लिए, ताज़ा अपडेट शेयर करने के लिए हमारे दोस्तों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।

जी, मौसम की बात हो रही थी तो हम तक ये खबर पहुंची है कि बारिश होने वाली है, सभी को इंतजार है, अबर आलूद है मौसम। तो ये कह सकते हैं राजौरी में बारिश हो चुकी है, बहरहाल नुकसान भी हुआ है, लेकिन हम फिर से दुआ करते हैं कि रहमत वाली बारिश अल्लाह बरसाए। और हमने बात की जब हम खुशी की खबर शेयर कर रहे थे कि नीट के एग्जाम में कई बच्चों ने कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन जब रिजल्ट होता है किसी भी क्लास का, अब हम बच्चों को ज्यादा इस मामले में टारगेट करते हैं या जज करते हैं। इससे देखिए बजाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है घरों में, मगर फिजा में एक अनजाना सा दबाव महसूस होता है। आजकल ये देखा गया कि 36 सदी की अब माँ देखिए बावर्ची खाने में मसरूफ है, मगर उसके हाथों की रफ्तार में वो सुकून नहीं है जो रोजमर्रा का हिस्सा होता है। उसकी नजरें बार बार अपने बच्चे के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं जब रिजल्ट होता है, और बच्चा खुद सामने बैठा है, कभी वो सेलफोन को देखता है, कभी वो खामोशी से छत को तकता है, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा होता है जिसकी वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आती। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं होता।

0: होता है दोस्तों, ये एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ एक बच्चा अपनी पूरी मेहनत, अपनी काबिलियत, हत्ता कि अपनी पहचान को चंद नंबरों में सिमटता हुआ महसूस करता है। और ये कह सकते हैं कि अफसोस की बात है कि हमारा माशरा भी इस लम्हे को इसी तरह पेश करता है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही हो।
1: सही, सही बात।
0: और जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि कितने फीसद आए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पोजीशन क्या है,
1: फलां के बच्चे से कम क्यों, ये सवालात बज़ाहिर मामूली हैं मगर एक बच्चे के नाजुक दिल पर ये पहाड़ बनकर गिरते हैं। ये दबाव सिर्फ इम्तिहान का नहीं होता बल्कि उन तमाम तवक्कुआत का मजमूआ होता है जो हमने बच्चों के
0: गर्दन पे डाल दिया होता है। एक हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशंस हम मतलब बच्चों पे हम बहुत ज्यादा ये लगाते हैं कि ये एक्सेल करेगा, फर्स्ट पोजीशन लाएगा, नीट क्वालिफाई करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पड़ोसों के फिर तबसरे होते हैं अगर नकाह क्वालिफाई चुका रहा,
1: रिश्तेदारों के
0: और स्कूल की दर्जाबंदी, सबसे बढ़कर के लोग क्या कहेंगे, उसका खौफ, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन जाते हैं जिसे एक कम उम्र जो जहन होता है, बच्चा होता है, उसके उठाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। आप देखिए नीट कितने क्वालिफाई किया, सीटें जितनी थी वो आ गई, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, देखिए अब पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, माँ का, बाप का, सभी का वो बोझ उसके जहन पे रहेगा।
1: लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया उनको ये भी बताना हम चाहेंगे कि आधे जिन्होंने आज क्वालिफाई किया, आधे उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई
0: किया। और यही मत आप देखिए इन्हीं नंबरों में या इसी एग्जाम को अपनी जिंदगी तसव्वुर ना करें। जिंदगी के बहुत सारे इम्तहान आएंगे जिनमें आप बहुत कामयाब रहेंगे और आगे जाएंगे। और देखिए जब बच्चा ये एग्जाम देके कोई भी आता है, जब नतीजा तवक्को के मुताबिक नहीं आता तो बच्चा सिर्फ मायूस नहीं होता बल्कि वो टूट जाता है, वो खुद को नाकाम नहीं बल्कि बेवकत समझने लगता है। उसको लगता है कि उसके बहुत सारे ख्याल जहन में आते हैं कि शायद उसके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसी मोहब्बत नहीं अब देंगे जैसे वो दे रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यही सोच, यही खामोश अजियत बाज़ औक़ात उसे अंधेरी की तरफ ले जाते हैं।
1: वो तो परेशान होता है,
0: वो फरार हो जाता है, फिर
1: इस हिसाब से दबाव डालते हैं,
0: दबाव डालते हैं। और फिर वो कई बार ऐसा होता है कि पक्षी बचपना वहां करना वो पढ़ाई थी की है
1: ना, बिल्कुल।
0: और फिर जो बाकी आप वाकया देखते हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स की तरफ जाते हैं, कुछ
1: एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं।
0: तो कोशिश कीजिए जो बच्चे इस बार जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया किसी भी एग्जाम में, ये आखिरी जिंदगी का मोड़ आप तसव्वुर ना कीजिए। अभी जिंदगी के बहुत सारे इम्तहान आएंगे, बहुत सारी खुशी आपकी बहुत से मौके आएंगे आपकी झोली में, बस आगे बढ़ने की जरूरत है। और पेरेंट्स को वही प्यार वही देना है, वही केयर देना है। और जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि अभी दो ही दिन, एक ही दिन हो गया है इसको रिजल्ट सामने आए हुए, तो कुछ बच्चे डिप्रेस हो सकते हैं क्योंकि समाज का डर होता है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस डर की वजह से बच्चे का जहन छोटा है, वो टूट भी सकता है।
1: सही बात।
0: तो इन बातों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पयामे सुब
2: सुनो सजना,
1: पयामे सुब।
3: जी दोस्तों, पयाम सुबह जारी है और कुछ दोस्तों ने मैसेजेस हम तक पहुंचाई है। एक हमारे लिस्टनर है, रेगुलर लिस्टनर साहिल डार जनाब साहब सोरा से, ये कह रहे हैं कि इस वक्त सोरा इलाके में बहुत जोरों की बारिश हो रही है और सिटी के लोगों को बहुत सारा इंतजार है रहमत वाली बारिश का। चूंकि
4: टाइम हो रहा है, आइए अब कश्मीरी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं।
5: आदाब, आकाशवाणी। खुर्शीद अहमद बोजना की खबर, गुड बुजू खास खास खबरों हूं खुलास। दुसत्थिमन कौमी फिल्म अवार्डन हूं ऐलान करना आमुत। आर्टिकल 370 फिल्म बापत ये यामी गौतमस बेहतरीन अदाकारा अवार्ड दिन। पांच सत्थन शहर पेड़ कर आमतन रेलवे स्टेशन फ्लैगशिप अमृत भारत स्कीम तहत तुल वजीर अजम नरेंद्र मोदी दस। मिशन आगमन तहत भारत गुक पान तैयार कर आमुत विक्रम वन नव राकेट कामयाबी सान मदारस मज दाखिल, वजीर अजम सुन अमलस मुबारक। तो एस के आई सी सी श्रीनगर त्रिम चुनार बुक फेस्टिवल शुरू। एल जी मनोज सिन्हान दोहरो जम्मू कश्मीर कल्चर तो तखलीकियत मरकज बनान सरकार अजम। तफसील सान बुझू खबर। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 दुसत्थन कौमी फिल्म अवार्डन मज बेहतरीन फिल्म हूं अवार्ड मोलमुत। रात शाम नई दिल्ली अंदर कौमी फिल्म अवार्डन हूं ऐलान करान फीचर फिल्म जुमरिक जूरी हिंद चेयरमैन जयराजन वोनमुत ज ममूटी तो कार्तिक आर्यन तिजन फिल्मन ब्रह्मा युगम तो चंदो चैम्पियन बापत बेहतरीन अदाकार के जुमरस मज कौमी फिल्म अवार्ड मोलमुत। तमो वोन फिल्म आर्टिकल 370 मज तिज अदाकारी बापत ये यामी गौतमस बेहतरीन अदाकार सुन अवार्ड दिन। गौर फीचर फिल्म हिंद जूरी हिंद चेयरमैन असीम कुमार सिन्हान वोनमुत ज सुनीरा रॉय सिंह हिदायतकारी मज बंगारस बेहतरीन गैर फीचर फिल्म हूं अवार्ड मोलमुत। बेहतरीन मकसर फिल्म रोज मराठी जबान मज हम सफर। तमो वोन स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक बापत ये बेहतरीन अदाकारी हूं अवार्ड आनंद एल राय दिन। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड ये संजू श्रीवास्तव दिन। के प्रदीप कुमार ये सिनेमास मज बेहतरीन तहरीर खतर तिज कन्नड़ किताब बापत अवार्ड दिन। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की हिस्से रंग तुल वजीर अजम नरेंद्र मोदी पांच सत्थन शहर पेड़ कर आमतन रेलवे स्टेशन फ्लैगशिप अमृत भारत स्टेशन स्कीम तहत दस। अमृत भारत स्टेशन स्कीम तहत ये दस दुरुस्त मुल्कस अंदर दोमि फिर तुल आमुत। जुतोव मई 2015 मज वजीर अजमन अर्धन रियासतन तो मरकजी एहतमाम वालन इलाकन अंदर अमृत भारत स्टेशन स्कीम तहत अख त्रेन शहर पेड़ कर आमतन रेलवे स्टेशन दस तुलमुत। शहर पेड़ कर आमित रेलवे स्टेशन जदीद तर्जस पे मुसाफर हंद ग बनान आमित। वुहन रियासतन अंदर नवन पांच सत्थन रेलवे स्टेशन हिज शहर पेड़ पे तकरीबन 1,570 करोड़ रोपये लागत आम। मिशन आगमन तहत भारत गुक पान तैयार कर आमुत मदारस मज ग वोल राकेट विक्रम वन इंजन आखिरी मरहल मुकम्मल सपदन पत् 450 किलोमीटर बुलंद मदारस मज पे लोड कामयाबी सान वातान बापत यह कामयाबी सान मदारस मज दाखिल सपुदमुत। यह राकेट आंध्र प्रदेश किस श्रीहरिकोटास मज वाका सतीश धवन खलई मरकज पे रात 12:05 पे खलास मज सोजना आमुत। अम कामयाबी सारत निजी शोब दस मदारस मज राकेट लॉन्च कर सलाहियत प्रवन वोल दुनियो त्रिम मुल्क बनोमुत। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अत कामयाबी पे स्कैरूट एरोस्पेस मुबारक कोर्मुत। तमो कर् फोन पे स्कैरूट किस टीम सत कत तो तिज अम खलोई कामयाबी हिंद तारीफ।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर।

यह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। लाइव मॉर्निंग शो पायम सुबह जारी हैं। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप हिंदी खबरों का बुलेटिन सुनेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी,
4: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% हैं।
3: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन

0: और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही,

0: साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमरीका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट कन्वीन्स ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग टुमारो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉर्न्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट सबमिटिंग फेक और
1: आकाशवाणी श्रीनगर 8:15 सवेर समिन पेश प्रोग्राम सैन तारीख।
2: सैन तारीख प्रोग्रामुक ब्याखक शुमार है चुस्ब सतीश विमल तुंदिस खदमतस मज हाजिर। आज छ सैन स्टूडियोस मज मौजूद डॉक्टर ममताज यतू सब यम छ कशिर आर्कियोलॉजिस्ट यमो जन इंग्लिस्तानस मज डॉक्टरेट हासिल कोर आर्कियोलॉजी हिंदिस सब्जेक्टस मज तो दुनियाकन बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्टन सत कम कर शर्फ इन मूलमुत पतम जाय वरी वो इन अमली तौर पर मज आर्कियोलॉजी सापस्त तारीख शनासी हंद अख नो पहलू ओन आर्कियोलॉजी ब्रोह कुन तो सैन नौजवान ये ब्रोह कुन ये कम अंग्रेजो कर्म कतन तान त्रवित सो ब्रोह पकनावान शानस वगदान दिल सठा खुश ग अहम आर्कियोलॉजिकल साइट हाईगाम सोपरस नख कसम बाग साइट यमो अत पे कम कर आज यो यमन नश जान कि यह साइट क्या है अत कम कम चीज मिलमित तो तारीख कन कमन गोशन हे निशानदेही सपदान जो जन पथ कल पुन पर्जन मदद मिलान डॉक्टर ममताज यतू सर
3: शुक्रिया सतीश सब तो योर बुलाने खातर यह खुशकस्मत कि मिले कि मतलब अख चांस अख मिले यू नो मौका अख मिलो अख फेलोशिप मिले ये वजह सत इंग्लैंड हक वत रिसर्च हे कर तिथ यह रिसर्चन हंद पहलू मे पता लग एम पत् वापस योर मजन हे एप्लाई कर तथ मजन इस फिर बह इंग्लैंड गोस तत मे रिसर्च स्टार्ट कोर मोन रिसर्च उस ये कि मजन कम तबियत आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि अगर अंग्रेज पे बो सो लैंडस्केप एंड सेटलमेंट पैटर्न यानी कि गोनिक लटन कर मज कम हालात मजन रोजान खेवान चवान कित
2: शिकार
3: बिल्कुल कित पान ये कम जान रोजान ये अत बार मजन रिसर्च मतलब टॉपिक मोन ये रिसर्च मजन
2: रिसर्च कश्मीर स्टडी ही करा
3: बिल्कुल बिल्कुल मे एम फिल इम ब्रोह कोर्मुत एम फिल मे सोपोर तो बांडी पोरा पे कोर्मुत
2: आर्कियोलॉजिकल साइट
3: बिल्कुल करे मे ना तुम ये इशू उस मजन पथ कुन इशू तकरीबन लास्ट सर्वे गुत कुछ दुशीत मजन सो मल्टी डिसिप्लिनरी सर्वे अख मजन मुंबई पे आम कह जियोलॉजिस्ट कह आर्कियोलॉजिस्ट कह जू आर्कियोलॉजिस्ट कह बॉटनिस्ट तम रल सारी दोपुख वो नवियत क्या ये कम जानवर जियोग्राफी क्या तथी सो तमो इंसान सुन वो रिमेन्स कपर कपर इंसान कि रूदमुत कार पे रूदमुत सो गो लास्ट टाइम पे गई हालात खराब तमें पे हम गहन तम पज मिले मे चानस पानस तलब अख थोड़ा बहुत जान पथ कुन साइंस उस बैकग्राउंड दो डॉक्टर उसान बन इंसानी डॉक्टर तो मगर सह हूँ सपद कहें तो थोड़ा लाइन मिले डिफरेंट पान
2: ज्यादा बड़े शोबिक डॉक्टर बने
3: तो जनाब
2: तो इंसान जिसम तहजीबुक डॉक्टर
3: बिल्कुल तो ना यह खुशकस्मती जनाब ये अप लोग इंसान तो वन कुछ तरीक हाँ इंसान मजन खुद कंट्रब्यूट कर इस पे मे पी एच डी प्रोजेक्ट रोट अत पे इशू ये कि बहुत कर बराबर ये पे इंसान सुंद वजूद या इंसान सद निशान मजन सो पैलियोलिथिक पीरियड तत पे कर स्टार्ट यह जहन मजन कह कि मे मिले कि यह पता कहें मगर टॉपिकस मजन कि करो बराबर तत पे स्टार्ट यह कोतान मिले यह पत मिले प्री हिस्टारिक पीरियड यानी कि कन कल वक्त यह मिले पत अर्ली हिस्टारिक पीरियड ये जन इंसान लोग अकिस जाए रोजन मतलब पे जिंदगी बसर वगैरह कर या पत इस रिटन हिस्ट्री
2: वगैरह
3: बिल्कुल मगर वायद मुशाहद कर कमन चीजन हूं कि ऑन साइट क्या अवेलेबल कम टाइप साइट अवेलेबल मे कौर तथा इंग्लैंड मन आ वन कि ना करो रिसर्च अक साइंटिफिक तरीक पे तथ वन ट्रांजेक्ट बेस्ड सर्वे यानी कि तमो दिख मे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला मन नौ ट्रांजेक्ट यानी कि नौ एक हिसाब बन बहुत खलई पॉइंट दिख मे नवन किलोमीटर दुम स्टार्ट पॉइंट बहुत दुम एंड पॉइंट दुक ये पे कर स्टार्ट ये नौन किलोमीटर मन हर अख ट्रांजेक्ट सर्वे पैदल पकुन अत पे वो ये मेटीरियल कल

0: के दर्शन करने के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा पार कर गई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुतादिद जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हसास मकामात की सख्ती से निगरानी करें और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को दिन रात फाल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि राहत और बचाव टीमें बर वक्त तैयार रहें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो तोदे खिसकने के ज्यादा खदशात वाले रास्तों पर मशीनरी और दीगर जरूरी वसाइल को तैयार हालात में रखें। वहीं आफा से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सैयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में IMD ने बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनयी, जो भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदाराने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदाराने इनकलाब के हमले में 2 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक, 1 लापता और 4 फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए, ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नज़र बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में मारूफ अदाकार और हिदायतकार आर माधवन से बातचीत करेंगे, जो बावकार पद्मश्री एजाज याफ्ता हैं।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: आप इस गुफ्तगु को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। रिवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट DRI ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां

0: अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। वजारत खजाना ने बताया कि इन कार्रवाइयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने मजीद बताया कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरों ने नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें स्मगल की गई कीमती धातें और नकद रकम जब्त की गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब में मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। ये रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अदा की जाएगी। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोश और जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर हैं। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन्स का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है, ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खवातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
2: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी, ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिया मुआश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चीनी मिलाई जाती है। इससे और आगे बढ़ते हैं, घर से बाहर निकलते ही लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जूस के नाम पर, जो लोकल में आपके वहाँ एप्रिकॉट होता है, सुनन, चियर, आलू बुखारा, ये आपके कश्मीर के लोकल के फ्रूट्स हैं। लोग इसको फोकस नहीं करते, लेकिन बाहर से कंपनियों से बना करके आई हुई आपको प्लास्टिक के बॉटल में पैक होकर के जो मिलती है, उसके अंदर आपको दिया जाता है। अगर आप ख्याल करिए तो ज़हनी गुलामी के हम लोग इतने ज्यादा शिकार हो चुके हैं कि हमारे ही घरों के आसपास फल लगा हुआ है, बिना किसी पेस्टिसाइड के खुद ही निकलता है, उसको वहीं पर लगा रहता है, वहीं टूट करके गिर जाता है, उसको पूछने भी नहीं जाते हैं। लेकिन हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से प्लास्टिक की बॉटल में पैक होकर के हल्का सा उसी फ्रूट का पल्प, उसमें अगर आप 200 मिलीलीटर का जूस पीते हैं तो यकीन मानिए कि उसके अंदर 70-80% सिर्फ चीनी होती है। उसके अलावा उसके अंदर कलरिंग मटेरियल, और वो कलरिंग मटेरियल जिनकी स्टडीज ये हुई है कि वो कैंसर कॉज करते हैं।

0: उसके अंदर आपको दिया जाता है। अगर आप ख्याल करिए तो ज़हनी गुलामी के हम लोग इतने ज्यादा शिकार हो चुके हैं कि हमारे ही घरों के आसपास फल लगा हुआ है, बिना किसी पेस्टिसाइड के खुद ही निकलता है, उसको वहीं पर लगा रहता है, वहीं टूट करके गिर जाता है, उसको पूछने भी नहीं जाते हैं। लेकिन हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर के हल्का सा उसी फ्रूट का पल्प, उसमें अगर आप 200 मिलीलीटर का जूस पीते हैं तो यकीन मानिए कि उसके अंदर 70-80% सिर्फ चीनी होती है। उसके अलावा उसके अंदर कलरिंग मटेरियल, और वो कलरिंग मटेरियल जिनकी स्टडीज ये हुई है कि वो कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसी चीजें जो अननेचुरल है, हमारे लिए नहीं बनी है, ऐसी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शुगर का ज्यादा खाना, फाइबर का कम लेना, कोई भी एक्टिविटी ना करना, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, सीजनल चीजें ना खाना, जैसे इस टाइम जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको ना खाना। अब अगर हम वो नहीं खाएंगे, अगर किसी ऐसी चीज की डिमांड करेंगे जो इस मौसम में नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी डिमांड को सप्लाई करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और हम अपनी ही डिमांड के गुलाम हैं। अगर हम अपनी कोशिश करें कि जो हमारी इच्छा है उसको कम करने की कोशिश करें, बेकार की चीजों की डिमांड ना करें, जो मौसमी चीजें हैं उसको ही खाएं, तो बहुत हद तक हम बीमारी से बच सकते हैं, या ऐसी बीमारियों को पैदा करने वाले खानों से बच सकते हैं जो कि इन बीमारियों का कारण बनते हैं। तो फैटी लीवर कहने का मतलब एक ऐसी बीमारी है कि लीवर के ऊपर जब बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा होने लगे और लीवर फैट को बाहर ना निकाल पाए
1: जी,
0: तो बॉडी के अंदर फैट का कलेक्शन बढ़ जाता है, और यही फैट का कलेक्शन बढ़ना बाद में इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस कॉज करता है। और इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉज है जो बॉडी के अंदर सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक लगभग कह लीजिए कि बेसिक या रूट कॉज है। शुगर कह लीजिए, ब्लड प्रेशर कह लीजिए, और हाइपरटेंशन कह लीजिए, जिसको दूसरा नाम है प्रेशर कश्मीर में बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो इसका बेसिक कॉज है। तो कोशिश यही करिए कि सुबह उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जिसको भी फैटी लीवर डायग्नोस होता है एक्सरसाइज करें, शुगर का इस्तेमाल कम करें, और जितनी भी प्रिजर्वेटिव चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, शुगरी आइटम्स है, तेल का खास ध्यान रखें, और जो यहाँ के लोकल फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, जैसे हंद हो गया जिसको डंडेलियन कहते हैं, हंद का साग यहाँ का ट्रेडिशनल यूज रहा है, फैटी लीवर में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। इसके साथ साथ जो हाक है, इसके साथ साथ यहाँ पे नदरू है, तो इन तरह की चीजों का जो ट्रेडिशनल फूड है उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा फैटी लीवर को बढ़ाने वाली चीजें इस्तेमाल ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं फिर से लौटूंगी, लेकिन अभी डॉक्टर नसीर अहमद शाह साहब से सुनना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं फैटी लीवर के बारे में।
2: मैं कोशिश करूंगा ज्यादा आसान लफ्जों में ये बात कहने की। देखिए, अगर शुगर खून में बढ़ जाता है, शुगर खून में बढ़ गया तो हम पहले यही मान के चलते हैं कि हमने चार लुक में ज्यादा खाए थे और इंसुलिन इतनी नहीं थी, तो शायद उस वजह से बढ़ी, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई थी तो उस वजह से बढ़ी। तो अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट हमने ज्यादा मतलब ज्यादा खाया
1: जी, जी।
2: तो वो शुगर खून में आ गई तो डायबिटीज, और अगर यही शुगर हमारे ब्रेन में आ गई तो अल्जाइमर्स, और अगर यही शुगर हमारी बॉडी में ज्यादा फैट की सूरत में जमा हो गई तो ओबेसिटी, और यही शुगर जब हमारे लिवर में जमा होनी शुरू हो जाए तो वही फैटी लिवर या मैश के अलग अलग ग्रेड्स हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे हमारे खान पान पे असर इसका देखा जाता है, मगर कुछ दवाइयां भी हो सकती हैं, वो भी वजह बन सकती हैं फैटी लिवर डिजीज की
1: जी।
2: कुछ और भी वजूहात हो सकते हैं, मगर यहाँ पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम सॉल्यूशन की बात करें, देखिए मैंने एक मौलवी साहब से चंद दिन पहले ये पूछा था कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी बार खाना खाते, थोड़ी देर वो मुफ्ती साहब थे, थोड़ी देर वो सोचना पड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ तक हदीस की किताबों में जिक्र है तो वो सुबह नमाज पढ़ने जाया करते थे, पहले पानी पीते थे, मश के जेब में पानी होता था, और उसके बाद जो है वजू, या पहले वजू और उसके बाद पानी, तो उसके बाद नमाज, और नमाज के बाद जब चाश का टाइम हुआ
1: जी,
2: चाश का टाइम ये मान के चले आप 10 और 11 के बीच में,

0: तो तब वो आते थे और आते ही अपने हुजरे में आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते थे कि कुछ है खाने को, तो दो जवाब मिलते थे, हाँ जी कुछ है या नहीं है। और अगर नहीं है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फिर मैं रोजेदार हूँ, और अगर कुछ है तो वो तनाउल करते थे। और होता क्या था, या तो खजूर और चंद खजूर आपने खा ली, ये गजा होती थी, या जौ की रोटी होती थी और सिर का सालन होता था, और ये बहुत महबूब गजा थी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर गोश होगा, चूंकि रेगिस्तान इलाका था, सब्जियां तो बनती नहीं थी। तो यही गोश, कद्दू, लौकी, इन चीजों का शायद जिक्र मिलता है। तो मगर कहने का मकसद ये है, या कभी किसी बकरी का दूध होगा या ऊंटनी का दूध होगा, तो ये गजा रहती थी। और अक्सर देखा जाता है कि एक टाइम का खाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में खाते थे और दो टाइम अक्सर अहदीस में ये जिक्र नहीं मिलता है। अलबत्ता एक हदीस है जहाँ पर यह जिक्र मिलता है कि शाम का खाना तर्क मत करिए, चाहे चंद मुट्ठी पर खजूर ही आप खाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुट्ठी पर खजूर शायद शाम का गजा हो सकता है। मगर पूरी जिंदगी में उन्होंने जो दर्ज दिया है कि मैदे के तीन हिस्से करो, जब भूख लगे तो खाओ, जब भूख बाकी रहे यानी अभी भूख, तो अपने हाथ पीछे करो। तो वही चीज अगर मैं आज भी समझाने की कोशिश करूं तो यही दवा है और यही गजा है, इसी से फैटी लिवर रिवर्स भी हो सकता है।
1: क्या बात है डॉक्टर महबूबुल आलम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इलाज क्या है?
2: लगभग जितनी बातें सर ने बताई वो लगभग 100% सही है।
1: बिल्कुल,
2: जब भी फैटी लिवर इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ आपको फैटी लिवर हो गया है, तो सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि वो चीजें जिसकी वजह से वो पेशेंट फैटी लिवर तक पहुंचा है उसको उससे दूर रखा जाए। और मैं अगर पर्सनली आप पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि रोजा रखें। रोजा रखना बदन के
0: एक टाइम का खाना बंद कर दें,
2: कम से कम या तो रोजा रखे या तो कुछ ना करे, तो कम से कम एक टाइम का खाना तो बंद ही कर दे।
0: देखिए, अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ यूनानी में बहुत से तरीके हैं, जैसे मिल्क थिसल है और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिससे फैटी लिवर कम हो सकता है, पर हम जोर देते हैं कि कम से कम शाम का खाना आप बंद करो, उसके बदले सलाद या स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले लो और यहाँ से आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो। अभी जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि पुलवामा में जो हमारा हॉस्पिटल है स्टेडियम के पास, अल मदीना हॉस्पिटल, वहाँ पर ये डॉक्टर महबूब साहब हर सैटरडे और हर इतवार को होंगे और मैं बजाय खुद मंडेज को वहाँ रहूंगा। आज इतवार है, आज के दिन मैं अनंतनाग में रहता हूँ और कल मंडे पुलवामा, ट्यूसडे हमारे डॉक्टर माजिद साहब शुपियन वाले सेंटर में होते हैं, फ्राइडे वो हमारे त्राल वाले सेंटर में होते हैं, वहाँ पर हमारे दूसरे डॉक्टर साहिबान भी होते हैं जैसे डॉक्टर अब्बास साहब है, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर अर्शिद साहब। एक सेंटर हमारा है यहाँ नटीपुरा में, वहाँ हम बजाय खुद बुध को होते हैं और बाकी डॉक्टर साहिबान बाकी दिनों में होते हैं। एक सेंटर हमारा सिकडाफर चौक में है, एक सेंटर हमारा मागाम के बाईस हर सिंह के सामने है, एक सेंटर हमारा बारामुल्ला में है। तो जो भी इंसान हमसे राब्ता कायम करना चाहे वो कर सकता है, हमारे सेंटर्स पे आ सकता है। हमारा एक फोन नंबर भी है, फोन नंबर है 9419408011। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 9419408011।
1: आप दोनों डॉक्टर साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हमें दिया। इंशाल्लाह मौका मिला तो आगे भी आपके साथ बात होती रहेगी। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे
4: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
5: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM

0: टू 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: समीन, आज इतवार है, साल 2026 के जुलाई महीने की 19 तारीख, मुताबिक 4 सफर अल मुजफ्फर 1448 हिजरी। श्रीनगर से आज शाये होने वाले उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समीन, आगाज में नजर डालते हैं आज के अखबार में शामिल अहम खबरों की सुर्खियों से।
3: जी, पहले ये खबर के दर्जे हरारत की सभी बात कर रहे हैं और इस वक्त वादी में लगभग हर जगह बारिश हो रही है, जैसे इतलात हम तक पहुंच रही है। तो कल जो दर्जे हरारत था, एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है इसी हवाले से कि वादी में 27 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत दर्ज। श्रीनगर में पारा 36 डिग्री के करीब रहा, कुपवाड़ा में 35.5 और काजीगुंड में 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और 19 जुलाई यानी कि आज से 23 जुलाई तक मौसमी सूरत हाल खराब रहने का जो अलर्ट जारी किया गया है, ये भी कहा गया है कि सैलाब की सूरत हाल हो सकती है। और जो हम देख रहे हैं कि राजौरी में वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, सैलाब की सूरत हाल है। और आज चूंकि संडे है, सभी से हमारी तरफ से गुजारिश है कि आज जरा एहतियात कीजिएगा पिकनिक स्पॉट्स की तरफ, चाहे खासकर पहलगाम, ये जो दूर दूर जगह हैं उस तरफ जाने के हवाले से हम ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो सभी कल से बारिश की कह रहे थे कि आनी चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अब पेशन गोई भी थी, अब चूंकि बारिश आ चुकी है, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगी कि रहमत वाली बारिश रहे तो सबके लिए ठीक
0: रहेगा। बिल्कुल सही बात है। एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, श्री अमरनाथ जी यात्रा आज यानी 19 जुलाई से मुअत्तल रहेगी, अगले चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर एहतियाती इकदाम। इसी हवाले से एक और सुर्खी है, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से आर्जी तौर पर रोक दिया गया, अकीदतमंदों को मशवरा दिया जाता है कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें।
3: एक अंग्रेजी रोजनामे की शह सुर्खी है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म इज नॉट मेयरली स्टेटमेंट बट अ लाइन ऑफ एक्शन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में शिरकत, कलम की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं, जम्मू कश्मीर को इल्म, सकाफत और तकनीकी सलाहियतों के कौमी मरकज में तब्दील करना हमारा मकसद, कश्मीर में चिनार सब्र, खूबसूरती और बर्दाश्ती की जिंदा अलामत, चिनार बुक फेस्टिवल इल्म, अफकार और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म, मनोज सिन्हा।
3: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि विक्रम एक की कामयाब लॉन्चिंग, भारत के खलाई सफर का तारीखी संग मील है, वजीर अजम की भारत के पहले निजी आर्मदा रॉकेट की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट टीम को मुबारकबाद। और इसी हवाले से यह खबर है कि विक्रम एक के खला में कामयाब लॉन्चिंग, एलजी की टीम मुबारकबाद देती है।
0: एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस मजबूत बनाने के लिए डेटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का जायजा, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू का शहरियों को बार बार दस्तावेजात जमा कराने से नजात दिलाने पर जोर, पैदाइश व अमवात के इंदराज को फलाही स्कीमों, बैंकिंग और तालीमी निजाम से जोड़ने की तजवीज।
3: अंग्रेजी रोजनामे की शह सुर्खी है कि कश्मीर्स प्रीमियम चेरीज प्लम्स रीच सिंगापुर मार्केट फॉर फर्स्ट टाइम, एपीडीएसए इज कमिटेड टू कनेक्टिंग जेएनके फार्मर्स टू ग्लोबल मार्केट्स।
0: एक अंग्रेजी रोजनामे की यह सुर्खी है कि पार्लियामेंट ब्रेसेस फॉर स्टॉर्मी मॉनसून सेशन, गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू पायलट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिस्पाइट अर्लियर डिफीट।
3: नेशनल कॉन्फ्रेंस का रियासती दर्जा बहाली के हक में जंतर मंतर एहतजाज कल, اراکین قانون سازیہ ممبران پارلیمنٹ اور صوبائی عہدیداروں کو 5 افراد کا گروپ ساتھ لانے کی ہدایت۔

0: हवाले से ये खबर कि महबूबा मुफ्ती का जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत करने से इनकार। रियासती दर्जा बहाली की जद्दोजहद आर्टिकल 370 की बहाली से अलग नहीं हो सकती।
1: समीन सुर्खियां आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। बाकी सुर्खियों से पहले चंद तजारती पैगामात।

0: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: वक्फे के बाद आज की सुर्खियों में आपका फिर से खैर मकदम है। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और इसकी सुर्खी है, गाड़ी से टकरा कर स्कूटी पर सवार ईदगाह की खातून जान बहक, जिला गांदरबल के इलाका डूबीपोरा में रोड एक्सीडेंट।
2: पुंछ में 25 करोड़ रुपए से जायद मालियत की हेरोइन बरामद, स्मगलर गिरफ्तार।
1: खरीदारी में कमी पर सोने की कीमत में 850 रुपए की कमी, जबकि चांदी की कीमत में 2000 रुपए फी किलोग्राम की गिरावट आई।
2: एक मकामी रोजनामे में एक रिपोर्ट शाया हुई है जो शेयर हम करेंगे अपने दोस्तों के साथ, डिटेल आप जरूर पढ़िएगा। यह है कि कई पुल, अस्पताल और स्कूल इमारतें इंतहाई नाजुक करार, महकमे तामीरात आमा की जामिया ऑडिट रिपोर्ट जारी, कई अहम पुलों की साख्ती हालत पर तश्वीश का इजहार।
1: एक उर्दू रोजनामे में यह खबर छपी है जिस पर सकीना जी हमने बहुत बार बात भी की
2: जी।
1: गर्मी से राहत के लिए नदी नालों का रुख बच्चों के लिए खतरनाक साबित,
2: बिल्कुल।
1: शुमाल और जुनूब में नहाने के दौरान गर्क आबी के बढ़ते वाकयात, अवामी हलकों में तश्वीश, बच्चों को तेज बहाव या ज्यादा गहरे दरियाओं, नदी नालों में नहाने की इजाजत न दें, माहिरीन का मशवरा।
2: देखिए, माहिरीन का ये मशवरा है, हम तो कई महीनों से कह रहे हैं कि इस साल में लगभग बहुत सारे वाकयात ऐसे पेश आए, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जहां हम कहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ मबजूल कराइए या पढ़ाई के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज की तरफ इनकी अटेंशन मुतवजा कीजिए, लेकिन अब जरूरत बन चुकी है कि बच्चा पानी में जाना चाहता है, उससे बेहतर है कि बच्चे को बचपन से ही स्विमिंग आप सिखाएं, जिस वजह से अगर गर्मी में बच्चा स्विमिंग पूल में जाता भी है या अगर वो तैरना जानता है तो पानी में वो डुबकी लगा सकता है, लेकिन बिना तैरे या छनते मिस्तगान तो उस तरफ जाना वो बहुत
1: बड़ी खतरनाक
2: साबित। तो पेरेंट्स को चाहिए कि कई सारे पूल बने हुए कश्मीर में, आप वहां पे वहां का रुख कर सकते हैं,
1: बच्चों
2: से ले जा सकते हैं। छुट्टियों के सीजन, अभी बड़ों की छुट्टी होने वाली है, अगर आपका बच्चा सीखना चाहता है स्विमिंग तो पहली फुर्सत में आप ऐसा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब चंद खेल खबरों की तरफ रुख करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने नई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए 9 कोचेस मुकरर किए।
2: देखिए, फीफा वर्ल्ड कप सभी की नजरें शाम की तरफ है कि फाइनल होने वाला है, तो इसी हवाले से खबर है कि वर्ल्ड कप फाइनल से कबल

कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर। कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: का प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौजूदात से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से।
2: नॉमिनेशन, नामजदगी या नामांकन बैंकिंग सिस्टम में एक निहायत ही अहम अमल है, जिसकी रूह से एक खातेदार अपनी मंशा से अपने अकाउंट में एक या कई नाम तजवीज करता है, जो उसके द्वारा चलाए जा रहे अकाउंट्स में मौजूद पैसे के उसकी मौत हो जाने की सूरत में हकदार होंगे। नॉमिनी उस खातेदार का फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई और, ये उसका अपना अधिकार है कि वो किसे नामजद करे। मौत जिंदगी की वाहिद हकीकत और एकमात्र सच्चाई है, और अक्सर बेशतर अकाउंट्स में मौजूद पैसे अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद झगड़ों का बाइस बन जाते हैं। खून के रिश्ते आपस में लड़ पड़ते हैं और पैसा दुश्मनी का बाइस बन जाता है। ये सब कुछ टाला जा सकता है अगर हम वक्त रहते अपने अकाउंट्स में नॉमिनेशन का कॉलम अपनी मर्जी के मुताबिक भर दें। याद रहे कि जिन बैंक अकाउंट्स में नामांकन या नॉमिनेशन किया हुआ होता है, उनमें मौजूद पैसे को हासिल करने के लिए कोई दफ्तरी या अदालती तवालत दरकार नहीं होती है। बस बैंक की शाखा से राबता करके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फराहम करके बैंक अपनी तसल्ली करने के बाद चंद रोज में ही वो पैसे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नॉमिनेशन का प्रोसेस बड़ा आसान है। अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भी मौजूद होता है, जिसे पुर करना हमारे अपने ही हित में है। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ऑनलाइन खोल रहे हैं तो वहां पर भी नॉमिनेशन करने की फैसिलिटी रखी हुई है। पुराने खातेदार अपनी शाख में जाकर अपने अकाउंट का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत और वक्त पर लिया गया एक छोटा सा कदम आपके जाने के बाद आपके अपनों को हजारों परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वक्त रहते इसकी तरफ ध्यान दें और अपने माली सलाहकार यानी जेके बैंक के हर मशवरे पर काम करें, ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल भी बने और पुरसकून भी।
3: जम्मू व कश्मीर हुकूमत की रोजगार फराहम करने वाली अहम स्कीम मिशन युवा को कामयाब बनाने की गर्ज से J&K बैंक ने गुज़श्ता हफ्ते एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। बैंक ने इस मिशन के तहत 30,000 से ज्यादा नौजवानों के लिए कर्जे मंजूर किए हैं, जिसे नौजवानों के कारोबारी सपनों को साकार करने में बड़ी मदद मिली है। ये माइलस्टोन जाहिर करता है कि J&K बैंक जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को वक्त पर माली मदद देकर इन्हें खुद कफील बनाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने में कितना अहम किरदार निभा रहा है। इस बड़ी कामयाबी पर बैंक के मुलाजमीन की हौसला अफजाई करते हुए MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने कहा, मिशन युवा के तहत 30,000 से ज्यादा लोन मंजूर करना बैंक के लिए एक फख्र का लम्हा है और ये हमारी टीमों की अनथक मेहनत का जीता जागता सबूत है। मैं इस शानदार कामयाबी पर J&K बैंक फैमिली के हर एक मेंबर को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इस मिशन को इस रफ्तार से आगे बढ़ने का अजम दोहराते हुए कहा, मिशन युवा एक इनकलाबी कदम है जिसका मकसद हमारे नौजवानों को हुनर और रोजगार के जरिए मजबूत और खुद मुख्तार बनाना है। हम हुकूमत के इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह पाबंद है। हमें यकीन है कि हम वक्त पर अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लेंगे, ताकि हर डिजर्विंग नौजवान को पर वक्त माली इमदाद और सही गाइडेंस मिल सके।
0: सामीन, J&K बैंक ने अपने कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के दायरे को बढ़ाते हुए IA मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में बैंक के जोनल ऑफिस श्रीनगर में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। बैंक के डिविजनल हेड कश्मीर अरशद कादरी की सदारत में हुई इस तकरीब के दौरान मुआहिदे पर J&K बैंक की तरफ से जोनल हेड श्रीनगर शेख मोहम्मद मुजफ्फर और IA मल्टी वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान अहमद ने दस्तखत किए। इस मौके पर बैंक के क्लस्टर हेड जहूर अहमद कानूनगो, AGM जावेद रशीद, ब्रांच हेड रियाज अहमद भट्ट और IA मल्टी वेंचर्स के डायरेक्टर अरशद अहमद के साथ साथ दोनों इदारों के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए डिविजनल हेड अरशद कादरी ने कहा कि IA मल्टी वेंचर्स के साथ बैंक का रिश्ता सालों के भरोसे और यकीन पर कायम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये मुआहिदा इस शराकत दारी को मजीद मजबूत करेगा और मुलाजमीन की माली जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात फराहम करेगा। जोनल हेड शेख मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि इस मुआहिदे से दोनों इदारों के पुराने ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। उन्होंने बताया कि इस कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के जरिए कंपनी के तकरीबन 550 मुलाजमीन को बैंक के खास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का फायदा मिलेगा, जो इनके जाती और पेशावराना ख्वाबों को पूरा

0: करने में मददगार साबित होंगे। आई ए मल्टी वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान अहमद ने जे एंड के बैंक के साथ इस शराकतदारी पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जताई कि इससे इनके मुलाजमीन को बैंकिंग की बेहतरीन सहूलियात और माली फायदे मिलेंगे। इससे पहले क्लस्टर हेड जहूर अहमद कानूनगो ने एक तफसीली प्रेजेंटेशन के जरिए कॉरपोरेट सैलरी पैकेज की मुख्तलिफ खूबियों, डिजिटल सर्विसेज और मुलाजमीन को मिलने वाले रियायती कर्जों की सहूलियात के बारे में जानकारी दी।
1: दरियासना कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का दायरा मजीद बढ़ाते हुए बैंक ने जम्मू में दो नए इदारों के साथ शराकतदारी करते हुए जम्मू के एक बड़े हेल्थ केयर इदारे कमला अस्पताल और ऑटोमोबाइल डीलरशिप न्यू स्टाइल फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ दो अलग अलग मुहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुहिदों के तहत जे एंड के बैंक इन दोनों इदारों के मुलाजमीन को अपना खास कॉरपोरेट सैलरी पैकेज फराहम करेगा। इस पैकेज के जरिए मुलाजमीन को इनकी माली जरूरतों के मुताबिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स, खास रियायतें और डिजिटल बैंकिंग सर्विस

0: के साथ दो अलग अलग मुहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुहिदों के तहत J&K बैंक इन दोनों इदारों के मुलाजमीन को अपना खास कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज फराहम करेगा। इस पैकेज के जरिए मुलाजमीन को इनकी माली जरूरतों के मुताबिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स, खास रियायतें और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का फायदा मिल सकेगा। कमला अस्पताल के साथ हुए मुहिदे पर J&K बैंक की तरफ से जोनल हेड जम्मू चंद्रिका परिहार और कमला अस्पताल के मालिक भारत भूषण ने दस्तखत किए। वहीं न्यू स्टाइल फैब्रिकेटर्स के 303 मुलाजमीन के लिए हुए मुहिदे पर जोनल हेड चंद्रिका परिहार और कंपनी के डायरेक्टर सुदर्शन वजीर ने दस्तखत किए। इस मौके पर बैंक के इंचार्ज लाइबिलिटीज जम्मू डिवीजन निशु महाजन और दोनों इदारों के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए जोनल हेड चंद्रिका परिहार ने कहा कि J&K बैंक बेहतरीन और नई बैंकिंग सर्विसेज के जरिए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप कॉर्पोरेट मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात देने और मुख्तलिफ शोबों के इदारों के साथ बैंक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की एक कड़ी है। पैकेज की खूबियों पर रोशनी डालते हुए इंचार्ज लायबिलिटीज निशु महाजन ने कहा कि इस कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के जरिए दोनों इदारों के मुलाजमीन को इनकी जरूरत के मुताबिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और डिजिटल सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे आने वाले वक्त में दोनों इदारों और इनके मुलाजमीन के साथ बैंक के रिश्ते और भी मजबूत होंगे।
1: दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्ता महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से J&K बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किन को फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं J&K बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, J&K बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं, जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट जिसको हम CC कहते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
1: अच्छा, क्या फायदा दे सकते?
2: फायदा ये है कि जो भी उनका लिमिट है, CC का एक लिमिट होता है
1: बिल्कुल,
2: जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
1: माने पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में
2: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है। अच्छा। जितना भी उन्होंने यूटिलाइज किया है,
1: जो यूटिलाइज किया है
2: उसका 20% हम फराहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी
1: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
2: जी हम देंगे।
1: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे, ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब अदा होगा?
2: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
1: WCTL
2: जिसको हम बोलते हैं, उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे करना है
1: जी,
2: और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना पड़ेगा।
1: माने अगर कोई आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा, तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
2: हाँ।
1: पहला साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसके इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो भरना होंगे
2: जी।
1: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
2: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है, ये 2,55,000 करोड़, जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
1: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द से जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।
2: सही फरमा रहे हैं आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द से जल्द ये हमारी ब्रांच के साथ राबता करें और इस स्कीम का फायदा उठाए।
1: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि गुज़श्ता कई दफ़े ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने, तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाबता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का, क्या इसमें भी वही तरीक़ेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
2: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूं कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1
1: एलिजिबल है,
2: लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचों को ये जो
1: एलिजिबल
2: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
1: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकाम सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
2: हमारे बैंक ने बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई है हमारे ब्रांच की तरफ से, वो

0: वो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन है वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं।
1: नहीं है
0: तो जो एलिजिबल है उनको मैसेज भी गई है, काफी सारी बोरोस को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोस को वो जन समर्थ पोर्टल पे, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो
1: ऑनलाइन प्रोसेस,
0: ऑनलाइन प्रोसेस में जन समर्थ पोर्टल पे, और वहां भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुंच जाती है। तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की जरूरत भी नहीं है,
1: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है,
0: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है, वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे
1: बैंक तक
0: रूट हो सकती है। और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हैं, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाए।
1: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामद गुफ्तगु के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
0: शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।
2: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुंचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
3: और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में J&K बैंक कितनी फुटबॉल एकेडमीज चला रहा है। इस सवाल का सही जवाब है 3 एकेडमियां। इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए हैं जिनमें से दिए गए बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
4: कश्मीर डिविजन से जकोरा की असमत जहगीर, जम्मू डिवीजन से पोगल परस्तार रामबन की सविता देवी, और लद्दाख से लह के रिंगजन लाओ।
3: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब नोट करें आज का सवाल। आपको बताना होगा कि J&K बैंक ने मिशन युवा के तहत कितने नौजवानों के हक में अब तक कर्जे सैंक्शन किए हैं।
4: और आपके ऑप्शंस है 10,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा या 30,000 से ज्यादा।
3: इस सवाल का सही जवाब आप हमें 25 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे तक मेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। वाजा रहे अपने जवाबात के साथ अपना नाम, पता, फोन नंबर और J&K बैंक का 16 डिजिट वाला अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें।
1: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122।
5: अभी आप सुन रहे थे J&K बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट J&K बैंक।
6: यह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर।
7: रेडियो साथी,
8: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
7: आपका हम सफर,
8: रेडियो साथी।
9: आदाब सामीन, आकाशवाणी श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम रेडियो साथी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी,
10: और मैं हूं रिफत आरा। समीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगु करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा मौजू है सेहतमंद आदत, जिस्मानी फिटनेस और जहनी सेहत।
9: सेहत सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं, बल्कि जिस्मानी, जहनी और समाजी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्ती का नाम है। अगर हमारा जिस्म सेहतमंद हो लेकिन जहन परेशान हो,

0: तो जिंदगी का लुत्फ खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर जहन पुरसुकून हो लेकिन जिस्म कमजोर हो तो इंसान अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा नहीं कर सकता।
1: बिलखसूस कश्मीर जैसे खित्ते में जहां गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे, यहाँ के लोगों ने बेशुमार मुश्किलात, परेशानियां, खौफ और गैर यकीनी कैफियत का सामना किया। इस तवील दौरानिये ने सिर्फ मईशत या तालीम पर असर नहीं डाला बल्कि लोगों की जहनी सेहत पर भी गहरे नकूश छोड़े हैं।
0: दोस्तों, आज हम आपके सामने कश्मीर की तारीख के एक ऐसे बाब का जिक्र करने जा रहे हैं जो दर्द, बेयकीनी, खौफ और इज्तिमाई सदमे से इबारत है। 1990 की दहाई वादी कश्मीर के लिए एक इंतहाई मुश्किल और पुर आशोब दौर साबित हुई। वो सरजमीन जो अपनी कुदरती खूबसूरती, अम, मोहब्बत, मेहमान नवाजी, इल्म, अदब और तहजीबी रवायात की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती थी, अचानक तशद्दुद, खौफ और मुसलसल गैर यकीनी हालात की लपेट में आग की नजर होने लगी।
1: उस दौर में वादी की फिजा में फूलों की खुशबू से ज्यादा बारूद की बू महसूस होने लगी। पहाड़ों में परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ गोलियों और धमाकों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। कई इलाकों में लोगों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई। खौफ इस कदर गहरा था कि हर दस्तक पर दिल धड़क उठता, हर अजनबी चेहरा सवाल बन जाता और हर रात एक नई बेचैनी लेकर आती। आम शहरी खुद को मुसलसल अदम तहफ्फुज़ के एहसास में गिरा हुआ महसूस करते थे।
0: इससे पहले का कश्मीर एक खुशहाल और मुतहरिक माशरा था। बाजार आबाद थे, तालीमी इदारे सरगर्म थे, सयाह दुनिया भर से यहां आते थे और लोग अपने रोजगार और मामूलाती जिंदगी में मसरूफ रहते थे। मगर जब हालात बिगड़ने लगे तो ये रौनकें आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गईं। तशद्दुद, नकल मकानी, खौफ और गैर यकीनी ने लोगों के दिलों से सुकून छीन लिया। बहुत से खानदानों ने अपने प्यारों को खोया। बेशुमार लोगों ने मुश्किलात और सदमात का सामना किया और पूरा माशरा एक गहरे नफसियाती दबाव से गुजरने लगा।
1: दहशतगर्दी और मुसलसल तशद्दुद ने आम शहरियों की जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासर किया। बहुत से बेगुनाह लोग इस सूरतहाल के बीच पिस कर रह गए। घरों में खौफ, गलियों में खामोशी और दिलों में बेयकीनी ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया। बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए, बुजुर्ग मुसलसल फिक्रमंद रहे और नौजवानों के ख्वाब गैर यकीनी हालात की धुंध में गुम होने लगे। कई खानदान बरसों तक इस इंतजार में रहे कि शायद हालात बेहतर हों और जिंदगी दोबारा मामूल पर आ जाए।
0: जिस्मानी नुकसानात के साथ साथ जहनी और जिस्मानी असरात कहीं ज्यादा गहरे साबित हुए। मुसलसल खौफ, सदमे और गैर यकीनी माहौल ने हजारों अफराद की जहनी सेहत पर असर डाला। बेख्वाबी, इसराब, अफसुर्दगी, हर वक्त खौफ महसूस करना और मामूल की जिंदगी में वापस आने में दुश्वारी जैसे मसाइल आम होते गए। बहुत से लोग अपनी खामोश तकलीफ को बरसों तक अपने दिल में लिए फिरते रहे, क्योंकि उस जमाने में ज़हनी सेहत पर खुलकर बात करना भी आसान नहीं था।
1: माहिरीन नफ्सियात इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि जब एक मुआशरा तवील अरसे तक खौफ और तशद्दुद के माहौल में जिंदगी गुजारता है तो उसके असरात सिर्फ उस नस्ल तक महदूद नहीं रहते बल्कि आने वाली नस्लें भी उस इज्तिमाई सदमे से मुतासर हो सकती हैं। वो बच्चे जिन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी में खौफ, धमाके, फायरिंग या मुसलसल बेयकीनी का माहौल देखा, उनकी शख्सियत, एतमाद और जहनी सुकून पर भी इसके असरात

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अमन सिर्फ हथियारों की खामोशी का नाम नहीं। हकीकी अमन तब कायम होता है जब लोगों के दिलों से खौफ खत्म हो, जब बच्चे बेफिक्र होकर तालीम हासिल करें, जब माएं अपने बच्चों की सलामती के लिए हर लम्हा परेशान न रहें, जब नौजवान अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख सकें और जब माशरे में उम्मीद, एतमाद और इंसानियत दोबारा परवान चढ़ने लगे।
0: आज उस तारीख को याद करने का मकसद नफरत को जिंदा रखना नहीं, बल्कि इस हकीकत को समझना है कि तशद्दुद का सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान को उठाना पड़ता है। यही वो सबक है जो हमें मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई देता है कि अमन, बर्दाश्त, मकालमा, तालीम और इंसानी हमदर्दी ही वो रास्ते हैं जिनके जरिए माशरे दोबारा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं।
2: जब कोई माशरा मुसलसल दबाव, तशवीश और गैर यकीनी हालात में जिंदगी गुजारता है तो उसके असरात नस्लों तक मुंतकिल हो सकते हैं। यही वजह है

0: आज हमें ज़हनी सेहत के बारे में संजीदगी से बात करने की जरूरत है।
1: समीन, अक्सर देखा गया है कि जब इंसान मुसलसल ज़हनी दबाव में रहता है तो उसके अंदर बर्दाश्त की सलाहियत कम होने लगती है। मामूली बातों पर गुस्सा आना, जल्द परेशान हो जाना, दूसरों की बात न सुनना और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करना ऐसी अलामत हैं जो हमारे माशरे में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं।
0: सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है?
1: इसकी एक बड़ी वजह ज़हनी तनाव है। जब ज़हन मुसलसल दबाव का शिकार रहे तो इंसान का आसाबी निज़ाम भी मुतासर होता है। नतीजतन वो छोटी छोटी बातों पर रद्द अमल देने लगता है। वो अपनी तवानाई मस्बत सरगर्मियों में सर्फ करने के बजाय गुस्से और बेचैनी में जाया कर देता है।
0: और इसका असर सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरा खानदान मुतासिर होता है। अगर वालदैन खुद ज़हनी दबाव में हों, हर वक्त परेशान रहते हों, एक दूसरे से तलख लहजे में बात करते हों या बच्चों के सामने गुस्से का इजहार करते हों तो बच्चे भी यही रवैये सीखते हैं।
1: बिल्कुल दुरुस्त। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बच्चे नसीहत से ज्यादा मुशाहदे से सीखते हैं। अगर घर का माहौल पुरअमन, मोहब्बत भरा और बर्दाश्त पर मबनी हो तो बच्चे भी उन्हीं खूबियों के साथ परवान चढ़ते हैं। लेकिन अगर घर में हर वक्त कशीदगी हो तो बच्चे गैर महसूस अंदाज में इस कशीदगी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं।
0: आज बहुत से वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे जिद्दी हो गए हैं, जल्द गुस्सा करते हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमने उन्हें बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल का अमली नमूना दिखाया है?
1: ये एक अहम सवाल है क्योंकि तरबियत सिर्फ अल्फाज से नहीं होती बल्कि किरदार से होती है। अगर वालिदैन खुद मामूली इख्तलाफात पर चीखने लगे तो बच्चों से बुर्दबारी की तवक्का करना मुश्किल हो जाता है।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: सामेन इकराम, ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सेहतमंद आदात को शामिल करें। उनमें मुनासिब नींद, मुतवाजिन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना शामिल है।
3: आइए सबसे पहले नींद की बात करते हैं। आजकल बहुत से लोग रात गए तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। सोशल मीडिया वीडियोस और मुख्तलिफ एप्स की वजह से नींद का मामूल मुतासिर हो रहा है। नींद की कमी न सिर्फ जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि जहनी सेहत पर भी बुरा असर डालती है।
2: सामिन इकराम, तहकीकी मुतालात से मालूम हुआ है कि जो लोग मुनासिब नींद नहीं लेते उनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, जहनी थकन और तवज्जो की कमी ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जरूरी है कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद ली जाए।
3: इसी तरह मुतवाजन ग़िज़ा भी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, दालें और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक न सिर्फ जिस्म को ताकत देती है बल्कि दिमागी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है।
2: बदकिस्मती से फास्ट फूड और गैर सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। फौरी जायका तो हासिल हो जाता है लेकिन तवील मुद्दत में यह आदत मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है।
3: अब बात करते हैं जिस्मानी फिटनेस की। बहुत से लोग समझते हैं कि वर्जिश सिर्फ नौजवानों या खिलाड़ियों के लिए जरूरी है जबकि हकीकत यह है कि हर उम्र के फर्द को किसी न किसी शक्ल में जिस्मानी सरगर्मी इख्तियार करनी चाहिए।
2: रोजाना 30 मिनट की चहलकदमी भी हमारी सेहत में नुमाया बेहतरी ला सकती है। वॉक करने से दिल मजबूत होता है, खून की रवानी बेहतर होती है और जहनी दबाव में भी कमी आती है।
3: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज मैदान और कुदरती माहौल खुद एक नेमत हैं। अगर हम रोजाना कुछ वक्त खुली फिजा में गुजारें, पैदल चलें और कुदरत के करीब रहें तो इसके मस्बत असरात हमारी जहनी सेहत पर भी मुरतब होते हैं।
2: माहिरीन का कहना है कि कुदरती माहौल में वक्त गुजारने से जहनी सुकून हासिल होता है, इस्तराब कम होता है और इंसान अपने आप को ज्यादा मुतवाजिन महसूस करता है।
3: समीन जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। कोई भी मुआशरा मसाइल से मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होता लेकिन असल कामयाबी ये है कि हम मुश्किलात का सामना मस्बत अंदाज में करना सीखें।
2: मस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि हम मसाइल को नज़रअंदाज करें बल्कि इसका मतलब ये है कि हम मसाइल के बावजूद उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ें।

0: 90 की दहाई की कहानियां जब आज का नौजवान अपने बुजुर्गों से सुनता है तो उसे एहसास होता है कि खौफ और बेचैनी के साए में जिंदगी कितनी दुश्वार रही होगी।
1: यही वजह है कि आज का नौजवान माजी से सबक लेकर अमन, तालीम और तरक्की को अपनी तरजीह बनाना चाहता है।
0: आज की नस्ल तशद्दुद और तनाव के माहौल को अपनी यादों से निकालकर दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है।
1: उनके ख्वाब वही हैं जो दुनिया के हर नौजवान के होते हैं, आला तालीम, बाइज्जत रोजगार, कामयाब मुस्तकबिल और एक पुरअमन माशरा।
0: अमन सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि तरक्की, खुशहाली और एतमाद की बुनियाद है। जब माहौल साजगार हो तो सलाहियतें खुद ब खुद निखर कर सामने आती हैं।
1: इसी माहौल में नौजवान साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, तहकीक और कारोबार के मैदानों में नई कामयाबियां हासिल कर सकते हैं।
0: आइए हम सब ये अहद करें कि मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे के पैगाम को आम करेंगे
1: और एक ऐसा माशरा तश्कील देंगे जहां हर नौजवान अपने ख्वाब पूरे करने का एतमाद रखता हो। आज का पैगाम यही है कि उम्मीद हमेशा

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए।

0: Tajame i sub.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियत से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 10:30 हुए हैं, बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनेंगे होनहार।

0: आदाब
1: आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब?
2: जी बाजी, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एकदम टिप टॉप। लेकिन टिप टॉप तो हूँ, मगर गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या बच्चों को भी गर्मी लग रही है?
3: जी बिल्कुल,
1: गर्मी तो बहुत है, क्योंकि हम लोग ना बहुत नाजुक हैं कश्मीरी। हमें ठंड भी ज्यादा लगती है, हमें गर्मी भी ज्यादा लगती है। तो चलें, आज प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे आए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। आप सभी को आदाब, सलाम, प्यार, और जो घर पे बैठे बच्चे हैं उन्हें भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो पानी नहीं पीते। बॉटल स्कूल तो ले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पे पानी फेंक के वो पानी अपना सारा खत्म कर

0: देते हैं या फिर उनको गर्मी लगती है तो पानी खुद पे छिड़क लेते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप पानी पिए, क्योंकि जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है। डिहाइड्रेशन जब हो जाती है तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे अहम क्या चीज है?
1: पानी
0: है। और एक और बात, मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे यहाँ हैं और जो घर पे हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप अपने सर पे गीले टॉवल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप घर से, आपको मैं बताऊं मैं क्या करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मैं एक छोटा सा वाइट कलर के अलग अलग टॉवल्स लेके फ्रीजर में रख देती हूँ, फिर अपने सर पे रखती रहती हूँ, ज़रा सर ठंडा रहता है उससे। हाँ, तो आप भी ऐसा करें, आपने अगर जैसे नकाब पहना इसके अंदर अगर आप रख लें या हाथों में कभी रख लें आप ठंडा टॉवल, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पानी पिए, धूप में ना घूमें इधर उधर, और बाहर का जो खाना है वो बिल्कुल ना खाएं। तो सियादत क्या कहेंगी आप इस बारे में?
2: दरअसल जो इंसान का जिस्म होता है, इंसान क्या किसी भी जीवित चीज़ का जो जिस्म होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं
0: जी।
2: अगर हमारी बॉडी का तापमान जो है वो फ्लक्चुएट होगा सिर्फ कुछ ही डिग्री से, तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें सिर्फ लगता है कि हमें गर्मी लग रही है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में हमारे सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो माल फंक्शन कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि जो मेरे साथ प्रोग्राम में है ये मीर सियादत है, और हम ये कोशिश करते हैं कि एक एक बच्चा जो है वो हमारे साथ ट्रेंड होता रहे। हाँ, जैसे कि आप कभी आके हमें सुनाते हैं अपना, जो आप स्क्रिप्ट लाते हैं वो हमें सुनाते हैं, खुद बच्चे भी लिख कर लाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ जो घर से लिख के लाए हैं वो ना पढ़ें, बल्कि मेरे साथ यहाँ पे बैठ के आप एंकरिंग भी सीखें। हाँ, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरे साथ यहाँ पे भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर आप सभी बच्चे बोलते रहेंगे तो फिर ये जगह कौन संभालेगा, तो इसलिए सभी बच्चों को मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आज हमारे एक निजी स्कूल से हमारे यहाँ बच्चे आए हैं तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: जी, मेरा नाम हमना फयाज है।
0: हमना, हमना क्या सुनाएंगी आप?
3: मौजिज़ो मुकर्रमीन, हाज़रीनो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हमना फयाज, सातवीं जमात की तालबा। हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ है कि मौजूदा ज़माना हर एतबार से उरूज व तरक्की का ज़माना तसव्वुर किया जाता है। हर लम्हे में, हर शोबे में नई इजादात और नए नज़ारे दरियाफ्त किए जाते हैं जिनसे इंसानियत मुस्तफीद होती है। उमूमन ये समझा जाता है कि इन सब इजादात के पीछे खालिफन तुलबा का हाथ है, जो किसी हद तक पिछली सदी तक दुरुस्त था, क्योंकि तालिबात को समाज में गलत तसव्वुरात की वजह से हर मैदान में नज़रअंदाज किया जाता था। मगर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अब ये तसव्वुर बहुत हद तक तब्दील हो गया है, क्योंकि अब तालिबात बहुत से मैदानों में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन इससे तालिबात इस खुशफहमी में ना रहे कि हमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बल्कि अभी भी बहुत सारे मैदानों में तालिबात को बहुत चैलेंज दरियास्त हैं, जिनको तालिबात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तालिबात को चाहिए कि हर मैदान में, चाहे सियासत में, निजी मामलात से लेकर मुल्की व बैनुल मामलात में, ज़िरात के मामले में, अदालती निज़ामों में, फौजदारी के निज़ामों में, तालीमी मैदानों में, सनद दूसरे सारे शोबों में अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर इस बात का सबूत देना चाहिए कि तालिबात की ज़माने को कितनी ज़रूरत है। यानी ज़माने को ये महसूस होना चाहिए कि हर शोबे की तरक्की व तमद्दुन तालिबात के बगैर नामुमकिन है। शुक्रिया
0: जी। आप अपना नाम बताएं।
4: जी, मेरा नाम ज़ैनब शबीर है।
0: जी ज़ैनब,
4: अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
0: छोड़ दीजिए।
4: अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बुज़ुर्गों ने बहुत खूब कहा है, जिस कौम के बच्चों का किरदार बुलंद हो उस कौम का मुस्तकबिल कभी तारीक नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम ज़ैनब शबीर है और मैं जमात आठवीं की तालिबे इल्म हूँ। آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کرنے آئی ہوں۔ میرا موضوع ہے اچھے بچے اور اخلاق۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک

0: बच्चे की असल खूबसूरती क्या है, तो मेरा जवाब होगा न उसका लिबास, न उसकी दौलत, न उसके नंबरात, बल्कि उसका इखलाक। क्योंकि इल्म इंसान को काबिल बनाता है, मगर इखलाक इंसान को काबिल एहतराम बनाता है। आइए एक लम्हे के लिए अपने आप को सवाल कीजिए, क्या हम अपने वालिदैन से हमेशा नरम लहजे में बात करते हैं? क्या हम अपने असातिज़ा का दिल से एहतराम करते हैं? क्या हमारी मौजूदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट या परेशानी लाती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीनन हम एक अच्छे बच्चे बनने की राह पर है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो आज भी खुद को बदलने का बेहतरीन दिन है। मेरे अजीज साथियों, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, फूल अपनी खुशबू से और इंसान अपने इखलाक से। एक अच्छा बच्चा वो नहीं है जो सिर्फ किताबों में कामयाब हो, बल्कि वो है जो सच बोले, वादा निभाए, बड़ों का अदब करे, छोटों से मोहब्बत करे, दूसरों की मदद करे और हर हाल में अल्लाह ताला को राजी रखने की कोशिश करे। याद रखिए, अल्फाज चंद लम्हों के लिए असर छोड़ते हैं, लेकिन किरदार पूरी जिंदगी याद रखा जाता है। हम सब बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद या अफसर बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे इखलाक न हो, तो हमारी कामयाबी भी अधूरी रह जाती है। आइए आज हम सब अपने दिल में ये अहद करें कि हम सिर्फ अच्छे तालिब नहीं हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी है। क्योंकि एक बा अखलाक बच्चा ही अपने वालिदैन की इज्जत, अपने असातिज़ा का फख्र और अपने वतन का रोशन मुस्तकबिल बनता है। आखिरकार मैं अपनी गुफ्तगू को एक शेर पर ख़त्म करना चाहूँगी। न दौलत से, न शोहरत से, न ऊंची खानदान से, न दौलत से, न शोहरत से, न ऊंचे खानदान से, इंसान की पहचान होती है फ़क्त अपने किरदार से। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: देखें, बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों को अपने वालदेन का एहतराम करना चाहिए। सिर्फ वालदेन का ही नहीं, जो आपसे बड़े हैं उनका एहतराम करें, जो आपसे छोटे हैं उनसे प्यार करें। क्योंकि अगर आप अपने छोटों से प्यार करेंगे, तभी तो वो दूसरों का एहतराम करना सीखेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा लोग एहतराम करें जो हमसे छोटे हैं, लेकिन ना हम बड़ों को इज्जत दें ना उनका एहतराम करें। और ख़ासकर वालदेन जो हैं और आपके उस्ताद जो हैं, ये ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होते हैं हमारे लिए कि ज़िंदगी में आपका उस्ताद और आपके वालदेन ऐसी शख्सियात हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। नहीं तो ज़िंदगी में शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोस्त, बहन भाई, कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे जाएं। फ़क़त एक उस्ताद है और वालदेन हैं जो हमेशा आपको अपने से आगे देखें। तो नाम अपना बताएं।
2: जी, मेरा नाम मीना महराज है। सबक फिर पढ़, शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का। सबक फिर पढ़, शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या सिर्फ किताबें एक कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है, या सिर्फ खेल ही इंसान को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? मेरा मानना है कि कामयाबी का हकीकी राज ना सिर्फ पढ़ने में है और ना ही सिर्फ खेलने में, बल्कि इन दोनों के हसीन इम्तिजाज में पोशीदा है। मैं मिन्ना हूँ, ओएसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक तालिबा इल्म, और पढ़ने खेलने के मौजू पर अपने ख्यालात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। सामीन मुकर्रम, पढ़ाई और खेल बज़ाहिर दो मुख्तलिफ रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही मंजिल की तरह ले जाते हैं, और वो मंजिल है एक बाकिरदार, बाएतमाद और कामयाब इंसान की तामीर। तालीम इंसान को सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने, सही फ़ैसले करने और अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाने का शऊर भी अता करती है। दूसरी जानब, खेल हमें जिस्मानी ताकत, जहनी सुकून, नज़्म व ज़ब्त, वक़्त की पाबंदी, खुद एतमादी, सब्र, बर्दाश्त और टीम वर्क जैसी बेशुमार खूबियाँ सिखाते हैं। आज का दौर मुकाबले का दौर है, ऐसे में सिर्फ जहनी तौर पर मजबूत होना काफ़ी नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर तवाना होना भी बेहद ज़रूरी है। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद जहन परवान चढ़ता है, और यही इम्तिजाज इंसान को ज़िंदगी की बुलंद मंजिलों तक चाहता है। खेल सिर्फ तफरीक का जरिया नहीं, बल्कि ज़िंदगी की एक बेहतरीन दरसगाह है। मैदानी खेल हमें ये सिखाते हैं कि नाकामी इख्तिताम नहीं, बल्कि दोबारा उठने और पहले से ज़्यादा मेहनत करने का एक मौका होती है। यही सबक हमें हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करने और अपनी मंजिल की तरह बढ़ते रहने का हौसला देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी

0: नई नस्ल इल्म में भी आगे हो और
1: इल्म।
0: सेहत इल्म में भी आगे हो और सेहत किरदार और एतमाद में भी नुमाया हो तो हमें पढ़ाई और खेल दोनों को यकसां अहमियत देनी होगी क्योंकि कलम जहन को रोशन करता है और खेल शख्सियत को निखारते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि तालीम और खेल एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि एक दूसरे के बेहतरीन साथी है। अगर हम अपने हाथ में किताब और अपने दिल में खेल का जज्बा रखें तो कोई ख्वाब हमारी पहुँच से दूर नहीं रह सकता। आइए आज ये अहद करें कि हम पढ़ाई में भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे और खेल के मैदान में भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे क्योंकि कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो सीखना मेहनत करना और कभी हिम्मत ना हारना जानते हैं।
1: जी सियादत, जैसा कि मिन्ना ने कहा कि बहुत ज़रूरी है खेलकूद। खेलकूद सिर्फ बच्चों आपके जिस्म के लिए ही बेहतर नहीं है बल्कि जब आप खेलते हैं, कभी आप इंटर स्कूल खेलते हैं, फिर अपने स्टेट में खेलते हैं, फिर स्टेट से बाहर जाते हैं, तो किस तरह से कल्चर एक्सचेंज होता है आपका, आप किस तरह से शेयरिंग का जज्बा, एक दोस्ती इन्हिसार, ये सब सीखते हैं खेल कूद से।
2: इसके बहुत सारे नमूने हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि अभी जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो लोग जो है डिफरेंट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कोई रोनाल्डो को सपोर्ट करते हैं, कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बाकियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे नतीजे में कभी कभार उनका हाथ इस तरफ चला जाता है कि हम इनकी कंट्री के बारे में जाने, जो हमारे फेवरेट प्लेयर्स हैं, जो हमारे प्लेइंग आइडल्स हैं, इनकी कंट्री के बारे में जाने हम लोग, जैसे पुर्तगाल के बारे में जाने, अर्जेंटीना के बारे में जाने और बाकी चीज़ों के बारे में जाने। तो इस तरीके से इंसान खेल कूद के जरिए और भी कहीं दीगर मालूमात हासिल करता है।
1: बहुत अच्छी बातें आपने कही, तो चले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आनिसा है।
1: जी,
3: अच्छे इखलाक की खुशबू हर दिल को बहा जाती है। अच्छे इखलाक की खुशबू हर दिल को बहा जाती है। नरमी एक गुफ्तार से दुनिया भी मुस्कुरा जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। मेरा नाम आनिसा है। आज का मेरा जो इनवान है वो है अच्छे इखलाक। इंसान की असल पहचान इसके इखलाक और किरदार से होती है। दौलत, हुसन और ताकत आरजी चीज़ें हैं लेकिन अच्छे इखलाक इंसान को माशरे में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम दिलाते हैं। इस्लाम ने भी अच्छे इखलाक को बहुत अहमियत दी है। एक बा इखलाक इंसान न सिर्फ दूसरों के दिल जीत लेता है बल्कि अल्लाह ताला की रजा भी हासिल करता है। अच्छे इखलाक की अहमियत। इखलाक इंसान की शख्सियत को निखारते हैं। सच बोलना, अमानतदारी, सब्र, बर्दाश्त, आजजी, रहमदिली, वालदैन का एहतराम, असातिज़ा की इज्जत और दूसरों की मदद करना अच्छे इखलाक की नुमाया मिसालें हैं। ऐसे लोग माशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देते हैं। इस्लाम में अच्छे इखलाक, इस्लाम ने हुस्न इखलाक को ईमान का एक अहम हिस्सा करार दिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच्चाई, नरमी, दयानतदारी, माफ़ी और शफ़क़त का दर्ज दिया। कुरान करीम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की तारीफ करते हुए फरमाया गया है, और बेशक आप इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। माशरे पर अच्छे इखलाक के असरात। अगर माशरे के अफराद अच्छे इखलाक अपनाए तो नफरत, झगड़े और बदआत्मादी खत्म हो सकती है। अच्छे इखलाक से मोहब्बत, इतिहाद, अमन और तआवुन को फरोग मिलता है। एक बा इखलाक फर्द अपने घर, स्कूल, दफ्तर और पूरे माशरे के लिए बाइस फख्र होता है। बाकी वसलाम।
1: आज जो बच्चे, आप सभी जो एक स्कूल से आए हैं, एक प्राइवेट स्कूल से, आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए एक नगमा।

0: ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा था जी। तो चलिए प्रोग्राम को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, जिस तरह के कभी आप सूरज के बारे में कहते हैं, फिर चांद के बारे में कहते हैं, कई बार तो सितारों की झुरमुट की बात होती है, लेकिन आप सुनते हैं, मेरे सामने बैठे हैं आदिल मंसूर
1: जी। बहुत शुक्रिया।
0: ये इंटरनेशनल मून डे के बारे में क्या कहेंगे
1: जी? बाजी पहले बच्चों से ही पूछते हैं, आप सब में बता सकता है कोई मुझे किस दिन हम
0: इंटरनेशनल मून डे
1: किस दिन सेलिब्रेट किया जाता
2: जी?
1: है 20 जुलाई। बहुत खूब, इन्होंने अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? अनमता ने सही जवाब दिया, वो हम मनाते हैं 20 जुलाई को। कब? इंटरनेशनल मून डे यानी आलमी यौम चांद। क्यों? अब आप सुनिए क्यों मनाते हैं इस दिन, इसकी क्या अहमियत है। आलमी यौम चांद हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन इस तारीखी कामयाबी की याद में मनाया जाता है जब 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। क्या किया था?
3: चांद पर कदम रखा था।
1: हाँ, इस दिन अमरीकी खलाबाज एस्ट्रोनॉट ही बोलते हैं, उसका नाम बता सकता है आप में से कौन?
3: नील आर्मस्ट्रॉन्ग
1: थे जो चढ़े, जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा। वो अमेरिकन सिटीजन थे, एस्ट्रोनॉट थे, उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो चांद पर उतरे थे। और भी कुछ बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आलमी यौम चांद के हवाले से, जो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन इंसान की चांद पर पहली लैंडिंग को याद किया जाता है और ये दिन

0: बनाए जा सकते हैं। अब कुछ और दो तीन पॉइंट्स इसके हवाले से बताना चाहूंगा बच्चों के लिए। एक तो साइंस से दिलचस्पी पैदा करना इसका मकसद है। ये दिन बच्चों को खिला, सैयारों और साइंस के बारे में जानने की तरगीब देता है। नई दरियाफ्तों की हौसला अफजाई बच्चों को सिखाया जाता है कि मेहनत और तहकीक से बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। तालीम की अहमियत भी इससे उजागर होती है, यानी खिलाई तहकीक में तालीम और इल्म का बुनियादी किरदार होता है, इसलिए ये दिन तालीम की अहमियत को भी नुमाया करता है। और एक बात, तजस्सुस और तहकीक, तहकीकी सलाहियतों को बढ़ाता है, यानी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ाता है बच्चों के अंदर। चांद और खिला के बारे में जानकर बच्चों में सवाल पूछने और नई चीजें सीखने का शौक पैदा होता है। आखिर में बैन अल-अक़वामी ताउन का पैगाम भी देता है हमें, यानी खिलाई तहकीक मुख्तलिफ ममालिक के ताउन से आगे बढ़ती है जो अमन और दोस्ती का पैगाम देती है। और 2026 जो है ना, आज 2026 का थीम क्या है, इसका नारा क्या है, यौम आलमी दिन जो चांद का मनाया जाता है, उसका ये है कि इल्म की रोशनी से चांद का सफर मुमकिन है। आप दोहराए मेरे साथ, इल्म की रोशनी से चांद का सफर मुमकिन है। शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
2: जी, मेरा नाम आयदा एजाज है।
1: जी
2: उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है कि उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल सवारना आसान थोड़ी है। उस्ताद इल्म का वो सूरज है जो हमारी जिंदगी से अंधेरों को ख़त्म कर देता है। वालदान हमें इस दुनिया पर लाते हैं, लेकिन उस्ताद हमारी सोच को आसमान की परवाज देता है। आज के दौर में इंटरनेट मालूमत तो दे सकता है, लेकिन इखलाक और तरबियत सिर्फ उस्ताद की नज़र से ही मिलती है। याद रखे, उस्ताद का एहतराम ही तो दरअसल इल्म का एहतराम है। शुक्रिया।
1: आपका क्या नाम है?
3: रियान।
1: रियान है। रियान, आज कुछ गुस्से में लग रहे हैं?
3: नहीं है
1: गुस्से में। आपको जब कोई गुस्सा करता है तो आपको कैसा लगता है?
3: अच्छा
1: लगता है। आप खुश होते हैं जब आपको कोई गुस्सा करता है। कौन गुस्सा करता?
3: कोई भी नहीं करता।
1: कोई भी नहीं करता, फिर आपको अच्छा कैसे लगता है?
3: अच्छा तो प्यार लगता है मुझे।
1: प्यार अच्छा लगता है। हाँ, जो उसको प्यार करता है वो अच्छा लगता है। अच्छा, हम अच्छे लगते हैं आपको? कितने? एक, उससे ज्यादा नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
3: केजी में।
1: केजी में है? अभी आप बहुत छोटे हैं ना। आज क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाएंगे। सुनाइए।
3: मछली का बच्चा अंडे से निकला, अबू ने पकाला तीन का आटा, अम्मी ने पकाया हमसों ने खाया, हम मजा आया बला मजा आया।
1: आपको फिश खाना अच्छा लगता है? मछली खाते हैं आप? उसमें कांटे तो नहीं लगते आपको?
3: नहीं
1: लगते हैं। आपको पसंद है फिश?
3: हाँ, कबाब।
1: मछली के कबाब अच्छे लगते हैं। रियान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है आपका?
4: अरबा शकील।
1: अरबा शकील जी, अरबा सुनाइए, क्या सुनाएंगे आज?
4: सोने कांडा।
1: ठीक है, सुनाइए।
4: एक किसान के पास एक अजीब मुर्गी थी, वो रोजाना सोने का अंडा देती थी। किसान ने सोचा कि मैं एक साथ ही सारे अंडे निकाल दूं। किसान ने मुर्गी का पेट काट दिया, उसमें कोई भी अंडा न था। किसान मायूस होकर रोने लगा।
1: और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है?
5: लालच बुरी बला
1: है। कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका?
6: सबा जहरा।
1: सबा जहरा, कहाँ से आई हैं आप?
6: शादीपुरा।
1: कहाँ पड़ता है शादीपुरा?
6: सुंबल शादीपुरा।
1: अच्छा, सुंबल शादीपुरा है। सुंबल बहुत खूबसूरत जगह है ना, ये मानसबल के आसपास है। तो आप में से किसी ने कभी मानसबल लेक देखी है? किसी बच्चे ने?
5: जी
1: देखी है। बहुत खूबसूरत लेक है ना।
5: जी
1: क्या सुनाएंगी आज?
6: खिदमत खलक।
1: जी
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत खलक, जो शख्स थोड़ी सी भी अकल रखता है, अगर वो सोचे कि जब कोई चीज़ बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकते और बगैर पैदा करने वाले के पैदा नहीं हो सकते, मसलन चांद, सितारे, सूरज, पेड़ पौधे, तो वो समझने पर मजबूर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें बनाने वाला कोई ज़रूर मौजूद है और वही एक खुदा है।
1: कोई जो है निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। निज़ाम हस्ती जो चलाता है वो वाकई वही खुदा है। और मैं आप सभी बच्चों से अक्सर ये कहती हूँ कि बच्चों को खुदा की खुदाबंदी जो है, कुदरत है, हसीन नज़ारे हैं, पेड़ पौधे, इन सब को देखना चाहिए, सैर करनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है?
7: सदीश।
1: सदीश नाम है। पहले आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी।

0: कि आपने क्या सुनाना है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप इतने शरारती क्यों हैं? बेधड़क बोल जाइए, क्यों इतनी शरारते करते हैं?
1: ऐसे ही।
0: नहीं, ऐसे ही कोई वजह तो होगी ना शरारतों की।
1: ऐसे ही।
0: हाँ?
1: ऐसे।
0: क्या है?
1: ऐसे ही।
0: ऐसे ही देखें, जब भी मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो आप आके कभी कभी एक को धक्का, कभी इस बच्चे को परेशान, कभी आप माइक की तार खींचते हैं, कभी आप पेपर रसलिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों है?
1: ऐसे ही।
0: सदी से ऐसा क्यों है?
1: ऐसे ही।
0: ऐसे ही है, ऐसा ही हूँ मैं। क्या सुनाएंगे आप?
1: नज़्म
0: सुनाइए।
1: देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, धमे गर्व है तुझ पर तेरे को सलाम है, तीन रंगों से साजा तिरंगा,
0: तीन रंगों
1: सफेद सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया बलिदान है।
0: क्या नाम है आपका?
2: बाइजा।
0: बाइजा नाम है, बाइजा क्या सुनाएंगी? अच्छा, बाइजा किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: LKG येलो।
0: LKG येलो। अच्छा भाईसा, आप मेरा हाथ पकड़िए, देखिए मेरी सारी एनर्जीज जो है ना वो आपको मिल गई। आप नर्वस हो रही हैं? किस क्लास में आप?
2: LKG येलो।
0: LKG येलो में है। क्या सुनाएंगी आज बताइए तो? आप नर्वस हो रही हैं, आपको शर्म आ रही है? चलें ठीक है, जो आपने लाया है हमारे लिए वो आपको याद नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो भी बच्चा आए वो ऐसा नहीं है वो यहाँ पे आके बोले और चला जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप बोल्ड बने, आप कामयाब हों, ठीक है? तो गाएं फिर हम होंगे कामयाब। एक बार पहले जो हमारे सभी नए बच्चे आए हैं आज के प्रोग्राम में, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सबा जहरा, अभी जब आपने खदमत खल्क के बारे में बोला, सबने सुना तो अच्छी बात है, और खदमत खल्क जो है वो हर इंसान के दिल में उसका जज्बा होना चाहिए। अगली बार जब आप प्रोग्राम में आएं तो हमारे लिए मानस बल झील के बारे में जो जानकारी है वो ज़रूर लाएं। हाँ, ज़रूर जानकारी लाएं, ताकि जो बच्चे मानस बल झील जिन्होंने नहीं देखी है वो भी जान सकें। देखें, हमारे जाहिद आते हैं यहाँ, ये बांडीपुरा से आते हैं, तो इन्होंने बांडीपुरा में जितनी खूबसूरत जगह थी उनके बारे में बताया। मैं सभी बच्चों को ये कहती हूँ कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और आप जब प्रोग्राम में आके एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपनी इंट्रोडक्शन के साथ अपनी जगह का नाम और वहाँ की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए। आते रहिए, जिस तरह ये बाकी बच्चे आते हैं आप भी आते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, आज बस इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए
3: खुदा हाफिज़।

बच्चे अपने मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार, पेशकश समीना शाह। 11 बजने वाले हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज संपैट सभी पेश प्रोग्राम आबशार। समीना छो मारूफ कश्र मौसकी हिंद गुलकार अली मोहम्मद शेख सुबिन बरसी मनाने यवान आज से सिलसिला मन छ असे पन्य आर्काइव लाइब्रेरी मन तिम सुंदर एक इंटरव्यू पन्य सामीन हिंद खतर इंतखाब करमुत आत्मन छ मन से हम कलाम रुदमित मेहराजुद्दीन अहमद वलियो पोजल।

0: یوز پروگرام آبشار سمین عزیز معروف کشیر موسیقی ہند گلوکار علی محمد شیخ صوبن برسی منانے یوان آ سلسلس منز اس پن آرکائیو لائبریری منز تہندی اخ انٹرویو پن سامعین ہند خاطر انتخاب کورمت ات مز اس من ستم کلام رودمت مہراج الدین احمد پیشکش نثار نسیم سنس دم سیلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرس پر دن کے 12 بجنے والے ہیں. اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا.
1: نمسکار, آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں منیش شرما. संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं. बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया. मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है. मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है. इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है. संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई. यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी. किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी. यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी. वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी. इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी. वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी. यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी. किसी भारतीय

0: राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी समीन आप समाप्त कर रहे थे चंद उर्दू गजले ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से खबरें निश्चित होंगी, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। जम्मू कश्मीर में आज अलल सुबह दरमियाना से भारी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। अगरचे कश्मीर वादी में हल्की ता दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई, ताहम जम्मू खित्ते के राजौरी और पुंछ अजला के बाज़ इलाकों में भारी बारिशों की वजह से अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचने के अलावा कई मकामात पर जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के राजौरी और पुंछ में शदीद बारिशों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुंचाने की अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबों के साथ ताजियत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने जिला इंतजामिया के आला हुकाम से बात करके सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज, SDRF और मकामी रजाकारों की इमदादी टीमें जमीनी सतह पर सरगर्म अमल हैं। LG ने कहा कि मुतासर खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो राजौरी और पुंछ अजला के बाज़ इलाकों में भारी बारिशों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो मकामी मेंबरान असम्बली और इंतजामिया के दीगर अफसरों के साथ राबते में है। उन्होंने कहा कि वो आज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतासर इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरीन के लिए राहत रसानी और कीमती जानों का तहफ़ सरकार की अवलीन तरजीह है। खराब मौसमी सूरतहाल के पेश नज़र सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रिवायती रास्तों बालतल और पहलगाम से आर्जी तौर पर मुअत्तल है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा है कि यह फैसला यात्रा के रास्ते पर खराब मौसमी सूरतहाल के तनाजुर में यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। यात्रियों से कहा गया है कि वह जम्मू, उधमपुर और रामबन में अपने मुकर्रा कयामगाहों पर ही रहें और हुकाम की जानिब से मजीद हिदायत का इंतजार करें। वाजह है, सीनीचर की शाम तक 4.25 लाख के यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी हुकाम ने खराब मौसम के बायस आज आर्जी तौर पर मुअत्तल की है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जारी गर्माई ताती

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा

के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिलीज होगा।

0: पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में NCPI को मदु किए जाने पर अलामती वॉक आउट किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमदाद को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन

पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है, अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट

जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन ख्वातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पूंछ के नूनाबादी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पूंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गईं या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासर कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की और राजौरी ज़िले में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासर लोगों की सलामती और तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज़ के दौरान खत्े में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज़ बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनज़र श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि नामुआफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब मया संधू के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज़ शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुँचेंगी। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादरे वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने हेरा फेरी करके बनाई गई दस्तावेजात के मामले पर बढ़ती हुई तशवीश के तनाजुर में सख्त वार्निंग दी है और जांच के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में तलबा और वालदेन के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने बताया है कि जाँच के लिए हाल ही में जो ओएमआर शीट्स दाखिल की गई हैं उनमें से कई फर्जी या एआई की मदद से तैयार की गई हैं। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ियों और ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया।
आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें

मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में NCPI को मधु किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में PV सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियो 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 2:15 हुए हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیا وزت ارہٹ شرح اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھ 3.5 میگا ہرسن پہ سمن ولی بوزو کیشر غزل پیش شمس فقیر صوبن کلام پیش کران غلام نبی شیخ

0: बात करें तो करीब हम 27,000 बी कीपर्स तक हम पहुंच गए हैं अभी के टाइम पे, और करीब 350 से 400 करोड़ तक का जो हमारा तखमीना है उसकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिलखसूस जम्मू और कश्मीर के सूबों में हम काम कर रहे हैं, और इससे अहमियत जो है काफी हद तक वागजार हो जाती है। और उसके आज के दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड उस पर भी हमने काफी हद तक हम कामयाब हो गए हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं उनको हम बी कीपिंग के जो कि एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो उसमें जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो बेल्ट है उसमें हमारा एग्रीकल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और काफी कोशिश हमने की और इस तरह से पिछले 6 साल से हम इस नेशनल बी कीपिंग अकेडमी मिशन को हम चला रहे हैं।
1: जो हमारे किसान भाई हैं या नए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है एजुकेटेड, उनको क्या मुराद क्या फैसिलिटीज आप देते हैं ताकि वो इस जो सनत है इसकी तरफ रागिब हो जाएं?
0: अगर हम नेशनल बी कीपिंग अकेडमी मिशन की बात करें तो ये 3 जिम्मों में हमने इसको डिवाइड किया है, मिनी मिशन 1, मिनी मिशन 2 और मिनी मिशन 3 में, और बिलखसूस नीति आयोग में जो प्लानिंग कमीशन ने जो इसकी जो गाइडलाइंस बनाई है नेशनल बी बोर्ड की जो गाइडलाइंस है कि कैसे हर एक सेक्टर को इसमें हम कवर करें। जैसे अभी हमारी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो नई कॉलोनी नए तौर तरीके नए इक्विपमेंट्स कैसे अपने जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है तो किसी में जो हमारा सपोर्ट है गवर्नमेंट का नेशनल थ्रू नेशनल बी बोर्ड से काफी हद तक इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, किसी में 50% तक है, किसी में 75% तक है, और किसी में करीब 100% तक ही हमारे पास जो 14% है सपोर्ट की वो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इसलिए ध्यान में रखा गया है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो किसी भी तरीके से इसकी तरफ रागिब हो जाए और उनका जो लिविंग जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है जो उनकी फाइनेंशियल हालत है वो दुरुस्त हो जाए और ये आराम से अपना जो रिज़्क है वो कमा सके। और एक तो ये हो गई इंडिविजुअल लेवल पे, एंड सेकेंडली अगर आपको याद ये जो सेक्टर है इसमें ऊपर वाले की कुदरत है ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है, ये जो हमारा अगर हम किसी को कॉलोनी 20 या 50 दे दे तो अगले 1 साल में वो करीब 60 तक 70 तक या 80 कॉलोनी तक का उसका जो है वो बढ़ जाता है, तो इस तरह से वो और लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। नेशनल बी बोर्ड और बी हनी मिशन में ऑनलाइन सिस्टम सारा है, फॉर्म भरने पड़ते हैं इसमें, और करीब इसमें 31 एक्टिविटीज है जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे वो ये प्रोसेसिंग प्लांट का हो, बी कीपिंग इक्विपमेंट्स का हो, किसी को लैब डालनी हो, किसी को कस्टमाइजिंग सेंटर की बात मैं खुसूसन यहाँ पे करूँ कि जिसमें करीब 250 से लेकर 300 तक का हम इनको कॉलोनी दे देते हैं और वो पॉलिनेशन के काम आ जाती है, हायरिंग के काम आ जाती है, तो इसे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन को कैसे इसमें प्रोग्रेस करेगी। अगर किसी दो शख्स ने किसी ग्रुप ने किसी एफपीओ ने किसी ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो भी अनएम्प्लॉयड इसमें आ जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा चांस में बढ़ेंगे।
1: जम्मू कश्मीर में इस वक्त शहद की जो प्रोडक्शन है कितनी है, और हम अगर क्वालिटी की बात करें हमारे जम्मू कश्मीर का जो शहद है क्वालिटी वाइज वेयर वी स्टैंड अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो?
0: ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात तो मेरी नहीं होगी कि हमारा जो सैफरान है दुनिया में पहचाना जाता है, और ये इसलिए पहचाना जाता है कि जो हमारी जो एनवायरमेंट है जो हमारा इको सिस्टम है ये दुनिया के काफी इलाकों से बिल्कुल अलग है, और यहाँ का जो प्रोड्यूस है एंटायरली जो रेस्ट ऑफ इंडिया में बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। अगर मैं आपको एकेशिया की बात करूँ जो हमारा किकर है, हालांकि ममालिक के ये हमारे मुल्की सतह पे बाकी इलाकों में भी एकेशिया पाया जाता है, लेकिन जो हमारा एकेशिया है बिलखसूस इसकी जो नेक्टर क्वालिटी है जो इसकी स्वीटनेस है जो इसके शुगर कॉन्टेंट्स है ये बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की है बनस्बत की जो बाकी दुनिया के या बाकी जो ममालिक के बाकी रियासतों के जो एकेशिया पाया जाता है। तो इस तरह से अगर मैं हनी की बात करूं वी आर कवर्ड विद वाइल्ड फ्लोरा बहुत ज्यादा है, हम तो पहाड़ों से गिरे हुए हैं, हम हमारे पास जो वेजिटेशन है हमारे पास जो फ्लोरा है हम गिरे हुए वैली में, अगर आप हमारे मीडोज की बात करें तो करीब करीब हमारे पास 13 से 14 किस्म की एक्सक्लूसिवली जो हनीज है वो प्रोड्यूस हो जाती है, तो इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी एक तो हो गया टाइप ऑफ हनी ये मैं उस पर बात कर रहा था, करीब 13 से 14 किस्म की अलग अलग हनी जो है हम प्रोड्यूस यहाँ पे करा सकते हैं, एक तो ये हो गया। तो दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि जो हमारी प्रोडक्शन है हमारे जो मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अगर हम कुपवाड़ा की बात करें फिर हम पुलवामा की बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो हमारे पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट थे तो इनमें करीब करीब आज की अगर हम कश्मीर की बात करें करीब 4000 मीट्रिक टन जो हमारा है अभी हमारी जो प्रोडक्शन है हनी की हो रही है, और इसमें करीब हमने करीब 27,000 जो मैंने बी कीपर्स की बात आपसे की बखूबी अपना जो है रिजिक कमा रहे हैं।
1: हमारे जो फार्मर्स

0: हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि मार्केटिंग उनको अच्छी नहीं मिलती है, या अगर हम कस्टमर की बात करें नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो दे नीड अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं, और मार्केटिंग अच्छी प्रोवाइड करने के लिए किसानों के लिए प्रोसेसिंग के लिए क्या
1: ये आपने ये सोहेल साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है इनको तीन दायरों में तीन जुमरों में इसको हमने डिवाइड किया है जो पॉलिसी मेकर से। आफ्टर द प्रोडक्शन जो हमारी ग्रोथ होगी फाइनली एट द एंड ऑफ द आवर बी कीपर्स वांट अ गुड प्राइस, तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन में हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स में जो है सर्टिफिकेशन है, टेस्टिंग फैसिलिटीज है, हमें शुक्र अदा तो रहना चाहिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का कि हमने 2025 और 26 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था करीब 1.5 करोड़ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है नेशनल बी कीपिंग के टाउन से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को हुआ था, और उसमें हमने तीन अच्छी खासी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट लेवल की जो है हमने महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में एस्टेब्लिश की है, जिसमें हमारी ब्रांडिंग, जिसमें हमारी पैकेजिंग, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग, और सबसे बढ़िया बात जो आज के जदीद तर्ज के जो जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो हम वहाँ पे करते हैं ताकि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हनी हो वो हमारे एंड कंज्यूमर तक ये बात पहुंच सके। और मैं आपको एक और बात इस जिम्मे में बताना चाहता हूँ कि महकमा ज़राअत तो बिलखसूस जिंदरा इसी में लगा हुआ है कि एट द एंड ऑफ डे जो हमारी बी के ऊपर से इनको अच्छा खासा पैसा मिले। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जब महकमा ज़राअत की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है विच गिव्स जो BIS स्टैंडर्ड्स हमारे हैं और ये सर्टिफाई करता है द बेस्ट क्वालिटी हनी, ऑब्वियसली जब बेस्ट क्वालिटी हनी जब सर्टिफाई किया गया हो महकमा ज़राअत ने जो जदीद तर्ज की लैब्स हमारे पास है वहाँ पे टेस्टिंग होगी, तो ऑब्वियसली जो एंड यूजर हमारा कंज्यूमर है उसके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी पहुँचता है, और जब ये बेस्ट क्वालिटी उनके पास पहुँचता है तो ऑब्वियसली आपके पास जो पैसे की जो खपत है वो बढ़ जाती है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो अगर आपको याद होगा जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है जो कि GI रजिस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया देती है हमारे मद्रास में, वी हैव अप्लाइड फॉर द GI रजिस्ट्री टैग ऑफ फॉर एकेशिया हनी ऑल्सो एंड वी एक्सपेक्ट और हम करीबी हमारी जो कोशिशें हैं वो पावर हो जाएगी, और अगर हमारा जो एकेशिया हनी है इसका GI टैग मिलने के बाद अगर हमी के आज की डेट में अगर ये 700, 800 या 900 रुपए का केजी है तो GI टैग का जो हमारा टैग मिलने पे ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जो हमारी एकेशिया हनी का जो प्राइस है वो दुगना या और ये त्रिगुणी सतह पर भी वो पहुंच सकता है और हमारे बी कीपर्स को इसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आज की डेट में जब अभी हम बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने आज भी बायर सेलर मीट जो है जो हम वक्तन फावक्तन जो हम बनाते हैं और बाहर से हम लोगों को लाते हैं जो हमारे फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है मुल्की सतह पे हम उनको इनवाइट करते हैं, और हमारे जो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसमें भी काफी हद तक हमारे साथ सपोर्ट में है, यूनिवर्सिटी हमारे साथ सपोर्ट में है ताकि हम इनकी ब्रांडिंग तो हो गई एट द एंड ऑफ डे, एक तो इंटर स्टेट एक्सपोर्ट हमारा हो गया, लोकल कंजप्शन हो गया, और फिर हम एक्सपोर्ट का भी इस पे बहुत हद तक हमने ख्याल रखा है। एपीडा का हमने यहाँ पे महकमा ज़राअत के कॉम्प्लेक्स में इसी वजह से हमने एक ऑफिस उनका यहाँ पे उनको हमने स्पेस दे दी है ताकि जो हमारे बी कीपर्स है उनके जो DGFT की लाइसेंस है, ट्रेड की जो लाइसेंस है, एपीडा का जो रूल रेगुलेशन है, इनको कैसे हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के दायरे में लाई। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनिक हनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा जो हमारी ग्रेज वैली है बाय डिफॉल्ट हमारी ऑर्गेनिक है, वहां से जितना भी हमारा हनी आता है बाय डिफॉल्ट उसको भी हमने चाहे वो अंडर NPOP हो या PGS सिस्टम में हो हम इसको बैंड करेंगे, और माशाल्लाह जो हमारे बीकीपर्स है उनको बहुत बहुत हद तक इसमें फायदा है।
0: तो इंटरनेशनलाइज करने के लिए इस ट्रेड के लिए कुछ कामशे की जा रही है अगर
1: मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि हमने एपीडा जो हमारी जो प्रमोशन है ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें जो भी हमारा बी कीपर जो एक्सपोर्ट कराना चाहता है आफ्टर द टेस्टिंग फैसिलिटीज ओवर विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसेंटली एस्टेब्लिश जो लेबोरेटरीज है, फिर DGFT का जो लाइसेंस है, ISU कोड्स है, वो हम यहीं पे उनको फैसिलिटेट करते हैं। दे कैन कम डाउन हियर, काफी बी कीपर्स ने हमसे वो ISU कोड लिया हुआ है और जो अभी एक्सपोर्ट के दायरे में अपने ट्रेड को लाना चाहते हैं।
0: तो ये बताइए एक आम कंज्यूमर के लिए, क्योंकि आपने कहा कि 10-12 से ज्यादा अभी जो टाइप्स ऑफ हनी जो है दे आर अवेलेबल इन कश्मीर, तो वो कैसे सर्टिफाई कर सकता है, हाउ कैन ही चेक द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ द हनी व्हिच ही इज परचेजिंग और ही इज गेटिंग फ्रॉम द मार्केट।
1: सोहेल साहब, मैंने अभी आपसे कहा कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के टाउन से, क्योंकि अब टेस्टिंग

0: फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हमें इस साल, मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर लेवल पे भी अगर हमारा जो एनएमआर फैसिलिटी है और ये जो हमारी कोशिशें हैं और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है हमारी यूटी की, वो आर वेरी मच, वो कहते हैं कि अटेंटिव टुवर्ड्स दिस, वो यही आइडेंटिफाई कर दिया इसको थ्रस्ट एरिया हनी को हमारे, ये दो लेबोरेटरीज हमारी जो है, और जब डिपार्टमेंट का टैग इस पे लग जाता है एंड वी वर्क विद द बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, फसाई का स्टैंडर्ड्स हो, एगमार का स्टैंडर्ड्स हो, ये हम सर्टिफाई करते हैं और जो लोगो उनका आ जाता है, इट्स ए सेल्फ इंडिकेशन कि जब मैं कोई कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट पे किसी स्टोर पे, किसी मल्टीटी स्टोर पे, आम स्टोर पे, वेन ही विल सी द टैग ऑफ दिस, हाँ इट इज बीन ड्यूली सर्टिफाइड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर दीज टेस्टिंग फैसिलिटीज, सो ही हैज नो डाउट अबाउट इट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द हनी।
1: एज अ कंज्यूमर मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, मतलब चेक फॉर द कलर और थिकनेस और व्हाटएवर।
0: कलर के बारे में मैंने अभी आपसे ये कहा, तारीफ किया था मैंने कि 13-14 तरीके के जो हमारे एकेशिया है, जब तक कंज्यूमर भी हमारे पास एरियर नहीं हो कि मुझे किस टाइप का हनी चाहिए, उसके टेस्ट पे भी काफी डिपेंड करता है। जैसे एकेशिया सबको पता है कि हमारा एकेशिया है थोड़ा सा पीला होता है, अगर दे नो इट वेरी वेल, एप्पल का हमारा जो शुपियन और हमारा कोपारा और हमारा जो हमारा गांधरबल का एरिया है जहाँ से एप्पल का हनी हमारे पास आ जाता है, लेवेंडर को हमने काफी ज्यादा हमने प्रोत्साहन किया पिछले 2-3 साल में, लेवेंडर के ब्लेंड्स हमारे हनी में आ जाते हैं, मल्टी फ्लोरा हमारा आ जाता है, डिफरेंट जो हमारे वाइल्ड फ्लोरा है हमारे, हम गिरे हुए हैं जंगलों से, हम गिरे हुए हैं फ्लोरा से, सो इट्स एन इजिली आइडेंटिफाइएबल बॉटल, उस पर लिखा होता है सारा द फ्लावर कलर, उस पर लिखा होता है सारा, इट्स बीन टैग्ड, इट्स बीन आइडेंटिफाइड, इट्स बीन प्रिंटेड ऑन द बॉटल व्हाट्स द सोर्स। और अगर हमने इस साल जो हमारा जो रेजुअल एंड स्लैब आ गया, वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेसेबिलिटी फैक्टर ऑफ द हनी, ये हनी किस एपायरी से आया है, हु इज द एपायरिस्ट, ये किस एरिया का है, सो दैट विल बी एक स्कैन कोड करेगा, एक बार कोड उस पर होगा, एक क्यूआर कोड उस पर होगा, ही विल जस्ट स्कैन इट एंड ही विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लाइन, लिंकेज आएगी, ट्रेसिबिलिटी आ जाएगी, ये कोपारा का हनी है, ये शुपियान का हनी है, ये गांधरबल हनी है, या ये वाइल्ड फ्लोरा हमारा हनी है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो इंशाल्लाह उम्मीद हम ये करते हैं कि गवर्नमेंट के तौन से और मरकजी वजारत के तौन से हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और हमारे बी कीपर्स को जो हमारा विरासती है पिछले हम 300 साल से इसके साथ है, ये हमारे बी कीपर्स है कि जिन्होंने हमारे इस ट्रेड को कामयाब रखा और जिंदा रखा है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ट्रेड को अपने जो लॉजिकल एंड है वहां तक हम इसको पहुंचा।
1: तो अब से 4-5 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री को कहां पे, एपिकल्चर इंडस्ट्री को कहां पे देखते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर आपको जो दिखा है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के।
0: शायद मैं आपको ये बताऊं और ये सारी दुनिया के इल्म है कि आइंस्टीन ने कहा था इफ द बीज आर नॉट इन द वर्ल्ड, शायद हमें 3 या 4 साल में जो है हमारी जो कुरे अर्ज की जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंस है बी कीपिंग की, ये टिल डूम से ये खत्म नहीं हो जाएगी। बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर फूड चेन, हमारा पॉलिनेशन में अगर नहीं होगा, सो दिस इज अवर एपेक्स एंड एपिटोम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इसको जितना हम ऊपर इसको प्रोग्रेशन दे देंगे ये उतना फायदा हमको दे देगी, एंड वी नो इट, इट इज नॉट द गोल्डन गीज कि वो बस एक बार अंडे दे दे, लेकिन ये एक ऐसा सुनहरा हरूफ है, एक ऐसी सुनहरी जो हमारी इंडस्ट्री है जो आइंदा अगर मैं 10 साल की बात करूं, शायद हमारे GDP को जो अभी हमारा 13-14% हम एग्रीकल्चर सेक्टर से दे रहे हैं, उसका करीब 4-5% का जो है सिर्फ हमारे बी कीपिंग से आ जाएगा। आई थिंक दिस इज एनफ टू कंक्लूड दैट की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
1: तो अगर
0: माय असेसमेंट अबाउट द इंडस्ट्री एंड अबाउट दिस सेकेंडरी एग्रीकल्चर,
1: तो मैंने सुना है कि बाहर के मुल्कों में एक तो हनी मिलता है उनको अगर वो बी कीपिंग के साथ करते हैं, सेकेंडली दे अर्न फ्रॉम पॉलिनेशन एज वेल, कि वो किराए पे
0: वही सोहेल साहब ने आपसे कह रहा था कि मैंने आपसे बता दिया कि अगर हनी भी नहीं होगी तो हमारा कोई क्रॉप नहीं बनेगा, वही सेब कश्मीर में उगेगा नहीं अगर बी कीपिंग नहीं होगी। ये यू नो दैट वी आर फेसिंग, एक और चीज का मैं यहाँ पे आपसे जिक्र करूँ, जो चैलेंजेस हमारे हैं एपिकल्चर इंडस्ट्रीज को, वी आर ऑल्सो काउंटरिंग देम, टैकलिंग देम, कि आपको पता है कि कंटेमिनेशन आता है, एडल्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ डे मेरी बी कीपर से भी गुजारिश रहेगी कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, डिपार्टमेंट इज एट देयर बैक ऑलवेज देयर, किसी भी हद तक अगर हमें जाना पड़े इस इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने के लिए, वी आर ऑलवेज देयर इन द फोर फ्रंट, और जो मरकजी सरकार की जो स्कीम में है फिर मैं बी कीपर से और अपने अनएम्प्लॉयड यूथ को बताना चाहूंगा कि वो आए, डिपार्टमेंट इज ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास डीसीटीसीज है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, अवेयरनेस

0: की जरूरत पड़ेगी। और लाल मंडी में हमने सेंट्रली जो हमने बी कीपिंग का जो हमने एक ट्रेनिंग यहाँ पे सेंटर बनाया है विच इज अवर डिमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर, वो आ सकते हैं एंड दे कैन कम इनटू द स्टेट।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब नई मंजिले प्रोग्राम के साथ बात करने के लिए।
2: सामीन मुल्क में लोगों को आला मयार की तिबी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए मरकजी और यूटी सरकारों की तरफ से इख्तिराई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। इन स्कीमों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरी फहरिस्त है। पेश है इस स्कीम के हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद मुबशर फाई की ये खास रिपोर्ट।
3: सामीन मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ साथ तिबी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल हो रहा है और रफ्ता रफ्ता अब आला मयार की तिबी सहूलियात दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों के लोगों तक पहुंच पा रही हैं। मरकजी सरकार ने पिछले चंद बरसों के दौरान सेहत के शोबे को तरजीहात में शामिल किया है और अब इस सेक्टर पर जर कसीर सर्फ की जा रही है। मुल्क में लोगों तक बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए रोज अफजों नित नई स्कीमें वजूद में लाई जा रही हैं, जिनसे आम लोग खासतौर से गरीब और मुतवस्त तबके इस्तेफादा कर रहे हैं और उन्हें अब बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात के अलावा जराहियों के लिए न तो बड़े बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है और न ही उन्हें इसके लिए कसीर रकूमात सर्फ करना पड़ती हैं। मरकजी सरकार की फायदा बख्श स्कीमों में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को करीदी अहमियत हासिल है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी बदौलत तमाम शहरियों को सेकेंडरी और टेरिशरी केयर अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का सालाना फी कुंबा मुफ्त कैशलेस इंश्योरेंस कवर दस्तियाब रहता है। इस रकम से मरीज कैशलेस तरीके पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के तहत 15 दिनों तक अद्वियात का साजो सामान और इलाज मुआलजे का सामान बगैर किसी अदायगी के खरीद सकते हैं और स्कीम से फायदा हासिल करने के लिए उम्र जिंस या फैमिली साइज की कोई कैद नहीं है। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ ये स्कीम जम्मू कश्मीर में भी शद्दोमत से अमलाई जा रही है। आम लोग वजीर अजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम की काफी सताइश करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के मरीजों को 1393 मेडिकल प्रोसीजर्स की सहूलियात हासिल है। ये स्कीम सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सरकार की तरफ से एमपैनल शुदा बड़े बड़े निजी अस्पतालों में भी अमलाई जा रही है। इस स्कीम की बदौलत सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का लोड काफी हद तक कम हो गया है और आम लोगों को बड़े बड़े निजी अस्पतालों तक रसाई भी मिल रही है। स्कीम के तहत हर शहरी को इंदराज करने के बाद एक कार्ड मिलता है जिसे गोल्डन कार्ड कहा जाता है। अस्पताल में दाखिल होने के बाद मरीज इसी कार्ड के तहत मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलियात हासिल कर सकता है। कोई भी शहरी अपने आधार कार्ड की बुनियाद पर यह गोल्डन कार्ड हासिल कर सकता है। कार्ड हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर या फिर एमपैनल शुदा अस्पतालों के साथ राबिता कायम किया जा सकता है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से अमलाई जा रही इस सूदमंद स्कीम से इस वक्त लगभग मुल्क के 60 करोड़ अवाम और 70 बरस की उम्र से ज्यादा के तमाम शहरी इस्तेफादा कर रहे हैं। ताहम स्कीम की मौसर अमल आवरी में बाज़वक़ात दुश्वारियां पेश आती हैं जिन्हें दूर करने के लिए इंतजामी सतह पर इकदामात करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि तमाम बीमारियों के मरीजों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाए ताकि लोग बिलखसूस गरीब और मुतवस्त तबका इलाज मुआलजे की मियारी सहूलियात से महरूम न रहे। प्रोग्राम नई मंजिले के लिए श्रीनगर से मैं मुबशर रुफाई।
2: सामिन फिशरी सेक्टर जम्मू कश्मीर में रफ्तार रफ्तार तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। यूटी के मुख्तलिफ जिलों में लगातार मछलियों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। चूंकि वादी के बेशतर इलाकों में ताजा और ठंडे पानी के जखायर बहुतात से पाए जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में गाँव देहात में कसीर तादाद में जदीद तरज के फिश फार्म कायम किए जा रहे हैं जिनसे खासी तादाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल हो रहा है। काबिल फख्र बात यह है कि अब आला तालीम याफ्ता नौजवान माही परवरी को बतौर पेशा इख्तियार करने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। महकमा फिशरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानिब रागिब करने के लिए कई स्कीम और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अमला रहा है जिनके तहत माही परवरों को आला मयार का मछली बीज और फार्म कायम करने के लिए तरबियत के साथ साथ दीगर मुराद भी फराहम करता है। जिनके तहत महकमा माही परवरों को आला मयार का मछली बीज और फार्म कायम करने के लिए तरबियत के साथ साथ दीगर मुराद भी फराहम करता है। शुपया में महकमे फिशरीज के फलाही इकदाम के हवाले से हमारे शुपया के नुमाइंदे जानिसार अहमद ने जिले के असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज फयाज अहमद के साथ बात की। आइए समाप्त करें।
4: फयाज साहब, पहले आप हमें इस डिपार्टमेंट का आप तारुफ दीजिए।
5: जैसा आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट शुपियन के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। यहाँ पे ओवरऑल फिशरीज के 2 टाइप्स के कल्चर होते हैं, एक कल्चर फिशरीज होता है, एक और कैप्चर फिशरीज होता है। कल्चर फिशरीज में हमारा जो जितने भी ट्राउट कल्चर

कार्प कल्चर मतलब जो गवर्नमेंट फार्म्स सारा आता है, और दूसरा जो कैप्चर फिशरी में आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज। मैं ज़्यादा इसमें कल्चर फिशरीज के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है 2007 से एस्टेब्लिश हुआ है। इससे पहले ये पुलवामा का पार्ट था जो लुक आफ्टर करता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द पुलवामा ही इसको लुक आफ्टर करता था। और 2007 के बाद जब नए डिस्ट्रिक्ट बने उसमें एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुपियन का भी है, मतलब शुपियन भी डिस्ट्रिक्ट बना है। तो उसके बाद यहाँ से इंडिपेंडेंटली काम होने लगा। तो आज तक यहाँ पे जो हमारे अंडर द डिफरेंट स्कीम जैसे RKOI था, ब्लू रिवॉल्यूशन था, नाउ HADP है, PMMSY है, इसमें अभी तक हमारे जो है

0: 2007 के बाद जब नए डिस्ट्रिक्ट बने उसमें एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुपियन का भी है, मतलब शुपियन भी डिस्ट्रिक्ट बना है। तो उसके बाद यहाँ से इंडिपेंडेंटली काम होने लगा। तो आज तक यहाँ पे जो हमारे अंडर द डिफरेंट स्कीम जैसे RKY था, ब्लू रिवॉल्यूशन था, नाउ HADP है, PMMSY है, इसमें अभी तक हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर में 82 यूनिट्स एस्टेब्लिश, ट्राउट यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त एक लाइव फिश वेंडिंग सेंटर है जो लाइव फिश ही बेचता है, और उसके अलावा पिछले साल हमने 2 फिश कयास एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो अंडर गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे हमारे 3 फार्म है, एक ट्रोट रियरिंग यूनिट अलियालपुरा है, और दूसरा इसमें ट्रोट रियरिंग यूनिट बलपोरा है, और दूसरा तीसरा जो है हमारा ट्रोट रियरिंग यूनिट जैनपोरा है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट कल्चर होता है, और उसके बाद जो हम इसको ग्रो करते हैं अप टू टेबल साइज फिश, एंड देन इसको हम एज पर द डिमांड जो है वो सेल आउट मार्केटिंग करते हैं टू अर्न रेवेन्यू फॉर द डिपार्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर में बताना चाहूँगा हमारे पास इस वक्त 2 स्कीमें चल रही है, एक HADP जो UT स्पेसिफिक स्कीम है, HADP जो है वो UT स्पेसिफिक स्कीम है, और दूसरा PMMSY ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। HADP स्कीम है, इसमें कंपोनेंट सेम है दोनों में ऑलमोस्ट, लेकिन जो HADP है UT स्पेसिफिक स्कीम है इसमें हमारा जो इंसेंटिव है वो 50-50 बेस पे है, यानी 50% डिपार्टमेंट शेयर मिलेगा और 50% जो है जो सेलेक्टेड बेनिफिशरीज होगा जो किसी भी यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहेगा उस पर 50% मिलेगा, और ST SC और वेमेन के जो है उनको 60% सब्सिडी रिलीज होगी। इसी तरह जो PMMSY का जो कंपोनेंट है उसमें भी मैं आगे बात करूंगा डिफरेंट कंपोनेंट्स की, उसमें जो है 40% फॉर जनरल कैटेगरी है सब्सिडी, और इसमें जो ST SC और वेमेन की है 60% सब्सिडी है। तो अब कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे पहले यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट शुपियन के बारे में, यहाँ पे लोग ज्यादा अडॉप्ट जो है वो ट्राउट कल्चर, ट्रोट यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी तक हमारे 82 यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन ट्रोट यूनिट्स में जो हमारा एज पर जो, क्योंकि यहाँ पे अडॉप्टेशन ज्यादा जो ट्रोट यूनिट की है, इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें जो हमारा यूनिट कास्ट है वो 5.50 लाख है, उसके 2 पार्ट्स है, 3 लाख जो कंपोनेंट है वो फॉर कंस्ट्रक्शन है। तो सब्सिडी पैटर्न वही है जो एज पर द नॉर्म्स, 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर ST SC एंड वुमेन। और जो रिमेनिंग जो है 2.50 लाख है उसमें हम फर्स्ट ईयर इनपुट्स देते हैं, इसमें फीड, सीड एंड बेसिक इक्विपमेंट जो उनको पहले साल में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है देते हैं 2.5 लाख का, उसमें इनपुट्स होते हैं। इसके अलावा जो स्कीमें हैं इसमें हमारा जो है रास है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, स्मॉल रास, मीडियम रास और लार्ज रास। उसके अलावा हमने यहाँ पे एज एक फीड मिल भी एस्टेब्लिश की है अंडर PMMSY, वो भी बलपोरा में, वाठू में वो अभी फंक्शनल है, और जो यहाँ के कुछ यूनिट होल्डर है उससे लेते हैं, और उसके भी अपने जो है 4-5 यूनिट है वो अपनी फीड खुद ही तैयार करके तो अपना रोजगार उसमें कमा रहा है। इसके अलावा जो है हमारे पास बायोफ्लाक है, नई इंटरवेंशन है,
1: बायोफ्लाक क्या है?
0: बायोफ्लाक जो है इसमें टैंक बनते हैं, 7.5 लाख का यूनिट है, तो उसमें भी सब्सिडी पैटर्न वही है 40 एंड 60। रास में भी है, रास में भी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें जैसा कि आप जो रेसवे में देखते हैं कि पानी कंटिन्यूस फ्लो चाहे, लेकिन रास में हमारा होता है कि उसमें जो है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करनी पड़ती है थ्रू ऑक्सीजन थ्रू इक्विपमेंट्स एंड टेम्परेचर जो है बाय एडवांस इक्विपमेंट्स, उसमें हमें इतना पानी नहीं चाहिए होता, जरूरत नहीं होता है, तो इसमें रास है। उसके अलावा हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल फीड मिल्स है, बड़ी वाली फीड मिल्स है, मतलब बहुत सारे जो है इसमें हमारे कंपोनेंट है।
1: प्रोडक्शन क्या है जो आपके अपने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, क्या प्रोडक्शन रेट?
0: तो हमारे पिछले साल जो है 2025-26 की मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा, 579 क्विंटल जो है प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन हुई है, इसी तरह 50 क्विंटल जो है गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन, इन टोटल 579 क्विंटल अराउंड जो है प्रोडक्शन जो है इन टोटल जो है 61.24 मेट्रिक टन हमारी जो है प्रोडक्शन ट्राउट की है पिछले साल की 25-26 की। पिछले साल जो 10 यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं हमारे HADP में, अभी तक हमारे 32 यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं, 22 यूनिट जो है 2023-24 एंड 24-25 में एस्टेब्लिश है, उनका अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा है, और इनशाला जो 2025-26 का प्रोडक्शन है वो इस साल आएगा, क्योंकि हमने वो पिछले साल स्टॉक किए हुए हैं, तो उनको रेयरिंग टाइम अराउंड 1 ईयर लगता है, तो इस साल इसकी प्रोडक्शन जाएगी।
2: اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تحریر و آواز سہیل بٹ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ مختار احمد شاہ، ترتیب و تہذیب

जय हिंद। फौज भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूँ आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपके नजर फिल्म फिर जन्म लेंगे हमसे टाइटल गीत किशोर दा और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में, गौहर कानपुरी के बोल, बप्पी लहरी का संगीत।

घर घर की आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो की आवाज़ मीडियो में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सूफी फातिमा और कंट्रोल रूम में इस वक्त ड्यूटी पर तैनात है मंजूर नजार साहब। अगला गीत आपकी नज़र फिल्म बाजी से

जीने नहीं दूंगा। अब पेश है इस फिल्म से ये गीत शबीर कुमार और लता मंगेशकर के खूबसूरत आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, आपने फिल्म कलाकार से गीत सुना। सुरेश वाडकर की आवाज में नगुनिगार थे हिंदी वर मोस की तरतीब दी थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत हमने चुना है फिल्म लवर्स से, श्रवण की देवी लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

जी दूसरे प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म सनम रे से टाइटल गीत अरिजीत सिंह और अनुराधा बावला की आवाजें गीत संगीत मिथुन का

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम है 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नश्र होंगी।
1: सामईन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल बचाव वजीर राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनक्कद। अपोजिशन पार्टियों को इजलास खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए ताउन की अपील, किरण रिजिजू। राजौरी और पुंछ अजला में शदीद बारिशों के बाद चट्टाने खिसकने और अचानक तुगयानी आने के नतीजे में 4 अफराद अजान, मुतादिद लापता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर अला उमर अब्दुल्ला का राजौरी और पुंछ में हुई अमवात पर इजहार अफसोस। मरकज का यूटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की बारामूला में महायाजना धर्मा सम्मेलन में शिरकत। और अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनक्कद किया गया। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ईवान के लीडर जेपी नड्डा ने भी इस इजलास में शिरकत की। किरण रिजिजू ने नामा निगारों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे।
2: मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: इधर मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोन्त्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI तस्लीमशुदा पार्लियामानी जमात नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान ने मीटिंग में शिरकत की। वाज़ह रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास में पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में कायद ऐवान जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। राजौरी और पुंछ जिले में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम अज कम 4 अफराद की मौत हुई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। खबरों के मुताबिक ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासर सुरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नौन आबाद गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शोहर और 3 बच्चों को बचा लिया गया जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मुकामी इंतजामिया, पुलिस, NDRFRO दीगर बचाव टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। पुलिस ने आवाम को दरियाओं के किनारे और नशीबी इलाकों से फौरी तौर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत दी है।
3: श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए हैं। पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं।

0: सदर जमहूरिया मालदोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर का ये मालदोवा का पहला दौरा है। सदर जमहूरिया मंगल के रोज नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगी और आखिरी मरहले में जुमेरात को वो रोमानिया पहुंचेंगी। CBSE ने आज 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान 2026 के नतीजे का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे डिजिट लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर result.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अब नश्र होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

अस्थि आवाज तुसा तोड़ी पहुंच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हादसा का मेजबान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते ताजीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत होसो और हमेशा की तरह अपने पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कोर नाल सुन रहे होसो। सामीन अज अतारा की महफिल है, हालात वाकात गीत संगीत ते महफिल गिन के असी तुसा दी खिदमत विच हाजिर हां। समय कल शामी थी, मौसम सुन रुख बदलिया दा और तुसे नाल पहला एक खबर साझी करदे जुलां। जम्मू कश्मीर दे सरहदी जिला पुंछ और राजौरी बिच गुजश्ता राती आने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे बिच आने वाले अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकात बिच घट ही घट 10 अफराद जां बहक जबकि मुतद्दद अफराद लापता हो गए। दिन सरकारी जराए के मुताबिक सब से ज्यादा तबाही पुंछ जिले के सरनकोट इलाके बिच हुई है जिथे सैलाबी रेले और मलबे सुन रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट बिच गिनया है। जराए के मुताबिक सरनकोट थी 9 वाद की इतला मिली है जिन्होंने एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं। रेस्क्यू कार्रवाई भी पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सिविल इंतजामी और मकामी रजाकार शरीक हैं जिड़े खराब मौसम और दुशवार गुजार इलाकों के बावजूद अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। समय शदीद बारिशों के बायस पुंछ और मुहल्का जिला राजौरी बिच सड़क पुलों और रिहायशी मकाना गड्डिया और दीगर अवामी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हवेली तहसील भी कार्तिक सत मकाना को नुकसान पहुंचाया है जबकि मंडी और दीगर इलाकों में भी अमला को नुकसान की इतला मौसूल हो गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई रबता सड़क बंद हो गई जिस आमद रफत भी मुतासर हुई है। जिला इंतजामिया सुनंदा की टीमों को मुतरक करद मुतासरा खानदानों को महफूज जगह तक मुंतकिल किया है। हुकाम सुन दरिया नदी नाले और लैंड स्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों के नेड़े रहने वाले लोगों को घर भी रहने गैर जरूरी सफर थी ज करने और तेज बहाले आबी जहां तक दूर रहने की हदायत दी गई है। दरियासना मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सुन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाल टेलीफोन पर रबता करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा किया। अमित शाह सुन मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू राहत और बाज आबादकारी वास्ते मरकज की जानब ने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई और आख्या कि मुतासरीन के तहफ़ और सलामती को यकीनी बनाने वास्ते सारे जरूरी इकदाम किए। इधर महकमे मौसमियात श्रीनगर सुनाईदा 5 रोज तो जम्मू कश्मीर बिच वसी पैमाने पर बारिशों की पेशनगोई करते हुए खबरदार किया है कि 23 जुलाई तोड़ी जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में शदीद थी इंतहाई शदीद बारिश गरज चमक आंधी और तेज हवा का इम्कान है जिसके बायस फ्लैश फ्लड लैंड स्लाइडिंग मिट्टी दे लानी आन पत्थर खिसकने और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के खतरा बढ़ सकते हैं। समय जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले भी मुसलसल और शदीद बारिशों के बायस दरिया चनाब और मुतद्दद नदी नाले भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है जिसके पेश नज़र इंतजामिया सुन जम्मू सूबे में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरिया आबी जखीरे के नजदीक जुलन थी गुरेज करने की हदायत दी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह 8:30 गुजश्ता 24 घंटे के दौरान जिला रियासी भी सबसे ज्यादा 106.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि राजौरी 103 मिलीमीटर उधमपुर 101

कटरा बिच 85 मिलीमीटर, पुंछ बिच 77 मिलीमीटर, बटोत बिच 57.2 मिलीमीटर और रामबन बिच 9 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड हुई है। दरियासना वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में भी जिला इंतजामिया सुन महकमा मौसमियात की जानब थी 3 जुलाई तोड़ी दरमियानी थी शदीद बारिशों की पेशनगोई के बाद मौसमी एडवाइजरी जारी की गई है। कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सुन अवाम और सियाह को हदायत दी गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज कर, लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले पहाड़ी इलाकों का रुख न कर और दरिया नदी नाले से दूर रहन के पानी की सतह अचानक बढ़ सकती है। जिला अनंतनाग की इंतजामिया सुन फ्लैश फ्लड मट्टी दे लानी आन पत्थर खिसण के नदी नालियां विच दुगियानी दे खतरा थे खबरदार करदे होए शहरियों और सियाह को ट्रैकिंग, कैंपिंग और दीगर बैरूनी सरगर्मियां थी गुरेज करने का मशवरा दिता है। बांडीपुरा और बालामूला इंतजामिया सुन भी अवाम से अपील की है कि वह सरकारी हदायत पर अमल कर, सैलाबजदा या हसास इलाकों थी दूर रहन और मौसमी सूरत हाल पर नजर रखन। हुकाम के मुताबिक सालिया जिले में हंगामी रद्द अमल के निजाम को फाल कर किया गया है जबकि अवाम से आख्या गया है कि अफवाह पर कान न तारन, पुरसकून रहन और किसी भी नाखुशगवार वाकये की सूरत में फौरी तौर पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम नाल राबता कायम करन। सामिन नाल तुसां को यह दसते जुला के खराब मौसमी हालात और शदीद बारिश की पेशनगोई के पिछकार श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगाम और बालतल दोहरा थे मुअत्तल किया गया है। सरकारी जराए सुन दस्या कि कट ऑफ वेले के बाद जिला रामबन के मुख्तलिफ जाएं 1000 से ज्यादा यात्री और 200 से ज्यादा सियाह रुके दिन, इन्होंने 914 यात्रियों को चंद्रकोट यात्रा निवास भेज ठहराया गया है जबकि बाकी यात्रियों के क्याम का इंतजाम बनहाल भी किया गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर इंतजामिया सुन खराब मौसम के बायस आज थी श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगाम और बालतल दोहरा थे अगले अहकाम तोड़ी मुअत्तल रखने का फैसला किया है। हुकाम सुन यात्रियों और दीगर मुसाफरों की हिफाजत के पेश नजर जम्मू उधमपुर और रामबन थे अगे ट्रैफिक के नकल हरकत पर भी आरजी पाबंदी आयद की गई है। हुकाम का आखना है कि मौसम बेहतर होने और जम्मू और श्रीनगर कौमी शाहरा को महफूज करार दिते जुलने के बाद ही कश्मीर की जानब ट्रैफिक बहाल की गई थी। इंतजामिया सुन यात्रियों की अपील की गई है कि वह मुकर्रा यात्री कैंपा बच ही क्याम कर और यात्रा दोबारा शुरू होने तक इंतजामिया की जानब थी जारी हदायत पर सख्ती नाल अमर करन। समी नाओ पहला प्रोग्राम दे शुरू भी तुसां वास्ते एक गीत पेश करा, आवाज है काबिल बुखारी दी, आओ सुनते हैं।

सैयद काबिल बुखारी गीत पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया। उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर दी श्रीनगर बिच मुनक्कदा चनार बुक फेस्टिवल भी शिरकत। जम्मू कश्मीर को इलम और तखलीकी सलाहियतां दा कौमी मरकज बनाना असांदा मकसद। तहरीर दी ताकत थी पद के कोई ताकत नहीं। नौजवान आर्मा घाटी काटी किताब जरूर पढ़न। मनोज सिन्हा। सनम गर्मी दी शिद्दत और खराब मौसम दी पेशनगोई दे बचकार हुकूमत सुन कश्मीर और जम्मू सूबे दे सरमाई जून दे सारे सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों वास्ते जारी गर्मियां दी छुट्टियां बिच 22 जुलाई तोड़ी तौसी कीती दी है। ऐलान वजीर तालीम सकीना सुन एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिस पर आख्या गया कि फैसला मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र किया गया है। उन्होंने सुन एक्स पर लिखा मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाई जून के तहत इलाकों में तमाम सरकारी और तस्लीमशुदा निजी स्कूलों वास्ते गर्मियों की छुट्टियां 22 जुलाई तोड़ी बधाने का फैसला किया गया है। वजीर आजम सुन मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखा के रवाना किया। 12 साल बच हिंदुस्तानी रेलवे भी बड़ी तब्दीलियां मगरबी एशिया जब बुहरान 2014 थी पहला आया होंदा ता रेल खिदमात ठप हुई होवन। वजीर आजम हुकूमत जम्मू कश्मीर दा साइबर जराइम थे निमटने वास्ते अहम इकदाम साइबर क्राइम कोआर्डीनेशन सेंटर दे क्याम को मंजूरी। जेके फोर सी खुद मुख्तार इदारे दे तौर पर काम कर सेगा। DGP निगरानी कर सनगे। समय तुसा को नाले भी दस्ते जुलां कि श्रीनगर बिच कल मौसम दा सब थी गर्म तरीन दिन दिखा गया जद ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस तोड़ी बढ़ गया। जम्मू बिच कश्मीर थी कम 35 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत भी तेजी थी इजाफा इस मौसम गर्मा भी श्रीनगर बिच ए उन्हें तोड़ी का रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा दिहाड़ी का दर्जा हरारत है। हीटवेव जी मौजूदा सूरतयाल से लोगों को दोपहर के वेले और घर के अंदर रहने पर मजबूर किया जबकि पार्कां बाजारों और दीगर अवामी जगहों तक गर्मी की वजह नाल सरगर्मियां घट रही। कश्मीर भी शदीद गर्मी की लहर हफ्ते को मुसलसल तीये रोज भी बरकरार रही जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर रही। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी अज तक कैंकैत्रो भी जुलाई तोड़ी भारी बारिशां मुतवक्का। समय हूँ तुसां नाल इस हफ्ते शायर होने वाले रोजगार समाचार के बारे में कुछ गल्लां साझियां करां। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग NCCT नेशनल अकैडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मुख्तलिफ महकमे सुन असामियां पूर कीते वास्ते उम्मीदवारों को दरखास्तां तलब कीतियां दियां। रोजगार के मुतमन्नी उम्मीदवारों को असीं आखते जुलां के www.employmentnews.gov.in पर लॉग इन करके मजीद जानकारी जी हासिल कर सकते हैं। नाल नाल तुसां नाल इह गल भी साझी करदे जुलां कि असीं देखिया कि दो दिन पहला नीट इम्तिहान के नतज का ऐलान किया गया जिस भी जम्मू कश्मीर के बच्चों सुन भी अहम पोजिशन हासिल करके जम्मू कश्मीर अपने वालदेन और अपने इलाकों का ना रोशन किया। सानू नाल नाल तुसा को यह भी आखते हैं जुलां कि जड़े बच्चे इस इम्तिहान अपने जो क्वालीफाई नहीं कर सके उन्होंने को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मजीद मेहनत करनी चाहिए ताकि वह आइंदा आने वाले साल बच्चे इस इम्तिहान बच्चे बासानी कामयाबी हासिल कर सकन। यह इतला तुसा को देंदे जुलां कि तुसी लोग अस्ते प्रोग्राम के जरिए अपने कारोबार को अगर बढ़ावा देना चाहते हो तुसी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर नाल राबता कायम करके अपने कारोबार को बाधा दे सकते हो। समय नस्ती आवाज रेडियो की आवाज घर घर पहुंचती है कोने कोने तक पहुंचती है।

0: समीन आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, पेशकश मारूफ उन्निसा आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:20 हो रहे हैं, नश्र होती हैं पहाड़ी में खबरें। आदाब सामीन, 4:23 हुए, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी बुलेटिन के नाल मैं सैयद उमर मुख्तार। पहला सुर्खियां ते एक नज़र। पार्लियामेंट के मानसून इजलास थों पहला बचाव वजीर राजनाथ सिंह की सदारत विच ऑल पार्टी इजलास मनाकत। ओपोजिशन पार्टियों को इजलास खुश असलूबी के नाल चलने वास्ते ताउन की अपील। किरण रिजिजू राजौरी ते पुंछ अजला विच शदीद बारिशां थों पिछे बट्टे रुड़ने ते अचानक सैलाब, इन्हें दे नतीजे विच 4 अफराद फोत, कई लापता। लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीरे आला उमर अब्दुल्ला दा राजौरी ते पुंछ विच होई अमवात ते इजारे अफसोस। मरकज दा यूटी को मुकम्मल तावन दी यकीनदानी ते लैफ्टिनेंट गवर्नर सुन कीती बारामूला विच महायाजना धर्मा सम्मेलन विच शिरकत। आउण पेश है खबरां दी तफसील। पार्लियामेंट दे मानसून इजलास थों पहला अज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत विच ऑल पार्टी इजलास मुनक्कद किया गया। पार्लियामानी उमूर दे वजीर किरण रिजिजू ते राज्यसभा विच ऐवान दे लीडर JP नड्डा सोन भी इस इजलास विच शिरकत की। किरण रिजिजू सुन नामे निगारा नाल गल करदिया होया उम्मीद जाहिर की जे हुकमरान पार्टी ते ओपोजिशन दोवां पासियां दे अरकान कानून साजी दे कामकाज विच तामीरी अंदाज नाल हिस्सा कैंसन।
1: मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: उधर मीटिंग शुरू होने दे फौरन पिछे ओपोजिशन पार्टियां सुन शुरू बिच मीटिंग थ्यों वाकआउट कीता। मीडिया नाल गल करदिया होया तृणमूल कांग्रेस दी रुकन पार्लियामेंट महवा मोंत्रा सुन आखिया जे कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK झारखंड मुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी समेत पूरी ओपोजिशन पार्टियां सुन एहतजाज बिच मीटिंग थी वाकआउट कीता। उन्होंने सुन इल्जाम लाया जे अजय दी मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट स्टीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI तस्लीम शुदा पार्लियामानी जमात नहीं है, अलबत् अपना एहतजाज जाहिर करने थों पिछे ओपोजिशन के अरकान सुन मीटिंग में शिरकत की थी। वजीरेवेज पार्लियामेंट दा मानसून इजलास कल थ्यों शुरू हो रहा है जड़ा 13 अगस्त तोड़ी जारी रहे सी। इजलास बिच पार्लियामानी उमूर दे वजीर किरण रिजिजू ते राज्यसभा बिच कायदे ऐवान JP नड्डा सुन भी शिरकत की थी। राजौरी ते पुंछ जिलियां बिच अज सुबह बारिश थों पिछे बट्टे रुड़ने ते अचानक सैलाब, इन्हे नाल त्रै कुड़ियां समेत घट तों घट 4 अफराद दी मौत हुई जबकि कई लोग लापता दसे गए। खबरों के मुताबिक ए सारियां मौतां सब थों ज्यादा मुतासरा सुरन कोट तहसील बिच होईयां। हुकाम सुन फसे दे लोकां तोड़ी पहुंचने वास्ते इमदादी कार्रवाई तेज कर दिती है। पुंछ दे नून आबादी ग्राम बिच एक मकान दे चढ़ने नाल एक कुड़ी दी मौत हुई। उन्हां दे शोहर ते त्रै बच्चियां को बचा किते गया जिन्हां को अस्पताल बिच दाखिल किते गया है। मकामी इंतजामिया पुलिस NDRF ते दीगर बचा टीमां इमदादी कार्रवाईयां बिच मसरूफ हैं। पुलिस सुन आवाम को दरियावां दे किनारे ते तरले इलाकियां थी फौरी तौर ते महफूज मकामां दे पासे मुंतकिल होने दी अपील कीती है। लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन लगातार बारिश ते अचानक सैलाब, इन्हें दे तनाजर बिच राजौरी ते पुंछ बिच बचा ते इमदादी कार्रवाई बिच तेजी आने दी हिदायत दिती है। उन्होंने सुन लोगों को अपील की है जे ओ पुरसुकून रेमन ते सरकारी जराया कोलों हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी ते अमल करन। वजीरे आला उमर अब्दुल्ला सुन भी पुंछ बिच अचानक सैलाब, इन्हें नाल जाना दे जया ते दुख द

0: किरदार अदा कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि भारत की रूहानी रिवायात तमाम मजाहिब के एहतराम, अमन, खैर सगाली और बकाए बाहम का दर्स देती हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अखलाकी अकदार, हमदर्दी, भाईचारे और बेलौस खिदमत के जज्बे को अपनाएं। उन्होंने नेचर के तहफ्फुज़, सकाफती विरसे की हिफाजत और आने वाली नस्लों तक अपनी जबान, अदब और रिवायात मुंतकिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कौसर सलाम, बारामूला।
1: इस्तेनाली ए खबरनामा मुक्किया अल्लाह बेली।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:30 हो चुके हैं, समाप्त करें पंजाबी प्रोग्राम।

ऐसी कोशिश करन कि ऐसी खराबियां कार विच होन ही ना, मगर नहीं, मर्द हमेशा उस पिछे रहंदा है, औरत हमेशा हर कुछ बर्दाश्त करन वास्ते अग्गे रहंदी है। इदां ही एक एक दिन उदा निकलदा गया, वो सोचती रही कि शायद हुण शायद मेरे घर वाले ने थोड़ी तसल्ली मैनू दित्ती है कि नहीं, बच्चे बड़े हो रहे ने, हुण शायद तेरे लई चंगे दिन आणगे। लेकिन नहीं, फिर उहो हाल होया कि अचानक उन्हों बीमारियां ने आके घेर लिता, क्योंकि हुण वह भी बुजुर्गी की हालत में जा रही सी। एक दिन बैठ के संजीत सोचण लगी कि यह सब होंदा है जिंदगी विच, कि औरत की जिंदगी यह है कि सिर्फ बर्दाश्त करना, शुरू तो लैके आखिर तक बर्दाश्त करना, कि वह अपने मां प्यो की इज्जत के लिए, अपने घर वाले की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी गवा देंदी है, जो जिंदगी सिर्फ एक बारी मिलती है। बच्चों तो भी उन्हें उम्मीद की सी कि शायद बच्चों तो मैनू कुछ प्यार मिलेगा, लेकिन बच्चे जो अज की जनरेशन ने, वह की वह सब देंदे ने मां प्यो नू? नहीं। वो इस उम्मीद नाल भी थोड़े दिन कड़ रही सी कि शायद मेरे बच्चे मैनू संभाल लैणगे, बच्चे वड्डे हो गए ने, लेकिन नहीं, बच्चों को भी उन्हें प्यार नहीं मिलिया, तो बच्चों ने भी संभालण की कोई वो उम्मीद उन्हें दिखाई नहीं। आखिरकार बच्चे वड्डे हुए, पढ़ाई कंप्लीट हुई है उन्होंने, उन्होंने भी उही रस्ता सामिया जो अजकल की जनरेशन संभाल रही है कि अपनी स्टेट तो बाहर जाके काम करना। संजीत फिर सोचन लगी कि मैं जो इन्नी जिंदगी गवा दी किस वास्ते, की बर्दाश्त कर रही सा मैं। आखिर उन्हें ऐसा डिसीजन लिता, फिर उसके मन में एक बार आया कि मैं अपने आप को खत्म कर लवा, क्योंकि हूँ कोई फायदा नहीं, जो मैं तक्के वाली जिंदगी मेरी रह गई है उसके लिए चंगा है कि मैं अपने आप को हूँ खत्म ही कर लवा। लेकिन फिर घर वाले ने उन्हें बचा लिया, तो उन्होंने यह कहा कि हूँ तेरी कि उम्र रह गई है जो तू अपने आप को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यह गल गलत भी है कि इन्ना कुछ बर्दाश्त करने तो बाद जेकर वो अपने आप को खत्म कर दे तो फिर लोग यही कहेंगे कि यह कुड़ी ही गलत सी। इन्ना कुछ बर्दाश्त करने तो बाद उन्हें डिसीजन क्यों लिता? बहुत गलत सी डिसीजन उदा। उन्हें शुरू तो ही कोशिश करनी सी, जेकर उदी घर वालियां नू जे वो संभाल रही सी ठीक सी, उत्थे तक ठीक सी, लेकिन जेकर उदा घर वाला ठीक नहीं सी तो उन्हें उसी टाइम उस घर नू छड़ देना चाहिए सी। लेकिन फिर कहंदे ने ना, एक कुड़ी विच बर्दाश्त की इन्नी हिम्मत होंदी है कि वह बेचारी एक एक पल कुट कुट के कटदी है, एक एक दिन कुट कुट के कटदी है कि शायद कल मेरा कोई अच्छा दिन आएगा, मगर वह दिन आंदा नहीं है। ते असी ते इहो कहांगे अपने जवान जिहड़ी बेटियां घर बैठी ने, तियां जिहड़ी घर ने, कि मेहरबानी करके तुसी ठीक है अपने मां प्यो दी इज्जत संभालदे हो, संभाली है तुसी, संभालनी भी चाहीदी है, लेकिन तुसी व्याह करन तो पहले कुछ समा रख्या करो। जब तुसी इंगेजमेंट करदे हो ते तुसी कुछ समा ऐसा रख्या करो अपने कोल कि तुसी चंगी तरीके नाल मुंडे नू परख्या करो, वेख्या करो कि मुंडा नशा ते नहीं करदा, करैक्टर उहदा सही है कि नहीं, फिर तुसी व्याह करन दी सोचिया करो। क्योंकि फिर जेकर तुसी उस घर विच जाके बर्दाश्त ही करना है, कुट कुट के जीना है, उहदे कोल चंगा है कि तुसी अपना फैसला पहले ही लै लो कि भई मैं व्याह इधर नहीं करना। कई कुड़ियां अजकल ये डिसीजन लैंदी भी ने और फौरन व्याह खत्म करने की कोशिश भी करदी ने कि मैं इत्थे व्याह नहीं करना। बहुत अच्छा डिसीजन होंदा है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि उत्थे तुसी अपने पेरेंट्स का भी सोचा करो। जे तुसी सारी तैयारी तो बाद कहोगे मैं व्याह नहीं करना, उत्थे फिर वो माँ प्यो जाके पिस जाते हैं जिन्होंने पैसा लत्ता तुहाडे वास्ते जमा किया होंदा है, तुहाडे व्याह वास्ते उन्होंने एक एक रुपया जोड़ा होंदा है, तो उन्हां दी इज्जत का भी थोड़ा ख्याल रख्या करो। तो व्याह करन तो पहले तुसी कुछ समा लिया करो ताकि जिथे व्याह करन जा रहे हो उस घर बारे समझो, सोचो मुंडे दे करैक्टर बारे, मुंडे दे काम बारे, ते मुंडे दे कि वो नशा ते नहीं करदा, ये तुसी वेख के व्याह करया करो। क्योंकि जेकर तुसी जाके कल बर्दाश्त करना है ना, उस तो पहले तुसी ये सब वेख लो, ते कल तुहाडे दिन जड़े ने चंगे होणगे, ते जिंदगी जरा निखरी हुई होएगी। क्योंकि कल जब तुसी व्याह करके उस घर तो निकलोगे ना, फिर तुसी निकल नहीं सकोगे, क्योंकि फिर तुसी अपने बच्चों का सोचना है, इस करके ये सारा कुछ तुसी पहले ही सोच लिया करो। साथियों आओ सुन लेते हैं एक गीत।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समीन 5 बज रहे हैं। नष्ट होता है आज का गोजरी प्रोग्राम एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

باجو نفی اثبات نا دل روشن علم باج انسان حیوان ہے جی.

0: इश्क मार कानी की रात फानी होई रोता जान जलील ते जारी फकर दीना की उम्र माजी होई ना मंजूर अपीलियों ते।
1: आरफ मंजूर की आवाज में या इनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वास्ते हमने एसएमएस करें सुरफराव नेल पत्ती ते मोहम्मद याकूब कसाना और ते इनका नाल बाकी संगीत साथी हैं मोहम्मद अशरफ कसाना हनीफा बेगम यारिखा डीएचपुरा ते चौधरी निसार आमंद गोरसी मोहम्मद इस्माइल गोरसी हाजरा बेगम सकीना अख्तर आसफा मिसबा जान अब्दुल रशीद यास्मीन जान ते अलीजा टोक डन्ना पथरी ते मोहम्मद शरीफ खटाणा राजा इम्तियाज खटाणा एजाज खटाणा फैजान खटाणा सदाम अयान खटाणा जरीना बेगम ते नाजिया जान पालनाड़ वांगते गुलाम हसन मोटा मोहम्मद असलम मोटा मुश्ताक अहमद अशरफ अहमद महरीन अफरोजा उल्फत जान ते हनीफ तम सारा दोस्तों की पसंद पर आरफ मंजूर की आवाज़ में पेश है या नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

जिया सामीन, यह थी हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आज का प्रोग्राम तमना कैसो लगो अपनी राय ते जरूर नवासियो। तो इसके नाल ही आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक फानी ते अपना मेजबान शौकत अहमद बोकड़ा ना अगली मुलाकात तुरी दियो इजाजत। अपना ख्याल रखियो, चला फिर, अच्छा जी, रब राखो।

घर घर तक पहुंचने वाली यह आवाज आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन के मीडियम में 268.1 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी नष्ट होगा। पहले खबरें गोजरी में।

0: इजलास खुश सलूबी के नाल चलान वास्ते तावन की अपील करन दे जीजू राजौरी ते पुलिस जिला मां शदीद बारिशों तो बाद पस्सी खिसकन ते अचानक तो यानी आन का नतीजा मां चार अफराद अजान कई लापता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला को राजौरी ते पुलिस मां हुई अमवात पर इजहार अफसोस मरकज की यूटी ना मुकम्मल तावन की यकीन दहानी ते मारी रूहानी रवायत जात पात ते रस्म रवाज का तफरक तो बाला तर एल जी गो बारामूला मां महायज्ञ धर्मा सम्मेलन मां इजहार खया हुन पेश है खबरों की तफसील पार्लियामेंट का मानसून इजलास तो पहला आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में आल पार्टी इजलास मुनाकद किया गया पार्लियामानी अमूर का वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में ऐवान का लीडर जेपी नड्डा ने भी इजलास में शिरकत की किरण रिजिजू ने नामा निगारा नाल गल करता हुआ उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी ते अपोशन दो बखियां तो इरकान कानून साजिया का कामकाज में तामीरी अंदाज के नाल इसो लेंगा
1: मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने
0: मीटिंग शुरू होने तो फौरन बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग तो वाकआउट किया मीडिया नाल गल करता हुआ तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुल मोहत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी डीएमके झारखंड मुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन पार्टियां ने एहतजाज में मीटिंग तो वाकआउट किया है उन्होंने इल्जाम लाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने आली नेशनल सिटीजनस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई तस्लीमशुदा पार्लियामानी जमात नहीं है अलबत्त अपनों एहतजाज जाहिर करने तो बाद अपोशन का इरकान ने मीटिंग में शिरकत की वाजर है कि पार्लियामेंट को मानसून इजलास पालक तो शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तोड़ी जारी रहेगा राजौरी ते पुलिस जिलों का मां आज सुबह सवेरे मौसलाधार बारिशों तो बाद चट्टानों का टुकड़ा टहन ते अचानक सैलाब आन नाल त्रै हवातीन समेत घट तो घट चार अफराद की मौत हुई है जबकि कई लापता दसाया जी खबरों के मुताबिक सारी अमवात सब तो ज्यादा मुतासर सुरनकोट तहसील में हुई हुकाम ने फसया वा लोगों तोड़ी पहुंचने वास्ते इमदादी कार्रवाई तेज कर छुड़ी पुलिस का नून आबाद ग्राम में एक मकान का टहन नाल एक खातून की मौत हो गई है उनका शोहर ते त्रै बच्चा ना बचा लिया गया है जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया मुकामी इंतजामिया पुलिस एनडीआरएफ ते दूजी बचाव टीम इमदादी कार्रवाइयां में मसरूफ हुई पुलिस ने आवाम ना दरियावंग किनारे तो नशीबी इलाकों तोड़ी फौरी तौर पर महफूज मकाम दर मुंतकल होने की अपील की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश ते अचानक सैलाब आने का तनाजर में राजौरी ते पुनिश में बचाव और इमदादी कार्रवाई में सुरत आने की हदायत दी है
2: श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं राहत बचाव के कार्य में और जो कुछ अनुमन्य सहायता होगी उससे जल्द से पहुंचाने का निर्देश दिया है
0: एलजी ने लोगों को अपील की कि वे पुरसकून रहें ते सरकारी जराये तो हासिल होने वाली ताजा जानकारी पर अमल करें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी पुनिश में अचानक सैलाब आने नाल जाना गजया पर दुख को इजहार किया एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे मुकामी मेंबरान असेंबली ते इंतजामिया गा दूजे अफसर के नाल राबता माई उन्होंने कहा कि मुतासरीन वास्ते राहत रसानी ते कीमती जाना को तहफ़ सरकार की अवलीन तरजीह है जिस तरह की पहले खबर दी गई है कि लगातार बारिशों तो बाद राजौरी कस्बा में आज सुबह अचानक सैलाब आ गया कई बुनला इलाकों में पानी पार जाने का तनाजर में सैकड़ों लोगों का महफूज मुकाम पर मुंतकल हो पियो दरियावों का किनारा में शिकाव पै गया है ते दरियावों का किनारा पानी ते बाहर निकलने की वजह के नाल कई सारी मोटर गड़ी या ते पानी के नाल रुड़ गई या फिर पानी के थले आ गई सरकारी ते प्राइवेट इमलाक नाल काफ़ी नुकसान पहुंचे है जिला इंतजामिया ने पुलिस की मावनत नाल बचाव ते इमदादी टीम मुतासर कुमा महफूज मुकाम तोड़ी पहुंचाया हुआ है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला के नाल में टेलीफोन पर गल करता हुआ राजौरी ते पुंछ जिले में बारिशों तो बहुत आई सैलाबी सूरत हाल को जायजा लियो उन्होंने मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद ते मरकजी सरकार की तरफ मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी भी कराई है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुनिश ते राजौरी का मौसलाधार बारिशों तो बाद बादल फटन नाल हुई लैंडस्लाइडिंग ते सैलाबी रेलों का नतीजा में ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਦਮਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਿ

0: खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अज दुआ रवायती रस्ता बालतल ते पहलगाम तू आरजी तौर पर मुअत्तल कर छड़ी है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा है कि यो फैसलो यात्रा का रस्ता पर खराब मौसमी सूरत हाल का तनाजरमा यात्रियों की हिफाजत ना यकीनी बनाने वास्ते एहतियाती इकदाम के तौर पर लियो गयो है। यात्रियों तू कहो गयो है कि वे जम्मू उधमपुर ते रामबन मां अपना मुकर्रा कियामगाह पर रही ते हुकाम की तरफों मजीद हदायत को इंतजार करी। वाजर है कि बार की शाम तोड़ी पौना 4 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा मां हाजिरी दी के शिवलिंगम का दर्शन किया है। कटरा ते त्रिकोटा हिल्स मां खराब मौसम की मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा हूं भी मुअत्तल है। नामुवाफिक मौसम का तनाजर मां श्रद्धालुओं की सलामती ने यकीनी बनाने वास्ते एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आरजी तौर पर रोक छड़ी है। यात्रियों ने सलाह दी गई है कि वे यात्रा दोबारा शुरू होने का ताल्लुक नाल सरकारी वसीलों के जरिए ताज़ा जानकारी हासिल करता रही। इसी दौरान कटरा का सब डिवीजन इंतजामिया ने बारिश का मौसम के दौरान तेजी के नाल कार्रवाई करन ते बेहतर तालमेल के नाल दिन रात काम करन आलो एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। आवाम कंट्रोल रूम तू रजू करके एमरजेंसी सूरत हाल की इतला दे सकी या मदद हासिल कर सकी। कंट्रोल रूम को नंबर है 01991295681। मुख्तलिफ जिला में ज़िला इंतजामिया ने लोगों ना एहतियात बरतन वास्ते एडवाइजरी जारी की ते किसी भी हंगामी सूरत हाल तो निपटन वास्ते कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वहाँ बिजबाड़ा गा हट्टी गांव में तेज़ बारिशों तो बाद आया अचानक सैलाब की वजह के नाल दुद्धी कनाल में जबरदस्त नुकसान पहुँचो है, जिस नाल इलाका की हजारा कनाल की जरिए जमीन आपाशी तो मुतासर हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीद्दीन भट्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू की सरबराई में मुतलका अफसरों की एक टीम ना मुतासर जगह को मायनो करने तो बाद फौरी तौर पर बहाली को काम शुरू करने की हदायत भी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी रूहानी रवायत जबान इलाका जात पात ते रस्म रवाज या तफरक तो बालातर है ते भारत ऐसी सरजमीन की अलामत है जित तमाम मजहब फरोग पा रहे हैं। इन गलों को इजहार एल जी ने बारामूला मां मुनकता महायज्ञ धर्मा सम्मेलन मां शिरकत के दौरान क्यों उन्होंने क्यों कि जम्मू कश्मीर मां जित तमाम मजहब को एहतराम किया जाए यो महायज्ञ मारो रूहानी विरसो मां नवी रूह फूक रही है। मजीद तफसीलात मारा नुमाइंदा तू।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर खताब करते हुए कहा कि यह सम्मेलन खत्ते में रूहानी बेदारी की नई अलामत है और बारामूला से पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में हम आहंगी भाईचारे और कौमी यकजहती का मजबूत पैगाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि बारामूला सदियों से सकाफत रूहानी इल्म और मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप का अहम मरकज रहा है और इस तरह की तकरीबात इस अजीम विरसे को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि भारत की रूहानी रिवायात तमाम मजाहिब के एहतराम अमन खैर सगाली और बकाए बाहम का दर्स देती है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अखलाकी अकदार हमदर्दी भाईचारे और बेलौस खिदमत के जज्बे को अपनाएं। उन्होंने नेचर के तहफ सकाफती विरसे की हिफाजत और आने वाली नस्लों तक अपनी जबान अदब और रिवायात मुंतकल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कौसर सलाम बारामूला।
0: सूबे कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान में आजादी की तकरीबात का इंतजाम तैयारियों को जायजा लियो। मीटिंग में तमाम जिला का डिप्टी कमिश्नर ने IGP कश्मीर के अलावा सारा महकमा का सरबराह ने शिरकत की। मीटिंग में तकरीबात का बेहतर इनकात में यकीनी बनाने वास्ते पेश की मनसूबाबंदी बैन महकमा जाती तालमेल पर जोर दिया गया। डिवीजन कमिश्नर ने मरकजी तकरीब का इनकाद वास्ते मुख्तलिफ महकमा ने जिम्मेदारी तफवीज की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अदाई दी गई कि वे अपना अपना जिला में योम आज़ादी की तकरीबात का असल इनकाद वास्ते मरबूत जामे इंतजाम करी। बाबा ऋषि टंगमर्ग में आज बहार अदब तलंगाम पट्टन ने जम्मू कश्मीर कल्चर अकाडमी का इश्तराक के नाल एक महफिल मुशायरा को इनेकाद किया। मुशायरा की सदात मारूफ अदीब ते शायर शाद दर्दपुरी ने की। इस मौका पर अदबी मरकज कमराज का जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी भी मौजूद था। इसके नाल ही खबरों को यह बुलेटिन मुख्यो आकाशवाणी तो 6:05 पर कश्मीरी जबान में अगलो बुलेटिन सुनो ना भूलियो। हमने दियो इजाजत खुदा हाफिज़।

0: सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। समीन शो आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन शाम 6:05 तो 20 सेकेंड सपुत पेश प्रोग्राम गमी बायन हिंदी खतरे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ

اگر پاکے وچھس کھایست چایست

आपनड़ै कर जाए पैरत ना दे चुमा। फरीदा जो तै मारन मुक्किया तिना न मारे कुमा। आपनड़ै कर जाए पैरत ना दे चुमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: 1000 मेगावाट बिजली की कमी होगी, लोगों से तावन की अपील। और भी मौजूद है एक मुफ्त सर वक्त के बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता शब से हो रही बारिश की वजह से पुंछ और राजौरी अजला में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर राजौरी और पुंछ में देखा गया, जहां इतलात के मुताबिक 11 अफराद अजा हुए हैं जबकि 7 दिगर लापता है और कुल जख्मियों की तादाद 50 बताई गई है। पुंछ जिले में गुज़श्ता रात शदीद बारिश होने के नतीजे में नदी नालों में तगियानी की सी सूरत हाल पैदा हुई है, जबकि बिजली और पानी की सप्लाई भी कई इलाकों में मुतासर होने की खबरें हैं। पुंछ के सुरनकोट में लोअर मुरा देहात में पसी गिराने के बायस एक घर इसकी जद में आया और घर में मौजूद 8 अफराद मिट्टी के नीचे दब गए और इनकी बाद में लाशें बरामद की गयी। इसी तरह दूसरे हादसे में सांगला गांव में एक घर सैलाबी रैली की जद में आया। पूंछ में आखिरी तक 2 साल बच्चा समेत 10 अफराद की मौत हुई है और इस तादाद में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। मुकम्मल रिपोर्ट KD मैनी से।
3: पीर पंचाल के बालाई पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से जिला पूंछ और राजौरी गुज़श्ता शब तूफानी बारिश के नरगे में रहे और लोगों ने जाग कर रात गुजारी। आज सुबह होने तक ये तूफानी बारिश अपने पीछे जानी और माली नुकसान छोड़ गई, जिसमें ताजा तरीन इतलात के मुताबिक 11 अफराद जहां बहक हुए, 7 अफराद लापता हैं और 50 के करीब जख्मी हुए हैं, जबकि पुंछ शहर के जहरी इलाके में सैलाब का खतरा बना हुआ है। शहरबीन को बताया गया कि तहसील स्वर्णकोट के गांव मड़ा में सख्त बारिश के बायस एक मकान मुनहदम हो गया और घर के 8 मकीन मलबे की जद में आ गए। 5 अफराद के जिस्म खाकी हासिल कर लिए गए और बाकी की तलाश जारी है। स्वर्णकोट में ही सांगला गांव में एक मकान के गिरने के बाद 4 अफराद लापता है, जिनमें अब्दुल हमीद नायब सरपंच, उनकी जोजा सरफा बेगम, बेटी अरना और बहन मनीजा बेगम शामिल हैं। इधर तहसील पुंछ की नूना बांडी गांव में एक मकान मुनहदम होने से 28 बरस की नाजिया कोसर जहां बहक हुई, उनके खावत मोहम्मद हफीज और 3 बच्चे जख्मी हालत में बरामद किया गया, अब उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी तरह स्वर्णकोट के गांव सिंगलियानी में 28 साल शहजेब अहमद और छोटा बच्चा इमरान नाले में बह गए। स्वर्णकोट के ही गांव धुंधक के दरिया के नजदीक एक बुजुर्ग औरत की लाश मिली है। अभी गांव से भी जख्मी अफराद जाम बहाक होने वाले और मकानों के गिरने और दूसरे नुकसानात की इत्तला धीरे धीरे आ रही है। ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक आज ऑनरेबल गवर्नर ने भी मुतलका अफसरान की मीटिंग तलब की है। याद रहे कि 2014 के तूफान के बाद जिला पुंछ में पहली बार इतनी तबाही देखी गई। इस वक्त पुंछ में न बिजली है, न पानी है, शहर कट कर रह गया है और ऊपर से एक और तूफानी रात का इम्कान लग रहा है।
0: ये थे पुंछ से KD मनी। इधर राजौरी में भी तेज बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और पानी के रेले बस्तियों में दाखिल हुए। तेज रेलों की वजह से बस स्टैंड मुकम्मल तौर ढह चुका है, जबकि वहां मौजूद दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी एक शख्स के अजा होने की खबरें हैं। जिले के दीगर इलाकों से भी इत्तलात है कि वहां बारिश से सख्त नुकसान हुआ है और कई मकामात पर पसियां गिराने से सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। मुकम्मल तफसीलात राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी की जबानी।
4: जिला राजौरी में गुज़श्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में आने वाले अचानक

0: अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में एक खातून जाँबहक हो गई जबकि एक के लापता होने की इतला है और कई घर मुनहदम होने की भी इतला मिली है। गुज़श्ता रोज से आज सुबह सादिक तक मुसलसल मूसलाधार बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और कुछ मकामात पर बादल फटने के बायस रजौरी सदर मकाम के नदी नालों में अचानक सैलाब आ गया जिसकी जद में आकर रजौरी कस्बे के सलम इलाके में रात को एक खातून लापता हो गई जिसकी लाश आज दिन को नदी के किनारे से मिली है। पुलिस ने लाश को एसोसिएट अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी मुंतकल किया जहां कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को मुतवफी के अहले खाना के हवाले कर दिया गया जबकि रजौरी शहर के एक बस स्टैंड जिसकी तामीर हाल ही में की गई थी वो भी सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह होकर सैलाब में बह गया। बस स्टैंड पर पार्क दर्जनों निजी गाड़ियां सैलाब के रैले में बहकर तबाह हो गई। जिला भर से सड़कों, पुलों, रिहायशी मकानात, गाड़ियों और दिगर आवामी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक सब डिवीजन थाना मंडी के इलाके में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में एक शख्स रात से लापता है और एक तामीरात कंपनी के क्रशर के साथ साथ डेम्पर और दिगर गाड़ियों के बह जाने की भी इतला है जिससे क्रशर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिला भर में लैंडस्लाइडिंग के बायस मतदद सड़कें बंद हो गई हैं। कालाबंद कोटली के इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बायस एक मकामी कब्रिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की इतला मिली है। जिला में कई मुकाम पर सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से धान के खेतों, घास बागात, खड़ी फसलों और जरी अराजी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तहसील द्रहाल के एक मकामी बाशिंदे ने शरबीन से बात करते हुए बताया कि तहसील द्रहाल में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कई रिहायशी मकानात के साथ साथ सड़कों और खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। एक सरकारी जराये ने शरबीन से बात करते हुए बताया कि रात को जिला इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकल कर दिया गया था क्योंकि निचली इलाकों में सैलाबी पानी भर गया था। जिला इंतजामिया ने इमदादी टीमों को मुतहरक करते हुए मुतासर खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकल किया है। हुकाम ने दरियाओं, नदी नालों और लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को घरों में रहने, गैर जरूरी सफर से ग्रेज करने और तेज बहाव वाले आबी जहाय से दूर रहने की हदायत दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से वसी पैमाने पर बारिशों की पेशगोई करते हुए खबरदार किया है कि 23 जुलाई तक जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं, आंधी का इम्कान है जिसके बायस फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने, पत्थर खिसकने और निचली इलाकों में पानी जमा होने के खतरात बढ़ सकते हैं। इधर दांगी इलाके में मिली जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से पानी की सतह अचानक बढ़ने के बाद एतवार को दरियाए मनावर के बीच में दो लड़के फंस गए। वाकये की इतला मिलते ही जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फौज, SDRF, पुलिस, CRPF की टीमें मौके पर पहुंच गई। तेज दारों और मुश्किल हालात के बावजूद रेस्क्यू टीमों ने गैर मामूली हिम्मत और हम आहंगी के मुजाहरा करते हुए दोनों लड़कों को कामयाबी से महफूज बनाया।
1: ये थे राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी। इस दौरान शदीद बारिश और अचानक सैलाब के बायस राजौरी में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे 14 अफराद को बहिफाजत बचाया गया है। हुकाम के मुताबिक जम्मू में दरियाए तवी के किनारे पीरखो के मकाम पर 3 अफराद दरिया में फंसे थे जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। इस दौरान राजौरी जिले में पुलिस, फौज, SDRF और सिविल इंतजामिया की मुश्तरक कार्रवाईओं से 11 अफराद को बचाया गया है जो कि सैलाबी रेलों की जद में आए थे और इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने खराब मौसम के पेश नजर आवाम से अपील की कि वो दरियाओं, नदी नालों और दीगर खतरनाक मकामात के करीब जाने से गुरेज करें।
2: कल रात से काफी तेज बारिश होने की वजह से राजौरी में और आसपास के इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया था और हमारे लगभग 3 जगहों पे लोग स्टैंडर्ड हो गए थे जो दरिया के बीच के टापू थे, नौशहरा में और यहाँ चकली में और मुरादपुर में। नौशहरा और मुरादपुर में लोगों को रेस्क्यू किया गया लेकिन तो यहाँ का डांगरी में जो टापू है यहाँ पे 2 लोग कल रात से ही ये स्टैंडर्ड थे और इसमें फाइनली इंडियन आर्मी का और SDRF की टीम्स ने जॉइंटली ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसको हमने पर्सनली यहाँ पे सुपरवाइज किया और दोनों लड़कों को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से विदाउट एनी डैमेज इन दोनों लड़कों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और साथ में ही जो बाकी जगहों पे नुकसान हुआ है उसकी सर्वे चल रहा है और जितने भी लोग यहाँ पे लो लाइंग एरियाज में रहते हैं मेरी सबसे अपील है कि अगले 3 दिन तक बरसात होने के चांसेस अभी भी हैं तो प्लीज नदी नालों से दूर रहें। चाहे आपके जानवर हैं, चाहे आपके पास माल मवेशी है, उनको पानी के ज्यादा क्लोज ना लेके जाएं और प्लीज आप अपनी फैमिलीज को और अपने आप को सेफ जगाते रहें। सबका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबको यही डायरेक्शंस हैं कि कम्युनिकेशन और जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको बहाल किया जाए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ डैमेज हुआ है उसके लिए भी टीम्स स्टार्ट हो गई हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे से मौसम साफ हो गया है तो पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कम्प्लीट करना, रिलीफ सेंटर

0: उसको ध्यान देना और हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें मेडिकल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, इन तीनों को बहाल कर।
1: ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा। इधर वादी के तूल अर्ज से भी गुजश्ता रात से वक्त वक्त से बारिश होने की खबरें हैं। शहरी श्रीनगर के बाज इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की भी खबर मिली है। गुरेज शाहरा पर भी पस्सी गिराई है, जबकि बाज इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के बाद अजला में तूफानी बारिश और जानी और माली नुकसान की इतलात के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर अला उमर अब्दुल्ला से अलग अलग बात की और सूरत हाल से मुतल जानकारी हासिल की। वजीर दाखिला ने सैलाबी रेलों और भट्टी के तूरे गिराने से हुए जानी और माली नुकसान के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल की, जबकि इमदादी और बचाव कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल करते हुए मरकज से हर मुमकिन मदद और मावनत का यकीन दिलाया। इधर वजीर अला उमर जो कि पार्टी कयादत के साथ कल दिल्ली में मुनक्कद होने वाले एहतजाज में शमूलियत की गरज से नई दिल्ली पहुंचे थे, ने राजौरी पुंछ में पेश आए हादसे की इतला मिलते ही दिल्ली में अपना कयाम मुख्तसर किया और जम्मू वापस पहुंचे ताकि इमदाद और बचाव कार्रवाईओं की आज खुद निगरानी की जा सके। इतलात है कि वजीर अला उमर अब्दुल्ला इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिस दौरान राजौरी पुंछ, किश्तवाड़, रामबन और दीगर अजला में सैलाब से हुए नुकसान और बाजाबादकारी के साथ साथ बचाव कार्रवाईओं का जायजा लिया जा रहा है। इधर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने पुंछ राजौरी में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हुए जानी और माली नुकसान पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने जांबा खोए अफराद के लवाकीन से ताजत करते हुए हुकूमत और जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि मुतासरा इलाकों में बचाव, राहत और बाजाबादकारी की कार्रवाईओं में तेजी लाई जाये। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि वो सूरतहाल पर नजर रखे हुए हैं और जिला इंतजामिया से राबते में हैं। इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी और पुंछ के सैलाब ज़दा इलाकों में वसी पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने शदीद बारिश और अचानक आए सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए जांबहक हुए अफराद के लवाकीन से ताजियत की और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतासर खानदानों को फौरी इमदाद, आर्जी रिहाइश, खुराक, पीने का पानी, तिबी सहूलियात और मुनासिब मुआवजा फराहम करने के साथ साथ सड़कों, बिजली और मौसलाती निजाम को जल्द बहाल करने का भी मुतालबा किया है। इधर बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन ने इतला दी कि गुजशत रात होने वाली शदीद बारिश के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नाशरी और झकेनी के दरमियान कई मकाम पर मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने से ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासर रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मलबा हटाकर शाहरा को बहाल कर दिया गया है। इधर बानिहाल के आरम ढक्का मंगत इलाके में एक हादसे में गुलजार अहमद लोन नामी शख्स फंस जा, जबकि चार दीगर जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया है। इधर खराब मौसमी सूरतहाल और शदीद बारिश के पेश नजर अमरनाथ यात्रा पहले ही आरजी तौर बंद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक 1000 से ज्यादा यात्रियों को एहतियाती तौर पर रामबन के चंद्रकूट यात्री निवास और बानिहाल के रामबर ग्राउंड में ठहराया गया है। इधर जिला बांडीपुरा के गुरेज इलाके के दावर में आज सुबह बादल फटने के वाके में एक मवेशीखाना और सड़क का एक हिस्सा ढहकर तबाह हुआ और इस वजह से आमदरफ्त मुतासिर हुई। हुकाम के मुताबिक नाले में आई तगियाने के बायस कई अफराद सड़क के दोनों तरफ फंसे रहे और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीआरओ ने मौके पर पहुंचकर बहाली का काम शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल ने भी हिदायत जारी की है कि आज से 23 जुलाई तक बारिश और गरज चमक की पेशगोई के बायस आम लोगों को पहाड़ी, ढलवानों, लैंड स्लाइडिंग इलाकों और सैलाब की जद में आने वाले इलाकों में जाने या वहां से गुजरने से गुरेज करने की अपील की है। मुश्ताकदेव के मुताबिक जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरतहाल रही। पाडर, नागसिनी, मड़वा, वड़वन, भोंजवा, सुरूर, केशवान, कोतवाड़ा और कस्बे किश्तवाड़ में मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि छात्रों और चनगम इलाकों में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस गुजर छात्रों की जामा मस्जिद और करीबी मदरसे की निचली मंजिल जेर आबाई और वहां कुछ नुकसान हुआ। दरियासना दक्षिण के क्याड़ इलाके में सोड़नो नाले के बला हिस्से में बादल फटने के वाके के बाद नाले में शदीद तगियानी आई, जिससे मकई की फसल समेत दीगर खड़ी फसलों और जरी जमीन को नुकसान पहुंचा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ राजौरी समेत दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिशों के बायस हुए जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए लवाकीन से ताज़ियत की है और हुकूमत से कहा है कि वो मुतासरीन की बाजाबादकारी के लिए फौरी तौर इकदाम करें। शरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ।

0: निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: शेरबीन में आपका फिर एक बार खरमकतम। सामिन, जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर जिला इंतजामिया बारामूला ने आवाम के लिए मौसमी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से नशेबी और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी अहकाम के मुताबिक 23 जुलाई तक मौसम खराब रहने का इम्कान है और इस वजह से टंगमर्ग, गुलमर्ग, उड़ी, बोनियार, चंदूसा, हाजीबल, कलांतरा, रफियाबाद और नदी नालों के किनारों पर रहने वाले अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी जा रही है। इंतजामिया ने मुसाफिरों को सफर से कबल सड़क की सूरतहाल मालूम करने, जेरियाब सड़कों को अबूर न करने और किसी भी हंगामी सूरतहाल में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर या पुलिस कंट्रोल रूम से राबता करने की तलकीन की है। इस दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉ मुख्तार अहमद ने शेरबीन से बात करते हुए फिर एक बार दोहराया कि शदीद बारिशों का ज्यादा असर जम्मू खत्ते में देखा जा सकता है, इसलिए खत्ता डोडा, राजौरी, पुंछ, रियासी और उधमपुर के लोगों को इंतहाई चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरतहाल पैदा होने के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक स्पेल जो हैवी था, हैवी से लेकर वेरी हैवी, वो खासकर कल रात या आज अर्ली मॉर्निंग हाउस में ही ये स्पेल हुआ है और कमिंग डेज में भी खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हाउस में फिर से ताजा बारिशों के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है और ये एक्टिविटी इंटरमीडियंटली खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हाउस में टिल 23rd ऑफ जुलाई तक रहने के चांसेस हैं। तो इस बीच हैवी शावर्स खासकर पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और साथ साथ में ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू, कठुआ, सांबा और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन, किश्तवाड़, इन जगहों पर भी जो हैवी शावर्स के चांसेस हैं कमिंग डेज में। तो अभी मॉनसून का टाइम है, पीक एक्टिविटी चल रहा है।
4: जानना चाहेंगे ये कि सोशल मीडिया पे आज सुबह से ये खबरें गश्त कर रही हैं कि गैर मुसद्दका खबरें कि सैलाब का भी इम्कान है, कुछ इलाकों में सैलाब आ सकता है 2024 की तरह। क्या आपको लग रहा है कि वादी कश्मीर में भी सैलाब की कोई गुंजाइश है?
3: देखो जम्मू डिवीजन में तो बारिशें, हैवी शावर या कुछ जगहों पर थोड़ा एक्सट्रीम रेनफॉल की भी पॉसिबिलिटी है और कमिंग डेज में खासकर वैली के अंदर जो हैवी बारिशें हो सकती है कमिंग डेज में भी पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर। तो यहाँ वैली के अंदर उसके निस्बत थोड़ी सी बारिशें कम होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड के चांसेस नहीं है। कुछ जगहों पे यहाँ पे भी जो फ्लैश फ्लड की पॉसिबिलिटी है।
4: गढ़वा, मडवन, किश्तवाड़ और उसके साथ साथ लद्दाख शाहरा, गुरेज शाहरा, इनके बारे में, इस एरिया के बारे में आपकी क्या राय है?
3: बिल्कुल, देखो ये सारे जो हिली डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हमारे रास्ते हैं हाईवे से ये पहाड़ों के बीच से बना हुआ है, तो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और उसके साथ साथ फ्लैश फ्लड के चांसेस इन हाईवे पे भी रहता है कमिंग डेज में। तो बिल्कुल ऐसे एहतियात करना चाहिए, जो भी ट्रेवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, टूरिस्ट हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। ये 2-3 दिन जैसे ही खत्म होते हैं तो फिर से जो मामूल की एक्टिविटी जो शुरू की जाए।
4: साउथ कश्मीर में किस तरह का मौसम आप आज से देख रहे हैं?
3: साउथ कश्मीर के अंदर भी इंटरमीडियंट शावर्स खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हाउस में और लेट आफ्टरनून इवनिंग हाउस में ऐसे स्पेल्स होते रहेंगे, लेकिन खासकर 21-22 के दरमियान काफी ज्यादा चांस हैं बारिशों के और इसी तरह 22-23 के आसपास भी। तो कमिंग डेज में भी रहेगा इंटरमीडियंटली, लेकिन कोई कंटिन्यूस बारिश होने के चांसेस नहीं है। देर रात, सुबह, सवेरे जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
4: सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर
3: यहाँ पे भी बारिशें होंगी, जैसे आज एक हैवी शावर हुआ खासकर यहाँ डाउन और बाकी जो आसपास के इलाके हैं, तो इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो ब्रीफ हैवी शावर्स बीच बीच में पॉसिबल है। ओवरऑल जो थोड़ा लाइट रेन के चांसेस भी हैं खासकर सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर।
2: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने राजौरी और पुंछ में सैलाबी तबाही के पेश नजर 20 जुलाई को श्रीनगर के लालचौक में मुजवजा सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च मुलतवी कर दिया है। पार्टी के मुताबिक शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड्स और जानी और माली नुकसान के बाद से फैसला लिया गया है, जबकि मार्च के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इधर जम्मू में कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर का मुकम्मल

0: रिवाज के तफरुक से बाला तर। एलजी का बारामूला में महायज्ञ धर्म सम्मेलन में इजहार ख्याल और पार्लियामेंट के मानसून इजलास से काबिल बचाव बचाव वजीर राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास नकद। अपोजिशन पार्टियों को इजलास खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए ताउन की अपील किरण रिजिजू। और अब पेश है खबरों की तफसील। राजौरी और पुंछ जिले में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन खवातीन समेत कम से कम 11 अफराद की मौत हुई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नून आबादी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और तीन बच्चों को बचा लिया गया जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। संगलानी सुरनकोट में एक मकान ढह जाने के नतीजे में 22 साल एक नौजवान अजान जबकि मरहूट गांव में एक कमसिन बच्ची नदी में बह गई। सुरनकोट के दुंदक लाथून पुल के नजदीक एक नामालूम खातून की लाश बरामद की गई है। मुकामी इंतजामिया पुलिस एनडीआरएफ और दीगर बचाव टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। पुलिस ने आवाम को दरियाओं के किनारों और नशीबी इलाकों से फौरी तौर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई में सूरत लाने की हिदायत दी है।
1: बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं। हम लोग राहत बचाव के कार्य में है और जो कुछ अनुमन्य सहायता होगी उससे जरा सीट पहुँचाने का निर्देश दिया।
0: एलजी ने लोगों से अपील की कि वो पुरसकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताजा जानकारी पर अमल करें। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने भी पुंछ में अचानक सैलाब आने से जानों की जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो मुकामी मेंबरान असेंबली और इंतजामिया के दीगर अफसरान के साथ रबते में है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए राहत रसानी और कीमती जानों का तहफ्फुज सरकार की अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि लगातार बारिशों के बाद राजौरी कस्बे में आज सुबह अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। दरियाओं के किनारों में शिगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गई या जेर आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासर कुंभों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर अला उमर अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए राजौरी और पुंछ में बारिशों के बाद आए सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद और मरकजी सरकार की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रिवायती रास्तों भालतल और पहलगाम से आर्जी तौर मुअत्तल है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि यह फैसला यात्रा के रास्ते पर खराब मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। यात्रियों से कहा गया कि वह जम्मू उधमपुर और रामबन में अपने मुकर्रर कायमगाहों पर ही रहें और हुकाम की जानिब से मजीद हिदायत का इंतजार करें। वाजे रहे सनीचर की शाम तक 4.25 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में श्रद्धालुओं की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर यात्रा आरजी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताजा जानकारी हासिल करते रहें। इसी दौरान कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के साथ दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। अवाम कंट्रोल रूम से रजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर है 01991295681। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ और राजौरी में मूसलाधार बारिशों और बादल फटने से हुई लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलियों के नतीजे में हुए जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को भरपूर माली इमदाद फराहम करें।

0: उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो जो लोग इस आफत की वजह से बेघर हुए हैं या फिर जिनके घर नाकाबिले रिहाइश हो गए हैं उनके कयाम ताम का बंदोबस्त जंगी बुनियादों पर किया जाना चाहिए। एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने भी पुंछ और राजौरी में मौसलाधार बारिशों और बादल फटने के नतीजे में हुए इंसानी जानों के जिया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इन सरहदी अजला में पेशगी वार्निंग देने, निजाम को मुस्तहकम करने, पानी की निकासी के नेटवर्क को बेहतर बनाने और दरियाओं के पुश्तों को मजबूत करने के साथ साथ दीगर एहतियाती इकदाम पर जोर दिया है। बिजबिहाड़ा के हट्टी गांव में तेज बारिशों के बाद आए अचानक सैलाब की वजह से दूधी कनाल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके की हजारों कनाल की जरी जमीन आपपाशी से मुतासर हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉ. बिलाल मोहियुद्दीन भट्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में मुतल्लिका अफसरान की टीम को मुतासर जगह का मुआयना करने के बाद फौरी तौर पर बहाली के काम को शुरू करने की हिदायत दी है। मुख्तलिफ अजला में जिला इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। हुकाम ने लोगों से कहा है कि वो इलाकों में जहां चट्टानें खिसकने और सैलाबी रेलों का खतरा लाहक रहता है अपनी नकल हमल को महदूद रखें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम सिवर सेक्रेटेरियट जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मौसलाधार बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल और मुतल्लिका महकमों की तरफ से हालात का मुकाबला करने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी रूहानी रिवायत जबान इलाके जात पात और रस्म रिवाज की तफरीक से बालातर है और भारत ऐसी सरजमीन की अलामत है जहां तमाम मजाहिब फरोग पा रहे हैं। इन बातों का इजहार LG ने बारामूला में मुनाकदा महायज्ञ धर्म सम्मेलन में शिरकत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां तमाम मजाहिब का एहतराम किया जाता है, ये महायज्ञ हमारे रूहानी वर्से में नई रूह फूंक रहा है जिसने जम्मू कश्मीर को दुनिया में एक मुनफरद और नुमाया शनाख्त बख्शी है। मजीद तफसीलात हमारी नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यह सम्मेलन खत्ते में रूहानी बेदारी की नई अलामत है और बारामूला से पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में हम आहंगी भाईचारे और कौमी यकजहती का मजबूत पैगाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि बारामूला सदियों से सकाफत रूहानी इल्म और मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप का अहम मरकज रहा है और इस तरह की तकरीबात इस अजीम विरसे को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि भारत की रूहानी रिवायात तमाम मजाहिब के एहतराम अमन खैर सगाली और बकाए बाहम का दर्स देती हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अखलाकी अकदार हमदर्दी भाईचारे और बेलौस खिदमत के जज्बे को अपनाएं। उन्होंने नेचर के तहफ्फुज़ सकाफती विरसे की हिफाजत और आने वाली नस्लों तक अपनी जबान अदब और रिवायात मुंतकिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कौसर सलाम बारामूला।
0: पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनाकद किया गया। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में अवान के लीडर JP नड्डा ने भी इस इजलास में शिरकत की। किरण रिजिजू ने नामा निगारों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुकुमरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे।
2: मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: इधर मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मंत्रे ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK झारखंड मुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI तस्लीमशुदा पार्लियामानी जमात नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान ने मीटिंग में शिरकत की। वाजह रहे कि

0: पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंचल गर्ग ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान यौम आजादी की तकरीबात के इंतजाम और तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और आईजीपी कश्मीर के अलावा सभी महकमों के सरबराह ने शिरकत की। मीटिंग में तकरीबात के बेहतर इनाकात को यकीनी बनाने के लिए पेश की मनसूबाबंदी बैन महकमा जाती तालमेल पर जोर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने मरकजी तकरीब के इनाकात के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की गई कि वह अपने अपने अजला में यौम आजादी की तकरीबात के एहसन इनाकात के लिए मरबूत और जामे इंतजाम करें। इधर अनंतनाग शुपया बांडीपुरा के जिला तरक्याती कमिश्नरों ने भी यौम आजादी तकरीबात को शानदार अंदाज में मुनाकद करने के गर्ज से आला सतही मीटिंगों की सदारत करके तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी ने पुंछ और राजौरी अजला में सख्त बारिशों के नतीजे में हुए जानी व माली नुकसान के पेश नजर कल मुजवजा एहतजाजी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कल का एहतजाज प्रोग्राम मुअख्खर किया है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल सियासी सरगर्मियों के बजाय इंसानी हमदर्दी का तकाजा करती है। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों से एकजुट होकर मुतासर लोगों की इमदाद करने के लिए कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएलए श्यामलाल शर्मा और बीजेपी के स्टेट नायब सदर शहनाज गनाई के अलावा दीगर कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मलेशिया के कारोबार में मुलवस अफराद पर शिकंजे कसने की कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग और अवंतीपुरा में 3 मलेशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अच्छाबल में एक नाके के दौरान तलवनी के जुबैर मजीद लोन नामी शख्स को गांजा पाउडर समेत धर लिया, जबकि दूधनाथ बिजबिहाड़ा में वाके के दौरान वाघहामा के इमरान नजीर दास को गिरफ्तार किया, जबकि इसका दूसरा साथी इरशाद अहमद दास फरार होने में कामयाब हुआ। गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 7 किलो पोस्ट हाई खशखाश बरामद किया गया। इधर पुलिस ने मनपुरा खरेव क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान खुनमु श्रीनगर के साकिब बशीर भट्ट नामी एक शख्स को हीरोइन नुमा अशिया समेत गिरफ्तार किया। बाबा ऋषि टंगमक में आज बहार अदब तिलगाम पट्टा ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे की सदारत मारूफ अदीब और शायर शाद दर्दपुरी ने की। इस मौके पर अदबी मरकज कमराज के जनरल सेक्रेटरी शब्दम तिलगामी भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्डोवा, मैसोडीनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हुई है। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मोल्डोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब माइमा संधू के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मोल्डोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसु से भी मुलाकात करेंगी, वो भारतीय बरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर का ये मोल्डोवा का पहला दौरा है। खबरों के खत्म से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:34 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:41 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। भारत और बरतानिया की माबेन आपस में तिजारत को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए दोनों मुल्कों ने विजन 2035 लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत में एक तिजारती मुहादे पर दस्तखत भी किए गए। कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट नामी मुहादे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को 2030 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी आगे ले जाना है। जब कभी एक आम शहरी अखबारों या रेडियो या टेलीविजन पर नशर होने वाली खबरों के जरिए सुनता है कि उसके मुल्क ने फलां मुल्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं, तो इसके जहन में ये सवाल जरूर जन्म लेता होगा कि इस महादेश से इसकी जिंदगी में क्या

फर्क पड़ सकता है। क्या इसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात सस्ती होंगी या क्या कुल मिलाकर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बरतानिया को भारत की तरफ से बरामद की जाने वाली 99% पैदावारी अशिया दरामदी महसूलात के बगैर ही इस मुल्क में दाखिल की जा सकती है। शुरू में इसका फायदा सिर्फ बरामदी कारोबार करने वालों को ही मिलेगा, जबकि धीरे धीरे इसका नफा बख्श असर रोजगार, पैदावारी सलाहियत और मुल्क की इक्तिसादियात पर भी पड़ेगा। ये माहिदा भारत और किसी G7 मुल्क के माबेन लागू होने वाला सबसे बड़ा और नफा बख्श फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस मौके पर ये बात जानना जरूरी बनता है कि बरतानिया कोई छोटा मोटा खरीदार मुल्क नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तवील अरसे से एक खासा असर रसूख रखने वाला मुल्क भी रहा है। इसके अलावा बरतानिया भारत का एक खास शराकत दार भी है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही अरबों डॉलर का दो तरफा कारोबार है। इस सिलसिले में 2025 की शुरुआत से इस साल अप्रैल के आखिर तक 14,897 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार

0: धीरे धीरे इसका नफा बख्श असर रोजगार, पैदावारी सलाहियत और मुल्क की इक्तिसादियात पर भी पड़ेगा। ये मुआहिदा भारत और किसी G7 मुल्क के माबैन लागू होने वाला सबसे बड़ा और नफा बख्श फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस मौके पर ये बात जानना जरूरी बनता है कि बरतानिया कोई छोटा मोटा खरीदार मुल्क नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तवील अरसे से एक खासा असर रसूख रखने वाला मुल्क भी रहा है। इसके अलावा बरतानिया भारत का एक खास शराकत दार भी है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही अरबों डॉलर का दो तरफा कारोबार है। इस सिलसिले में 2025 की शुरुआत से इस साल अप्रैल के आखिर तक 14,897 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार दर्ज किया गया। CETA के लागू होने से भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े तरक्की याफ्ता बाजार में खरीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी। भारत से बरतानिया दरामद की जाने वाली अशिया जिन पर 99% दरामदी महसूलात की छूट मिलेगी, इनमें कपड़ा और खादी मामलात से जुड़ी दूसरी अशिया, छोटी बड़ी गाड़ियों के पुर्जात, खाने का तेल और तैयार शुदा चीजों के साथ साथ समुन्द्री खाने वगैरह शामिल है। यूँ ये बात समझ में आसानी के साथ आ सकती है कि जब बरतानिया में भारतीय मसनूआत सस्ते दामों बिकने लगेंगी तो भारत की बरामदात में जबरदस्त इजाफा होगा। नतीजे के तौर पर भारत को अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाना होगी। यूँ मुल्क भर में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। CETA के लागू होने की बदौलत भारत से बरतानिया जाने वाले कामगारों को पहले 3 सालों के लिए वहाँ समाजी तहफ्फुज़ पर वसूल किए जाने वाले टैक्स में पूरे 100% की छूट मिलेगी। यूँ तो समाजी तहफ्फुज़ से मुतल्लिक टैक्स बरतानिया वारिद होने वाले हर मुल्क के कामगार से लिया जाता है, मगर अब जो भी भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या और किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला मेहनतकश बरतानिया वारिद होगा वो इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और होटलों में काम करने वाले हर तरह के कामगार को बिल्कुल मुफ्त वीजा के साथ साथ काम के आसान मौके फराहम किए जाएंगे। दोनों मुल्क मुस्तकबल करीब में मसनू जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और बहरी तहफुजात से जुड़े मामलों में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा जेट इंजन डेवलपमेंट और मौसमियाती तब्दीली को काबू में रखने के लिए दोनों मुल्क साथ साथ काम करेंगे। जब इस फकीदुल मिसाल तजारती मुआहदे को गौर से देखा जाए तो इसके वजूद में आने की तारीख का जिक्र जरूरी बनता है, क्योंकि ये तजारती मुआहदा भारत की तजारती डिप्लोमेसी में एक नई और दरख्शां तारीख रकम होने के बराबर है। ये मुआहदा महज एक तजारती मुआहदा नहीं, बल्कि भारत का मगरब की एक बहुत बड़ी मईशत के साथ इक्तिसादी शराकत दारी का एक दीर्घ ख्वाब है जो 16 जुलाई 2026 को शर्मंदा ताबीर हुआ। इस मुआहदे को पाई तकनी तक पहुँचने में कई साल लग गए। मई 2021 में भारत और बरतानिया ने तजारती शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगुनीद शुरू करने पर इत्तेफाक किया। फरवरी 2022 में पहली निशस्त हुई। 6 मई 2025 तक गुफ्तगुनीद के 14 दौर हुए जो सब के सब कामयाबी से हमकिनार हुए। 10 फरवरी 2026 को डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर इत्तेफाक हुआ और दस्तखत किए गए और आखिरकार 16 जुलाई 2026 को इस दीर्घ ख्वाब की ताबीर को अमली जामा पहनाया गया। तबसरा खत्म हुआ। शब बख़ैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, पाकिस्तान के सियासी मंजर पर आजकल जो वाकत रोनुमा वो बाईस तशवीश हैं। हुकूमत और इसके इदारों का सारा जोर मीडिया मैनेजमेंट पर है। साहिबानी अख्तियार का ख्याल है कि अगर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबू कर लिया जाए तो मुल्की हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हालत भी किसी से ढक की छुपी नहीं, लेकिन क्या इस मीडिया मैनेजमेंट से पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं? नहीं। किसी सहाफी को नौकरी से निकालना या किसी टीवी एंकर को स्क्रीन से गायब करना बहुत आसान हो चुका है। वहाँ किसी नापसंदीदा वकील या इंसानी हकूक के कारकुन को पाकिस्तान दुश्मन करार देकर जेल में ठोंसना भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या इन पाबंदियों और गिरफ्तारियों से पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेकाम पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या दहशतगर्दी खत्म होगी? क्या गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे? कभी नहीं। समीन, मुस्लिम लीग नून के कुछ वुजरा की मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान सामने आ रहे हैं। अक्टूबर 2019 में शहबाज शरीफ की तरफ से की जाने वाली एक तकरीर याद आने लगी है। ये तकरीर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च से खिताब करते हुए की थी। मौलाना के पहलू में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों ने जितना ताऊन इमरान खान की हुकूमत के साथ किया है, अगर इसका दसवां हिस्सा हमें मिल जाए तो हम सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद की तरफ लांग मार्च शुरू किया था, और जब वो एक बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हो गए तो इमरान खान की हुकूमत अंदर बाहर से हिलकर रह गई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी जेलों में थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मौका मिल गया कि मौलाना के कंधों पर चढ़कर इमरान खान को मुक्के दिखाएं। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इमरान खान को खूब मुक्के दिखाए। सिर्फ चंद दिन के अंदर अंदर इस जलसे का नतीजा सामने आ गया। नवंबर 2019 के वस्त में नवाज शरीफ जेल से निकले और हवाई जहाज में बैठकर सीधे लंदन पहुंच गए। बताया गया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं और इलाज के बाद 3 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लेकिन यह गलत था। नवाज शरीफ 3 हफ्ते में वापस नहीं आए, लेकिन लंदन पहुंचने के 3 महीने के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर करवाया, जिसके तहत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी मंजूर कर दी गई। फिर सितंबर 2020 में बिलावल भट्टू जरदारी ने इस्लामाबाद में एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इस एपीसी में एक नया अपोजिशन अलायंस मौजूद वजूद में आया।

जिसका नाम पीडीएम रखा गया। मुस्लिम लीग नून की तजवीज पर मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का सरबरा बना दिया गया। पीडीएम का पहला जलसा अक्टूबर 2020 में गुजरावाला में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम के जलसों ने जोर पकड़ा तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को खैर मकबूल करार देना शुरू कर दिया और इमरान खान ने जनरल बाजवा से जान छुड़ाने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। इन दोनों में गलत फहमियों का फायदा उठाकर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने के ख्वाब देखने लगे। इमरान खान ने जनरल फैज के जरिए हुकूमत चलानी शुरू कर दी। एक दफा फिर अपोजिशन के कई अहम रहनुमा जेल में डाल दिए गए। मीडिया पर वहां पाबंदियां बढ़ा दी गईं, लेकिन इन पाबंदियों और गिरफ्तारियों का इमरान खान को कोई फायदा न हुआ। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और चंद दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। उनकी काबीना में मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी शामिल थी। नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए और इसके बाद रियासती इदारों ने वहां शहबाज शरीफ के साथ 10% नहीं बल्कि 100% ताउन शुरू कर दिया। फिर इसी हुकूमत ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उन पर मुकदमात खत्म करने का रास्ता हमवार किया। फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन गए। रियासती इदारों का 100% उनके साथ ताउन जारी रहा। क्या शहबाज शरीफ सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दावा पूरा कर सके? इस हकीकत में शक नहीं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचा लिया गया, लेकिन पाकिस्तान से सियासी अदम इस्तिकाम खत्म नहीं हो सका। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान थे। वो तो तवील अरसे से अब जेल में हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक कोई दबाव भी नहीं डाल सकी। टीएलपी पर भी पाबंदी लगा दी गई। समीन महरंग बलोच और उनकी वकील ईमान मजारी भी जेल में हैं। तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद वहां मजीद मजबूत हो चुका है, लेकिन इस कंट्रोल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल क्यों कायम न हो सका? क्या इसका ताल्लुक वहां की हुकूमत की गवर्नेंस से नहीं? 2021 में इमरान खान ये समझते थे कि उन्हें हुकूमत से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास इनका कोई मुतबादिल नहीं। आज 5 साल बाद इमरान खान जेल में हैं और उन्हें हुकूमत में लाने वाले कहीं नजर नहीं आते। आज शायद शहबाज शरीफ भी यही समझते हैं कि उन्हें इक्तदार से निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। वो मौलाना फजलुर रहमान जिनके कंधों पर चढ़कर शहबाज शरीफ मुक्के लहराया करते थे, आज शहबाज शरीफ के साथ ही उन्हें मौलाना की ऐसी तैसी कर रहे हैं। समीन, मुस्लिम लीग नून के जवाल की एक बड़ी वजह अंदरूनी लड़ाइयां बनेगी जो अब सामने आने वाली हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामला भी वहां काफी खराब हैं, जो दोनों के लिए नुकसान का बाइस बनेंगे। समीन, प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है, आप हमारे साथ बने रहिए और इस गजल से महजूज हो जाइए।

वादी की आवाज इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। समीन, पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों में से एक शक्ल गैरत के नाम पर होने वाले जराइम है। जिस्मानी तशद्दुद घर तक महदूद रखना या कैद में रखना, इम्तियाजी रसूमात और पसंद की शादी न होने देना भी इसी सिलसिले की कड़ी है और इसके लिए वहाँ मकामी रिवायात को जवाज बनाया जाता है, जो खैरत के तसव्वुर के तहफ्फुज की तशरीह औरत पर मर्द की बालादस्ती के जरिए करती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकों की बहुत सी तंजीमें इम्तियाजी और रिवायती तर्ज अमल के खात्मे के लिए काम कर रही हैं, जिन रवैयों की वजह से पाकिस्तानी खवातीन अपने बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हो रही हैं। हालिया एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गुज़श्ता 1.5 माह से भी कम अरसे में 80 के करीब ख्वातीन और मर्द खैरत के नाम पर कत्ल किए गए। इस हकीकत से इनकार नहीं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के 7,516 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि दरअसल रोनुमा होने वाले वाकयात की तादाद से बहुत कम है, क्योंकि ऐसे

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम में 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 60 करोड़ लोग 5 लक्षण तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तमाम 2 करोड़ इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपुद करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करो 1-4-5-5-5 फोन नंबर पे रबत कई
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी lead.
2: स्वीन आपने ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8:31 हो चुके हैं। आइए चंद फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं। आगाज में पेश फिल्म नील कमल से यह नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और मौसीकार हैं रवि।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउड द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक

0: के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का

0: विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एन्जो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन समीन रिसंस 9 बजे पेश प्रोग्राम शशरंग।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले, जो कल से शुरू हो रहा है, कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाए। मरकज ओडिशा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गई। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा, जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस मुबहसा होगा। मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवु श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माजी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, ऑपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग

0: से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बायकॉट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने अपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहिसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रिवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज़्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर ज़िलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबैन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरां, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इकतसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखिर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों की दुगजानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गरकाब हो गईं। مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے

0: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अज़्म और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा, जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है, जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राज़ील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल 2री मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राज़ील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद 2री मरतबा आलमी खिताब जीतने के अज़म के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोज़ा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के 3रे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 20 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। और आखिर में खास खबरों का खुलासा। एक बार फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल, जो कल से शुरू हो रहा है, कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज उड़ीसा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफ़र को फ़रोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से ज़मीनी तोड़े खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फ़ौज ने उर्दुन में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदाराने इनकलाब फ़ौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई।
1: की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए 3रे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खास कर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी

0: से कि देखिए सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से, उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपनी पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात पे जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि डैथलॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश सब प्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में

0: ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात, कितना भ्रष्टाचार, क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
2: तो एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है, जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे, उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया। तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।

0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मानसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
1: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया, तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
0: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने की वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं, और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ चाहिए है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है, ये और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे, और आप प्रतिशोध ना ले, ये कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष

0: खत्म करना चाहती है।
1: अमराराम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दे हैं? हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा, और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुधाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मॉनसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
4: देखिए, ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, जब से ईरान इसराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है, पहले जो यूपीए की सरकार में डबल

0: डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसे मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पर असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच तो उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ा है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा?

0: रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल

0: हैं जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या क्या संदेश होगा?
1: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीर चपके 10 बज चुके हैं, आपसे लेकर ठीक रात 11 बजे तक आप फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम समाप्त करेंगे आपकी फरमाइश जावेद अंद्राबी के साथ एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खेलो परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी, बानियापारा दामातारी छत्तीसगढ़ से काफिर भाई रामचंद मखीजा, मिस सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, माही पूजी चुटकी, शरद कुमार डोडवानी और मखीजा परिवार के दूसरे लोग। ये मेल हमें मिला है गोहन बारामुल्ला से गुलाम नबी परदेसी, मिसरा बेगम, फैसल, उमर, महक, इकरा और मजीद काकी तरफ से। लक्ष्मी भाई नाजमंदी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म माफिया का नगमा। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। तो ये रही आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश।

दोस्तों, अब जो नगमा आप सुनेंगे उसकी फरमाइश इन दोस्तों ने की है। बापू कालनी अब्दुल्ला मास्क खंडवा मध्य प्रदेश से सहेली रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन। ये हैं बेबी शालिया दावर, बेबी हलीमा दावर और बेबी जिक्रा दावर। पूरा खंडवा से शेख सईद राही और मुन्ना भाई। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मांडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर पेश है फिल्म मेरा साया का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। जिस शायर की कलम से ये गीत लिखा गया है वो हैं राजा मेहदी अली खान और मौसीकार हैं मदन मोहन। तो पेश है आप सब दोस्तों की पसंद का नगमा।

फिल्मी लग में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर, और ये प्रोग्राम है आपकी फरमाइश। प्रोग्राम का अगला नगमा किशोर कुमार की आवाज में है, फिल्म है नजराना। इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम डॉल, सुरभाव कंगन से लतीफ अहमद रैना, खालिदा जान, अफरोजा जी, रऊफ शेख, साहिल तनवीर, बानियारी मोहम्मद अशरफ डार, जान मोहम्मद डार और मंजूर अहमद डार, गुजरबल नूरबाग से हिलाल अहमद शाह और उनके घर वाले, कोल सिटी

फरकाकाना से ये हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, पन्नी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड। इन सभी सामीन को अपने पसंदीदा नकमे को सुनने का बेसब्री से इंतजार होगा। तो लीजिए समाप्त कीजिए फिल्म नजराना से ये नगमा, आवाज किशोर कुमार की। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लीजिए समाप्त कीजिए।

ये था किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नजराना का गाना। अब एक और दुगाना सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है हसीना मान जाएगी। सुनना चाहते हैं नौपुरा श्रीनगर से कौसर जान, हाजरा बानो और निखत जान। जसपुरा उत्तराखंड से ये हैं हमारे मुस्तकिल सामे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और रफाकत हुसैन सिद्दीकी। वोहन गांव बीरवा से बशीर अहमद पाला और उनके दूसरे दोस्त। दादा बाबू रोड गिरदी झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, शरीफ नवाज और बाबू अहद। ये मेल आया है सदर बाजार कुरावली से। लिखने वाले हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पिंद्र कुमार डूडी। तो दोस्तों समाप्त कीजिए अपनी पसंद का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है हसीना मान जाएगी। गीत लिखा है अख्तर रोमानी ने और इसकी धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए समाप्त कीजिए।

ये था हसीना मान जाएगी फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। अगला नगमा एक जान है हम फिल्म से है, शबीर कुमार की आवाज में। सुनना चाहते हैं जैनेन्द्र लिसनर्स एसोसिएशन पारभनी महाराष्ट्र से, यह है रूपेश सिंघाई, महेश सिंघाई, हृजनेश सिंघाई, प्रीतेश सिंघाई और सिंघाई परिवार के दूसरे लोग। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, वाशी राजेश, राशि राजेश और मिस शीतल राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयदेव सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज। इन सब दोस्तों की फरमाइश पर पेश है शबीर कुमार की आवाज में नगमा, फिल्म है एक जान है हम। गीतकार हैं अनजान और इस नगमे के म्यूजिक कंपोजर हैं अनु मलिक। पेश है आप सब दोस्तों की पसंद।

अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगली एतवार को एक नया प्रोग्राम नए गीतों के साथ लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इस वक्त हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब्बा खैर।

0: سماعت کر رہے تھے آپ کی فرمائش پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جاوید اندرابی آکاش وانی سری نگر کی آواز
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں جہاں ملیں گی انگلش ہندی اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے لٹریری سیشنز ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے 18 سے 26 جولائی SKICC سری نگر چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر ٹوگیدر وی ریڈ Together we lead.
0: آکاشوانی سری نگر کی آواز رات کے 11 بج رہے اب آکاشوانی دلی سے اردو ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے
3: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں آشوتوش لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے مانسون ستر سے پہلے آج کاریا منترنا سمیت کی بیٹھک بلائی بیٹھک کے دوران سرکار اور وبھن راجنیتک دلوں کے سدسیوں نے ستر میں اٹھائے جانے والے ودھائی اور انیہ مدوں پر اپنے وچار ساجھا کیے بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے شری برلا نے رچناتمک چرچا سارتھک سہیوگ اور سنسدیہ پرمپراؤں کے اچ ماندنڈوں کا پالن کرنے کے مہتو پر بل دیا संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू कांग्रेस नेता जयराम रमेश समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
3: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च जुलूस प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई यह यात्रा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। सबके 11:10 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आज की नशरियात को बर्खास्त करने से पहले आपको जानकारी देते हैं कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

सुहेल फयाज शिलवती और के साथी चक्री और पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और 4:30 पर। इनसे आप सिलसिलेवार कलाम शम्स फकीर, कलाम अहजरगर और कलाम रमजान फुफ समाप्त करेंगे। फिल्मी रग में समाप्त करें दिन में 12:10 पर और 12:15 पर, स्वामीन 12:10 पर और 2:15 पर। खवातीन के लिए फोन इन प्रोग्राम हेलो बजमिनिस्वा आप समाप्त करेंगे दिन में 12:40 पर, मेजबान शाहीना ऋषि। NCERT का स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम पेश होगा दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी आप समाप्त कर सकते हैं। फिल्म संगीत से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नशोदा सुपहर 3:00, पहाड़ी प्रोग्राम पेश होता सुपहर 4:00। गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5:00, शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होता है गमी बाय निधि खतरे। प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा डॉक्टर माजिद अब्बास ख्वाजा और सलीम फारूक के मबाइन सेहत से मुतलिक गुफ्तगू नश होगी। मौजू है फैटी लिवर।

रात 8:30 पर खेल शायकीन के लिए खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नश्र होगा स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार और रात 9 बजे चंद कश्मीरी गजलें समाप्त करें। तो समय लेती तफसील कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों की।

0: से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: हेलो मार्केट, दिस इज अमित. सो माय क्वेश्चन रिलेटेड, लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज एन अर्निंग एंड एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन. सो आई हैव ट्रांसफर माय म्यूचुअल फंड्स टू माय मदर, एंड व्हेन आई एम फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न इन अ न्यू रेजिम बोथ फॉर माय सेल्फ एंड माय मदर, so it is showing of like of rupees around 10 lakhs and under the like the off market transaction credit in EIS and PIS statements. So I want to know whether how this tax whether I have to pay any tax or how the tax calculation will be done while filing this return, like for me and for my mother, like I transferred the mutual funds.
0: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे.
2: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद. सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
2: गुड इवनिंग.
3: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग. आई जस्ट वांट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset

0: That is the mid cap or small cap. I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
1: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And yeah, that should be helpful.
2: जी अगले कॉलर के पास चलें सरबजीत
3: जी चेन्नई काशीनाथ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
4: गुड इवनिंग मैडम
3: गुड इवनिंग
4: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है इस पे बने रहना चाहिए हर फंड में दो दो हजार जा रहा है ये क्या अच्छा है इसकी अच्छा जानकारी चाहिए धन्यवाद
1: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे बहुत ज़्यादा ओवर पार ना कर ले क्योंकि होता क्या है लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में तब आप डरे नहीं आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है तो आप देखिए अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए
2: जी दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं आकाश स्वागत है आपका सवाल पूछें लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत
3: यस आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद सुभाष जी सवाल पूछें
5: हां नमस्कार सर
3: जी नमस्कार
5: मैडम अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर ये कुछ पता चल सकता है
2: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार में निवेश किया है और डेट फंड में भी नहीं है वो डेट मार्केट में है वो भारत के पूंजी बाज़ार का ही हिस्सा है तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए जी अगले कॉलर के पास चले हम
3: यस लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली
5: हेलो
2: जी आकाश
5: मुझे दो बातें पूछनी है एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे और क्योंकि हम लोग की FD है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाए क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना चक्रवर्ती ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज और साथ में ये बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं
6: आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहां आप लोग आम आदमी फ्यूचर फंड में जाना

0: चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है। धन्यवाद
1: जी। आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड सजेस्ट।
2: जी ऐसा अक्सर होता है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए। जब आपको आप आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। 1 साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन वेल्थ जनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे, अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपकी आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए। और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा, जो आपने बोला कि FD 1 साल की लेनी चाहिए या ज्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
2: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, मैं जीश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
2: जी,
3: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल में जो एक्सपेंस रेशो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
1: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पर मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इस पे अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पे कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है, AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पे क्या थिंकिंग चल रही है ये सब मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ ये बात जरूर है कि दिनेश जी सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नजरिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको

0: उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए, बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है। बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, योगेश जी सवाल पूछे।
2: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैकेज आ रहे थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड।
0: जी योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफी जरूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहां पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद निकलता वापस आ जाता है। तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उनपे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चीजों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहां पे वो खर्चा ज्यादा लगता है। और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहां अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली। तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फायदा रहेगा।
3: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे।
1: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर, जितेंद्र जी सवाल पूछे।
4: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है, जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये है।

0: वापस ने कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत इजी था। तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
1: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता। SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में।
2: जी, अगले कॉलर है भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मैडम। नमस्ते मार्केट मद्रा टीम। मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइट?
1: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो। इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस। अदर देन दैट, लेट्स से फॉर समबडी हु डज नॉट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ही और शी कैन सिंपली स्टार्ट विद अ पैसिव फंड। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन ईदर पैसिव और एक्टिव, आई वुड से दिस इज नॉट रियली एनी रीजन टू स्टॉप दोज एंड मूव ऑन टू डिफरेंट फंड और अ डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। द इशू बींग दैट ऑफकोर्स इन लार्ज एंड मिड कैप पैसिव हैव, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
4: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal puche.
5: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae Large Cap and Mid Cap, what are the prospects? And I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
1: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you are looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid-cap or a small-cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need, any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi cap, it can be included in the portfolio.
4: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active.

0: active this week with three main board IPOs scheduled for listing.
1: आज वक्त इतना ही है स्नेहा कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी धन्यवाद Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
3: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 6 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। नमस्कार, संगीत के इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से इस्तकबाल है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द से कभी धुंधले नहीं पड़ते। पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन उनके सुर, उनके अल्फाज और उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। ऐसे ही सदाबहार और गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। मैं हूं आपके साथ फेरोज। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए और उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस खूबसूरत युगल गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है मन्ना डे साहब और लता जी ने। गीत के दिल को छू लेने वाले अल्फाज यानी गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है कालजयी धुन तैयार किया है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है, ना कोई बनावट ना कोई शोर, बस चांदनी रात, दो धड़कते दिल और मोहब्बत का एक मासूम सा पैगाम। यही वजह है कि 7 दशक बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। मन्ना डे की गहराई और लता मंगेशकर की कोमल आवाज जब एक साथ मिलती है तो हर अंतरा एक खूबसूरत गुफ्तगू बन जाता है। वहीं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन हसरत जयपुरी की शायरी इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की एक अनमोल याद बना देते हैं।

फिल्म चोरी चोरी का ये बेहद खूबसूरत नगमा मन्ना डे साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में, गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब मोहब्बत की दुनिया में कभी एक नज़र का इंतज़ार होता है तो कभी एक मुस्कुराहट पूरी दास्तान कह जाती हैं, और कभी कभी बस एक पल के लिए कोई अपना चेहरा फेर ले तो दिल बेचैन हो उठता है। इसी नाजुक एहसास को सुरों में पिरोया गया है हमारे अगले सदाबहार नगमे में, और इस सदाबहार नगमे हैं सुनहरे दौर के। इस रोमानी युगल गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बनाया है मुकेश साहब और लता जी ने। गीत के सादगी भरे मगर दिल में उतर जाने वाले अल्फाज लिखे हैं शैलेंद्र ने, और इन्हें मधुर धुनों का जादूगर जादू से सजाया है शंकर जयकिशन साहब की बेहद खूबसूरत जोड़ी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतरे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो हमारे दिल के, आपके दिल के बेहद करीब है। कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, जैसे दो सितारे अपनी रोशनी से पूरी फिजा को जगमगा देते हों। मोहब्बत का यही दिलनशी एहसास अगला ये नगमा बता रहा है। बरसों से इश्क की महफिल की ये शान भी बना हुआ है, हिंदी सिनेमा के संगीत की महफिल की ये शान भी बना हुआ है नगमा। ये गीत सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात का बयान नहीं बल्कि उस एहसास का जश्न है जब दो रूहें एक दूसरे में अपना अक्स तलाश लेती हैं। शकील बदायूनी साहब की शायरी में नज़ाकत है, लफ्ज़ों में मिठास है और नौशाद साहब के सुरों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खुशबू साफ महसूस होती है इस गीत में। और यह नगमा है 1960 की एक शानदार फिल्म कोहिनूर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की।

0: فلم کوہنور کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے گیت میرے منمیت سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گی منجو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष. संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं. सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया.
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने.
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई. यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है. CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है. बैठक में गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा संगठित डकैती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित और समयबद्ध उपायों के निर्देश दिए. सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है. जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में कल सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं. नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है. इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई. इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है. इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी. अमरीकी सेना ने कल ईरान पर हवाई हमले किए. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया. अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है. फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले इंग्लैंड

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए

0: नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी। आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी। आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है, वो असल में क्या है?
2: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
1: जी,
2: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
1: जी।
2: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
1: जी,
2: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
1: जी।
2: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं, और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है, या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
3: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही
1: जी।
3: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं, और उनको ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है, और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइड

0: डिफर कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है, या नंदीनागरी है, या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
1: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
0: निश्चित रूप से।
1: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
2: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
1: जी,
2: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं, और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूँ कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम पांच तो बैठते ही थे, लेकिन पंचायत में पांच के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी,
2: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा, और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है
1: जी,
2: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
2: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को पल्लवित किया जा रहा था।
3: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है। आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं, ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था। तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को,

0: जी
1: तो एक स्पर्धा नहीं थी,
0: जी
1: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
0: जी, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं, और इसमें मतभेद हो सकता था, मनभेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था। जी, यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सके। तो इसमें हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़े।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में AI हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र दिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूँ AI टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखे
0: जी,
1: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए।
0: हाँ।
1: लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा
0: जी।
1: तो सोचना पड़ेगा उसके उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
0: जी।
1: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता

0: ने इसको देखा नहीं था, वंडरफुल, इसके साथ करना चाहिए।
1: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
1: जी,
0: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है।
1: जी,
0: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है।
1: जी,
0: वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी,
0: बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है।
1: जी,
0: ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है।
1: जी,
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया।
1: जी,
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है। उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे।
1: जी,
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है।
1: जी, तो ये आने वाले कल की तैयारी है। जी, डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे। तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये

0: आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो हैं वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि परमर्षि महर्षि देवर्षि राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी महत्वपूर्ण अवसर है और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा के बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है, आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है। यहाँ पर मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
2: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
1: जी,
2: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
1: जी,
2: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्यों वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
1: जी।
2: ये हमारा जो वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद जिनको श्रुति कहा जाता है, वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं
1: जी।
2: और मंत्र क्या हैं, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है, छंद पादौ तु वेदस्य
1: जी।
2: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
1: जी,
2: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है वैदिक ज्ञान है वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
1: जी,
2: जिनको श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
1: जी।
2: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
1: जी।
2: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्व व्रतये सितौ प्रजानाम प्रलय तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः
1: जी।
2: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
1: जी।
2: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
1: जी।
2: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी,
2: और ये फल भी देते हैं
1: जी। तो स्तुति का माध्यम

0: माध्यम है ये।
1: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
0: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की जी, और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
1: जी का स्वरूप है
0: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
0: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
0: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है। इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है। आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
0: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
0: जी।
2: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
0: जी।
2: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं, लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण, क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही
0: जी। और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है जी। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना, उसमें एक शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनी।

0: काना, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है, वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
0: जी।
1: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति, जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है, तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है, उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा हैं। ये अज्ञानात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो है हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
0: जी।
1: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है
0: जी। और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी न किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं।

0: इन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
1: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृध कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, यानी बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग क्या है? एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
0: जी।
1: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
0: जी,
1: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
0: जी,
1: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
0: जी।
1: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
0: जी।
1: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा। संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
0: जी,
1: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है, जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
0: जी,
1: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में भी व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
0: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
0: जी।
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
0: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
0: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है? लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है
0: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है? जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है। समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
0: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
0: जी।
2: तो आज दुनिया में ये मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित

0: भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
1: जी।
0: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं। आज हमें आध्यात्मिकता को हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
1: जी।
0: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
1: जी।
0: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
1: जी।
0: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
1: जी।
0: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानि शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानि शिक्षक
1: जी।
0: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व तो शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
1: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का। और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
2: नीलम जी शुक्रिया।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
1: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2036 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना के लिए जहां मेसी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर 19 वर्षीय लामिन यामल स्पेन के आक्रामक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले

7.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सदाबहार आवाज, गीता दत्त की आवाज के साथ।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म की रीमेक थी जो आधारित थी विमल मित्रा के उपन्यास पर। और इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है आशा जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म CID से।

फिल्म का नाम सीआईडी और आवाजें थी शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी साहब की। संगीत उपिनैयर साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1956 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने और निर्मित किया था गुरुदत्त ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने। इस फिल्म में देव साहब की भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो एक हत्या के मामले की जांच करता है। और अगला गीत आप तक, जगजीत कौर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

रफी साहब की आवाज में फिल्म कोहिनूर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने, निर्देशन किया था एसयू सनी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनेस और कुमकुम ने। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही थी और 1960 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

मदर इंडिया फिल्म से सुना आपने ये गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में। संगीत नौशाद साहब का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने। ये फिल्म महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी और फिल्म मदर इंडिया एक गरीब महिला राधा की कहानी है जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और भारतीय नारी की जो एक सशक्त परिभाषा है उसे स्थापित करती है। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले।

0: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकरायल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House NXE. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India.

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 17 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज के साथ।

वैसे बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन सच कहूं, मोहब्बत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये इंतजार है, किसी के लिए यादें हैं, तो किसी के लिए साथ चलना मोहब्बत कहा जा सकता है। खैर, मोहब्बत की परिभाषाएं तो चलती रहेंगी और बातों का यह सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है अगला गीत सुनने का। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

आपके दिल की धुन इस वक्त क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा दिल तो एक ख्वाब बुनना चाहता है। चलेंगे आप मेरे साथ अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसे निखर के आता है कि तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कहने और सुनने की जो कश्मकश होती है ना, यही हमें इंसान बनाती है। और ये कश्मकश जब मोहब्बत से मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे मुश्किल काम शायद यही है, अपने दिल की बात को सही वक्त पर, सही इंसान पर, सही लफ्ज़ों में कह पाना। कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी जाती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ये सही इंसान है, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही लम्हा है। और इसी उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो इंसान शायद हमारी ज़िंदगी से हमसे छूट भी जाता है। और फिर हम कई बार जब हम सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये रंग और नूर की बारात आखिर पेश किसे की जाए। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। वाकई साहिर साहब को उनके शब्द ही साहिर बनाते हैं। पता है जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, कामयाबी होती है, नाम होता है, महफिलें होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खलीपन होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक भर नहीं पाती। साहिर साहब ने जो इस गीत में कहा है वो आज भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपनी खुशियों की बारात सजाते हैं, लेकिन उस उदासी का क्या जो बार बार हमारी यादों से, हमारी स्मृतियों से हमें घेरती है। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी

0: बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100

0: के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined. After registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of parliament and engage in constructive discussions on key

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम है हमराही। चलिए आगाज करते हैं हमराही का। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन ये लब खामोश रह जाते हैं। कुछ मुलाकातें बस पल की होती हैं लेकिन उनकी यादें पूरी उम्र का सहारा बन जाती हैं। किसी का साथ, किसी की मुस्कान, उसकी मौजूदगी, यही तो वो एहसास है जिसे हम अपने दिल में संजोकर हमेशा रखना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है, आया है और समय ठहर गया है, उसके साथ बिताया हर लम्हा खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे गीत के साथ, उसी मासूम एहसास के साथ, उसी अनमोल पल के नाम के साथ। चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। फिल्म है वो कौन थी, आवाज है लता मंगेशकर की।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जब बात इश्क की, मोहब्बत की और प्यार की होती है, तब ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा फूल होते हैं। जी हाँ,

फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते, वे दिल की उन भावनाओं को भी साथ समेट लाते हैं जिन्हें अक्सर शब्द हम कह नहीं पाते। जब किसी अपने के लिए फूल भेजे जाते हैं तो उसमें प्यार, अपनापन, इंतजार तीनों महकते हैं। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये सदाबहार गीत।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी खुशियां दे देती है जिसका इंतजार बरसों से होता है। जब दिल अपनी सबसे प्यारी मंजिल के करीब पहुंच जाए तो हर पल किसी जश्न से कम नहीं लगता। ऐसे ही मोहब्बत की खुशी और अपना पन लिए पेश है ये गीत।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है, कभी फूलों की तरह महकती तो कभी परिंदों की तरह खुलकर गुनगुनाती हुई। कुछ किस्से तो इतने मासूम होते हैं कि वे पीढ़ियों तक मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत दास्तां बयां करता हुआ एक ऐसा ही गीत, एक था गुल और एक थी बुलबुल।

हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वो नहीं भूलता कहां जाऊं, वो नहीं भूलता जहां जाऊं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहां जाऊं, वो नहीं भूलता मैं जहां जाऊं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।

0: और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देशभर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता

0: मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देशभर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने के दौरान मारे गए तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत की खबर है। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां एक अलग ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब कुल मिलाकर तीन अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बना है। फेरॉन टॉरेस ने विजयी गोल किया। अविजित रहने के मामले में स्पेन ने इटली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government had yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the during the session. Address

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब दिल सच्ची नीयत से दुआ करता है तो हर अर्जी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। विश्वास, प्रेम और उम्मीद हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देती है। जब भी हम श्रद्धा के साथ ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत और एक नया कदम, एक नया उत्साह बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूँ सुरभि, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अरुणिमा। देखा जाए तो ये जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी दे जाती है तो कभी चुनौती, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए उम्मीद, हौसले और सकारात्मक सोच से भर देने वाला गीत सुनते हैं।

जीवन की असली खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हमारी मुस्कान किसी और के चेहरे की वजह बन जाए या हम किसी के काम आ जाए। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लें, वही जीवन सच्ची मायनों में सार्थक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इंसानियत और अपनत्व का संदेश देता हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। 5:10 पर भोर सुहानी में होगी हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता की धारा 163 लागू है। इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को

प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं होता। एक सच्चा साथ, एक भरोसे भरा हाथ और थोड़ी सी संवेदना अगर मिल जाए तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उम्मीद, अपनापन और हौसले का संदेश देते हुए इस भावपूर्ण गीत को सुनकर।

भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और हर नई सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। तो चलिए आत्मविश्वास को थाम कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को देने वाला ये गीत हम और आप सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन